0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी, जिसमें आप सुन रहे थे राग ललित, कलाकार थे नकुल मल्होत्रा। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे ठीक 6 बजे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान

0: हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
2: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation

साथियों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वन्ना, जिसके अंतर्गत आप अपने हरिओम शरण, अनुराधा पोटवाल, सोनू निगम और भाई बलविंदर सिंह रागी द्वारा भजन और शब्द का आनंद लिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 6:40 हुए हैं और ये वक्त है कार्यक्रम चिंतन का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के विचारों पर।
1: नमस्कार। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे क्रांतिकारी जो मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे पर झूल गए। बहुभाषाविद, साहित्यकार, अनुवादक, इतिहासकार, महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। 1915 में भाई परमानंद जी की फांसी का समाचार सुनकर राम प्रसाद ने ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों से जो धन प्राप्त होता था उससे उन्होंने हथियार खरीदे। उनकी पुस्तकों में क्रांति का स्वर था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन पुस्तकों को जब्त कर लिया। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई। लाला जी ने उनकी लिखी हुई पुस्तकें देखी तो वह बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी की अति उदारता से असहमति रखते हुए राम प्रसाद ने क्रांति का मार्ग चुना। अपने अभियान के लिए संसाधन जुटाने के लिए बिस्मिल और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटा। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में जिन 10 लोगों ने उस रेलगाड़ी को लूटा, उनमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मम्मत नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा जैसे लोग थे। ट्रेन जब काकोरी स्टेशन पर रुकी तो क्रांतिकारियों ने गार्ड के डिब्बे से खजाना लूट लिया। अगले दिन ये समाचार पूरी दुनिया में फैल गया। अंग्रेज सरकार ने उसकी छानबीन की और 26 सितंबर को बिस्मिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल मेनपुरी षड्यंत्र और काकोरी हत्याकांड जैसी अनेक घटनाओं में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बिस्मिल ने गिरफ्तार होने पर आगरा लखनऊ सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया, जहां उन पर उनके साथियों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिस्मिल ने गोरखपुर की जिला जेल में अपनी आत्मकथा का

0: अध्याय पूर्ण किया, माता पिता से अंतिम मुलाकात की और 19 दिसंबर 1927 को प्रातः बिस्मिल को फांसी दे दी गई। बिस्मिल का शव जब परिजनों को सौंपा गया तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों ने भाग लिया। राप्ती नदी के तट पर अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1929 में कीर्ति, जो पंजाबी पत्रिका थी, उसमें विद्रोही छदम नाम से लिखा कि फांसी पर ले जाते समय जोर से कहा था वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए बिस्मिल ने कहा था मालिक तेरी रजा और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही फिक्र और तेरी ही जुफ्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर बिस्मिल ने दोहराया था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कई कविताएं, गजल और पुस्तकें लिखी। उनकी एक गजल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने में, इस देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, उनके प्रति इस देश की जनता के अंदर बहुत सम्मान है। ऐसे महान क्रांतिकारी के प्रति शत शत नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आपने राम प्रसाद बिस्मिल की विचारों के बारे में सुना।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। सुनते हैं रामचरितमानस का बालकांड का 104 भाग।

परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

0: विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25th-2000 अंतर्गतम वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25th-1000 दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कंदुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंड कप इत्यस्य 35th-1100 संस्करणं मासस्यास्य 25th-दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण

0: निर्माण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Meanwhile, Prime Minister Modi said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi today that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Mr. Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The government has issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta not to roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Lieutenant Governor Manoj Sinha, Jammu and Kashmir, flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. Our correspondent reports that the 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on 20th of August. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. Health Minister Jagat Prakash Nadda chaired a high-level review meeting on dengue preparedness in Delhi yesterday. Addressing the meeting, the Health Minister emphasized that the state and municipal bodies be ready to proactively anticipate and prepare for any potential upsurge by clearly demonstrating their readiness. He called upon states to actively engage ward commissioners, elected representatives and resident welfare associations.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने भजन सुनी, आवाज थी सुरभि शर्मा की। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अल्पना, आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ साथियों, हर सुबह हमें ज़िंदगी एक नया मौका देती है। उठो, मुस्कुराओ और अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाओ। आपकी सुबह भी खूबसूरत हो और भी खूबसूरत बने इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

0: सुबह की एक सकारात्मक शुरुआत आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बना देती है। जी हाँ साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
1: हंसो मत, बोलो

साथियों कहते हैं ना, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। जी हाँ, अगर हौसलों में उड़ान है तो आप किसी भी सफलता को पा सकते हैं। बस जोश जुनून बरकरार रहना चाहिए।

साथियों, नेचर यानी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और उसमें रहते पक्षियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कभी भी वो नहीं घबराते किसी डाली पे हिलने से, क्योंकि उन्हें अपने पंखों पे भरोसा होता है। हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है पक्षियों से कि वो अपने पे भरोसा करते हैं और इसी तरह उड़ते रहते हैं। तो चलिए अपने पे भरोसा करिए और पक्षियों से ये प्रेरणा लीजिए और अपने सपनों की उड़ान को कभी भी कम होने ना दीजिए।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ अल्पना को आपके प्यारे शो गीतों भरी गुड मॉर्निंग से। इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने

0: कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल

0: भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ानें डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions

0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैनुल अक्वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायज़ा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मनसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान

0: कि वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची के साथ आज वसी तर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतज़िर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खुसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मजीद वसअत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसर्रत होगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के ज़रिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमन इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोज़गार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के ज़रिए यूज़र नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। ज़राए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूज़र नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ज़राए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूज़र नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज़ किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूज़र नेम फीचर के फ़ाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा रबता करने वाले शख्स को नज़र नहीं आएगा और इख्तियारी यूज़र नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। ज़राए ने बताया कि इस बारे में तशवीश है कि यूज़र नेम फीचर के ज़रिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तशवीश है कि यूज़र नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और ख़ुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत ख़त्म होने से पहले यूज़र नेम फीचर की शुरुआत ना करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदाम को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नज़रसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज़ डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक 1 साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोज़ा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के 2 रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल ज़िले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। CCTV कैमरे और RFID ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी

0: शारा NH 44 पर सफ़र करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले 2 दिन तक साहली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज़्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमज़ोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम ज़िलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड ज़िले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। CBI ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को 2 मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपये से ज़्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फ़ोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फ़ोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फ़र्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीक़ात के दौरान मजाज अदालत से ज़रूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफ़ंड भी किए गए थे। CBI ने आवाम को मशवरा दिया है कि वह धोखाधही पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधही के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात कल दोहा में ख़त्म हो गए। कतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुज़ाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर JD Vance ने बताया कि दोहा मुज़ाकरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुज़ाकरात एक मुस्तहकम मौक़िफ़ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हर्ज़ेगोविना मैच के फातह से होगा। मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बैन अलावामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अदा करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाए तकेची ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैनुल अक्वामी बाजार में गैस की कीमतों में तख़फीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूज़र नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूज़र नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा,
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज हम सुनेंगे राग मियां की तोड़ी में गायन, कलाकार हैं अमीन खान।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमीन खान से राग मियां की तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।
1: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
2: धन्यवाद सर।
1: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
2: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू पे है, चाहे समन का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, या एक जीवन का अपने आप में एक प्रबंधन का स्थान है सर।
1: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे और आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
2: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेस आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू यह है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फॉर्मेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से गिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेज की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते
1: हैं। तो एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
2: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जरूर एक बिजनेस स्कूल में भी ट्रेन करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव, नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
1: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें?
2: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज

0: जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों-रातों नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी एक कल्चर आ रहा है, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा, तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
1: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए।
0: ये आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांव की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया, तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी की एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहां पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे, और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े, और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए।
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती है, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, और अगर आप सांसदों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है, और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन की जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है।
0: AI को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेज मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
1: तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
0: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवरस्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर

0: कहें कि मैं समय के बदलाव के साथ एआई के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूं, मैं एआई के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर यह बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें एआई में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर हैं या एआई के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
0: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया एक डबल एज्ड सॉर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है।
1: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं,
0: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
1: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
0: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए, प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है। स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है। परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है। उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
1: हेमेंद्र डांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
0: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेस में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज के डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन, मटेरियल, मशीन, मनी, पर आज के डेट में अब इसको मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है।
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स है और प्राइवेट सेक्टर्स है, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों, और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है। ओनली थिंग इज, जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर अब परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में इफिशियंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
1: तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
0: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए, ये एक एफिशिएंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
0: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
1: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है, और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में

0: आपने वक्त निकाला और प्रबंधन के विषय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने छुआ, बहुत सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाजिर हाँ मैं इंदरप्रीत कौर। अज दे प्रोग्राम विच असीं सुणांगे एक वार्ता जिसका विशा होएगा एक रुख सौ सुख, ते वार्ताकार होणगे प्रकाश सिंह गिल। इस तों इलावा असीं सुणांगे लोक गीत। सो आओ हुण प्रोग्राम की शुरुआत करदे हाँ ते गल करदे हाँ स्वच्छता बारे। स्वच्छता साडे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इह साडे जीवन विच वी एक तरजीह है। सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि साफ सफाई नाल असी जिंदगी दियां कई समस्यावां तों छुटकारा पा सकदे हां। सफाई दा अर्थ है साफ सुथरे रहण दी आदत। जिथे साफ सुथरे रहण नाल शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है, उत्थे शरीर अते मन दोवां दी खुशी लई साफ सफाई जरूरी है। हर किसे नू अपनी रोजाना दी रूटीन विच सफाई नू शामिल करना चाहिदा है। महात्मा गांधी ने भी कहा सी, स्वच्छता ही सेवा है। जीवन विच स्वच्छता दा अर्थ भी तंदुरुस्त रहण दी अवस्था है। स्वच्छता एक चंगी आदत है जो साडे जीवन दी गुणवत्ता नू वधांदी है। इह साडी जिंदगी दा अहम हिस्सा है। शरीर दी सफाई भी साडे लई बहुत जरूरी है, जिवें कि रोजाना नहाना, साफ कपड़े पहनना, दंदा नू बुरश करना, नौ कटना आदि। इसलिए सानू रोजाना दे काम समय सिर पूरे करने चाहिदे हन। सेहतमंद रहना अते शांत जीवन जीना एक चंगा गुण है। इस दे लई घर दे बुजुर्गां अते मापियां नू चाहिदा है कि उह अपने बच्चियां विच इस आदत नू प्रफुल्लत करन, ता जो उह सफाई दे महत्व नू समझ सकन। जेकर कोई व्यक्ति साफ सुथरा नहीं है ता उह सेहतमंद नहीं रह सकता है। गंदगी कई बीमारियां दा कारण बनदी है जो मनुख दे विकास विच रुकावट पांदी है। इसलिए सफाई साडे जीवन लई बहुत जरूरी है। असी सफाई अपना के ही बीमारियां नू खत्म कर सकदे हां। सानू अपने घर तों इलावा अपने आले दुआले दी सफाई दा भी ध्यान रखना चाहीदा है। इसलिए स्वच्छता नू अपनाओ अते देश नू अगे लैके जाओ। बेहतर सफाई राही ही असी अपने देश नू आदर्श बना सकते हाँ। इसलिए सानू खुद भी अते दूजियां नू भी सफाई लई प्रेरित करना चाहीदा है। ते आओ हुण सुनदे हाँ एक वार्ता जिसका विशा है एक रुख सौ सुख, ते वार्ताकार ने प्रकाश सिंह गिल।
1: एक रुख सौ सुख, उंज तां इह कहावत है, लेकिन असल विच तां रुख दे सौ नहीं बल्कि सौ तों वध भी सुख ने जो साडे तो गिने भी नहीं जा सकते। इस अखाण नू सौखे ढंग नाल समझना होवे तां असीं इउं कह सकते हाँ कि साडा सारा आयुर्वेद पूरी तरह नाल रुखां उत्ते ही निर्भर है। धरती नू रहन योग बनाई रखन अते वातावरण दे कुदरती संतुलन नू बरकरार रखन लई रुखां दे महत्व तो इनकार नहीं कीता जा सकता। असल अर्थां विच रुख धरती दा शिंगार हुंदे हन। जिवें कोई रूपमती मुटियार अपने हुसन नू चार चन्न लाउण लई गहिणियां समेत कई तरह दा शिंगार करके अपने हुसन दा जलवा बखेरदी है, उस तरह ही धरती ते ठंडियां मिठियां छावां दिंदे फलां ते फुल्लां नाल लदे रुख बूटे धरती दा शिंगार हन। रुखां तों सखनी धरती दा क्यास करके देखो, दूर तक तुहानू वीरानी पसरी नज़र आउंदी है। जे घर दे वेहड़े विच कोई रुख होवे तां ठंडी मिठी छां मिलदी है। सियाल दे दिनां विच सुक्की पत्तियां अते टाणियां दा निग मानण लई धूणी बाल सकदे हां। मींह दे मौसम विच भिज्जण तों बचा लई इस दी पनाह लै सकदे हां। इस गल नूं इउं वी समझिया जा सकदा है कि रुख साडी निक्की तों निक्की ते वड्डी तों वड्डी पूर्ती करन विच मददगार हन। रुखां उत्ते चहचाउंदे पंछी भी मन मोह लैंदे हन। संघने रुखां दी अनहोंद कारण

कोयल की मिठी आवाज़ भी घट वध ही सुनाई दिंदी है। चिड़िया विचारियां तां शायद साढ़े नाल रुस के चिरां दियां किते दूर उडारी मार गईयां हन। मनुख किहो जी मानसिकता वाला हो गया है कि वह कुदरत दे नियमां दी उलंघना करन तो रत्ता नहीं घबराउंदा। असी कुड़ियां तो जम्मण दा हक तां पहलां ही खो लिया है, हुण चिड़िया भी साडी करोपी दा शिकार हो गईयां हन। सदियां तो मनुख रुखां दे अंग संग जीवन बसर करदा आ रहा है। धरती दे आदि काली बछिंदियां दा जीवन तो सदियां तक दरियावां दे कंढियां ते संघने जंगलों में बीतिया। जंगली फुल फल पत्ते ते होर जड़ी बूटियां ते जंगली जानवर ही उसकी खुराक का हिस्सा बनते रहे। इंज कुदरत की आगोश विच विचरदा मनुख कुदरत तो भै खांदा सी। विकास की पौड़ियां चढ़न की दौड़ विच मनुख इस कदर बेपरवाह हो गया कि उसने कुदरती नियमों नूं अन्नेवाह उलंघ के अपने जीवन लई अनेक अलामतां सहेड़ लईयां हन। रुखां प्रति मनुख की उदासीनता का ही नतीजा है। हालांकि रुख मनुख के जन्म तो लैके आखिरी सह तक उसका साथ निभाते हैं। धरती के किसी भी टुकड़े उत्ते कुदरती वातावरण के संतुलन बरकरार रखने घट्टो घट तीजे हिस्से उत्ते जंगलों का होना लाजमी है। भारत में जंगलों की यह स्थिति कुल खेत्रफल दे 20% रकबे तो भी घट है। अंकड़िया की यह स्थिति भी विश्वासयोग नहीं कही जा सकती। पिछले कुछ सालों में जिहड़े खेत्रां विच कुदरती जंगल सन उन्होंने इन्नी बेरहमी नाल कुहाड़ा चलाया गया है कि वातावरण का संतुलन तो विगड़ना ही सी। उत्थे सदियों तो वसदे लोग जिन्हां लई जमीन ते जंगल ही सब कुछ सी उह भी कुरला उठे। सड़कां मकाना उद्योगिक केंद्रां अते दियो कद माल की उसारी लई बिना किसी नीति अते योजना के रुखां बूटियां नूं बलि चढ़ा दिता जांदा है। विकास के नाव ते विनाश की लीला भी जारी है। ये गल भी ठीक है कि बदल रहे समय की लोड़ां नूं पूरा करन लई विकास होना जरूरी है, लेकिन यह विकास योजनाबद्ध तरीके नाल होना चाहिए है। जे रुखां की कटाई बिना ना ही सरदा होवे फिर ही इन्हां नूं कट्टिया जाना चाहिए है। इस तो पहला उस मात्रा विच रुख ला के इस घाटे नूं पूरा किया जा सकता है। रुखां की लगातार कटाई के सिट्टे वजों धरती रुंड मरुंड हुंदी जा रही है ते भौखौर दे सिट्टे वजो उपजाऊ भूमि बंजर बनती जा रही है। मनुख के जीन लई सब तो वड्डी लोड़ हवा की है। रुख सानू शुद्ध ते ताजी हवा दिंदे हन जो मनुख लई जीवनदान है। कारखानियां दा काला संघना धुआं फसलां लई वरतियां जांदियां कीटनाशक दवाइयां ते वाहनां द्वारा पैदा हो रहे प्रदूषण ने रुखां दी घाट कारण मनुख दे साह लैण वाली हवा नूं पलीत कर दिता है। नतीजे वजो वातावरण विच बिगाड़ पैदा हो गया है जिस दे प्रभाव सदका मनुखी जीवन नूं कई तरह के संकटां नाल जूझना पै रहा है। मनुखी जीवन विच रुखां दी महत्ता दा अनुमान इस गल तों ही लाया जा सकदा है कि कुछ समा पहला कलकत्ता यूनीवर्सिटी दे विज्ञानियों ने खोज राही ये सिट्टा कढ़िया है कि जे एक रुख की उम्र नूं 50 साल मन्निया जावे तो अपने जीवन विच 15,70,000 लीटर का लाभ दिंदा है। पुराने पंजाब के लोग रुखां नूं किन्ना प्यार करदे सन। उन्हां समें विच पिप्पल बोड़ अंब निम ते टाली वर्गे रुख पिंडां दी शान होया करदे सन। रुख लाउण नूं पुन्न दा कम समझा जांदा सी ते पिंडां विच तां रुख भाईचारक सांझ दे प्रतीक सन। सारा दिन लोग रुख हेठां जुड़े खुशियां गमियां हासा ठट्ठा मन परचावा ते लोक सियाणपा दे टोटके सांझे करदे सन। रुख हेठ जुड़ियां सत्थां एक तरह पिंड दे सूचना केंद्र वजों भी काम करदियां सन। अजिहे रुखां हेठ ही कदे सत्थां जुड़दियां सन, तियां दे मेले लगदे सन, मुटियारां पिंगां झूटदियां, गिद्धे दा पिड़ बजदा, गीतां दी छैबर लगदी अते अत दी गर्मियां विच लोक इन्हां रुखां दी ठंडी मिठी छां दा आनंद माणिया करदे सन। अनेकां साहितकारां ने रुखां दी महत्ता बारे गीत कविता ते लेख लिख छड्डे कि सानू रुखां दी महत्ता दा पता लग जावे। नवें रुखां दे मुकाबले पुराने रुखां नूं खत्म करन नाल बहुत असामापन पैदा हो गया है जिस ते सानू गंभीर सिट्टे भुगतने पै सकदे हन। जदों तक समाज का हर व्यक्ति रुखां की महत्ता प्रति जागरूक नहीं हुंदा उदों तक इस गंभीर मसले का हल नहीं किया जा सकता। सच्चाई तो यह है कि कारज किसी इकले या इकहरे दे करन वाला नहीं है। इस संबंधी पूरे समाज में सुचेत हो के पूरी सुहेदरता नाल यतनशील होने की लोड़ है। कोई भी लहर उदों तक सफल नहीं हो सकती जदों तक इस नाल लोक ना जुड़न।

चरखा बोल पिया। हुणे असी सुन रहे सी प्रकाश कौर ते नरेंद्र कौर दी आवाज विच ए लोक गीत। अगला लोक गीत है चन्ना वे मुंदरी दो माशे। सुनदे हां ए लोक गीत पूरन शाह कोटी दी आवाज विच।

छपितियां चुनिया ने कोरी मोड़े टंगिया माही दूरों हसता चे जुल्फां ने नंगिया सूफ दिया सुथरना ने तेड़ सप रंगिया चिट्टा चक्का ते

वाला चोवे मैया रत्ता नहीं जे थकता सजरा वे आया मुख से वांगु पखदा चन जे रूप पे आ गोरी दाओ तकता जीती जाम दी जवानी ना संभाली

हुणे असी उषा सेठ दी आवाज विच ए लोक गीत सुन रहे सी ते हुण प्रोग्राम दे अखीर विच सुनदे हां सरबजीत ते गुरदीप सिंह दी आवाज विच लोक गीत छलियां छलियां छलियां वीरा मैनू लै चलवे मेरियां कतण सहेलियां कलियां।

हुणे असीं सरलजीत ते गुरदीप सिंह दी आवाज़ विच लोक गीत सुन रहे सी। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। हुण इंदरप्रीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 10 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई।

ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: bringing the much-needed relief from the sweltering heat. In the ICC Women's T20 World Cup, England will face South Africa in the second semi-final at the Kennington Oval in London today. The match will begin at 11 p.m. IST. Winner of this match will face Australia in the final at the iconic Lord's Cricket Ground in London on the 5th of this month. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:10 और ठीक 22 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। दोस्तों मैं हूं अनुराधा और श्रोताओं आप हमें अपने पसंद के गीत लिखकर हमें मेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। मिलती हूं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, पहला जो मैसेज आया है उत्तम सिंह जंघेल जी का, वो लिखते हैं जय जोहर। जी हाँ श्रोताओं, जय जोहर मीन्स नमस्कार। जी हाँ, जय जोहर या जय जोहार भी हम इसको कह सकते हैं। और मैं सोच रही थी कि आपसे किस विषय पर बात करूं, लेकिन इनका पहला मैसेज देखकर मुझे लगा कि हम इसी विषय में थोड़ी सी चर्चा करें, थोड़ी सी बात करें और ये भी जानें कि आपके यहाँ पर किसी का अभिनंदन, अभिवादन किया जाता है तो क्या कहते हैं। जी हाँ, जय जोहर भारत के जो जनजातीय समाज है उस वहाँ पर प्रचलित एक सम्मानजनक अभिवादन है। जी हाँ, इसका अर्थ है सम्मानपूर्वक प्रणाम, आपको आदर सहित नमस्कार, आपका सम्मान हो। जी हाँ, और ये अभिवादन मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और आसपास के जनजातीय समुदायों में बोला जाता है। जोहार शब्द सम्मान, अभिवादन और शुभकामना का प्रतीक है। जैसे सामान्य तौर पर हम लोग नमस्ते या राम राम कहते हैं, वैसे ही जनजातीय समुदायों में जय जोहार या जय जोहर कहा जाता है। जी हाँ, और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं उत्तम सिंह जंघेल जी कोहका भिलाई से।

और इनके साथ जुड़े हुए हैं मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल जी। तो चलिए आप भी हमें मैसेज कीजिए, हम भी शामिल करेंगे आपका मैसेज। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

जी हाँ, हमसे जुड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन जी। कहते हैं अनुराधा जी गुड मॉर्निंग।

मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और उनके साथ हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश आया है सतीश अनेजा जी का, लिखते हैं अनुराधा बहन जी नमस्कार। जी हाँ, और प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और इनके साथ है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी, धन्यवाद। अगला मैसेज आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी का मैसेज आया है। अगला मैसेज है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले, पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतला राजेश जी। चलिए सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत।

हमारे साथ जुड़े हुए हरजिंदर सिंह भाटिया जी लिखते हैं, अनुराधा जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी, हमारे सिख समाज में सत श्री अकाल कहकर आदर करते हैं। जी हाँ, सत श्री अकाल सिख धर्म का एक पारंपरिक अभिवादन है। इसका अर्थ हुआ सत्य ही परमात्मा है जो सदैव अमर है, या सच्चे शाश्वत परमात्मा की जय। यह अभिवादन मुख्य रूप से हमारे सिख भाई बहन के अनुयायियों द्वारा किया जाता है और विशेष रूप

वादा नहीं बल्कि ईश्वर की सत्यता और अमरता का सम्मान व्यक्त करने का वाक्य है। जी हाँ, और इनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं, इनके साथ जुड़े हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया।

और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं कौशल्या देवगन। जय जोहार लिखते हैं छत्तीसगढ़ से, आपको भी जय जोहार। बिलाई छत्तीसगढ़ से हैं ये भेजते हैं, और इनके साथ हैं रोशन लाल देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता और डिम्पल देवगन। अगला मैसेज आया है अनारकली बाजार जागराव से, कमल पाठक, सुनील पाठक, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी लिखते हैं दिल से शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अगला मैसेज आया है संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गौरिया जालंधर से हमें मैसेज करते हैं। अगला मैसेज है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबन अब्बासी और अबी अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज है सत्य प्रकाश सोनी

तनौटिया रोहिणी से लिखते हैं, अपनी फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं। जी हाँ, पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को पूरा करें। अगला मैसेज आया है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का, छत्तीसगढ़ पलारी से, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। गांव खिटोरनी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हीना और सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सबकी फरमाइश भर सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव जी। वो लिखते हैं, अगर आप हमारे घर आए या कोई आता है तो हम उन्हें राम राम करते हैं। और इनके साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रतिवेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षदा देशमुख, और साथ में समस्त राजे जाधव देशमुख और वायल परिवार का ये मैसेज है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मालियान सराद सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। अगला मैसेज है, लिखते हैं अनुराधा जी, नमस्कार, हम भी आपको सुन रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है, कमाल है, आपको हमारा मेल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेल सभी के नज़र आ रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी के मेल शामिल करें। जी हाँ, मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमें मैसेज कर रहे हैं। चलिए सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलाब दास मानिकपुरी, लिखते हैं अनुराधा दीदी जी नमस्कार। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग समुदायों में अलग अलग अभिवादन शब्द है, लेकिन ज़्यादातर जय जोहार या जय राम बोला जाता है। जी हाँ, बहुत सुंदर। और इनके साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी जी, ये भेज रहे हैं हमें मैसेज लेवाई छत्तीसगढ़ से। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से मैसेज आया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया जी का, कहते हैं प्रोग्राम पसंद आ रहा है, धन्यवाद। अगला मैसेज आया है, कहते हैं सादर अभिनंदन होस्ट बहन, हमें नज़रअंदाज मत करिए प्लीज़, हमारा मेल शामिल कर लिए। जी हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान और छतरी टोल वेगड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला मैसेज आया है राजू अग्रवाल, केशव, विवेक, चरणदास, गांव चौधरीवास, जिला हिसार, हरियाणा से। और उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलिए सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्ण मेहरा जी, कोमल मेहरा जी, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा जी कहते हैं नमस्ते, मैं नमस्ते। और अगला जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, धर्मेंद्र छिपा जी, कपिल, ईशान, पूजा, भोपालगढ़ से। अगला मैसेज है किशन वानजानी जी का, कहाँ से लिख रहे हैं, सहारनपुर से हैं हमारे साथ आशा नारंग और सोनाली और सुरेश नारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला मैसेज आया है किशन वानजानी, स्वाति किशु, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं भाई हमें भी शामिल कर लीजिए, हम भी काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो लीजिए आपका हमने मेल शामिल कर लिया। अगला मैसेज आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से लिखते हैं अनुराधा जी सादर प्रणाम। प्रणाम, हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, मधुर प्रस्तुति, मोहक बातें, धन्यवाद। और हमारे साथ और कौन जुड़ा हुआ है, किशन वनजानी जी हमारे साथ है, और अनिल मोहन, रियासत हुसैन, पंकज शर्मा, बसंत कुमार सिन्हा, चरणदास, रामेश्वर, अनूप सिंह, नथवात, बुधराज खोरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चरणदास जी, हाजी मजहर, हिरमान शिंदे, मांगेराम जी, शिषपाल वर्धान, रविंदर मोहन दास, डी परिहार जी, शमशुल कमर राही जी हमारे साथ है, रोजी डिकोस्ट्रा हमारे साथ हैं, उनके साथ है जॉन डिकोस्ट्रा, पॉल डिकोस्ट्रा, विलियंस डिकोस्ट्रा, जनकपुरी, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला मैसेज आया है सुभाष योगी जी, अच्छा ये है कृष्णा कॉलोनी हांसी से ये मैसेज कर रहे हैं, और साथ ही इनके साथ है बब्बू डब्बू। चलिए सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

ये मैसेज आया है पंकज शर्मा जी का, लिखते हैं दीदी दीदी दीदी अनुराधा जी राम राम जी, हमारा नाम भी शामिल कर लीजिए। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, हरिपाल कौर, मीनाक्षी तिवारी, जग्गी दुआ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुड़े हुए हैं। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, अनम, यशव, सुहेल और रसीद वारसी जी। तो भाई इसी के साथ हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइचे भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया गया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली लौटकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ के हालात की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों राज्यों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय अंतर मंत्रालयी दल भेजा जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

साथियों, संगीत अपनी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने और जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति की मूल में बसी एक जीवंत कृति है और ये एक शक्तिशाली कला रूप है जो हमारी संस्कृति में रचा बसा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों और तालों के माध्यम से भक्ति, प्रेम और विभिन्न संस्कृतियों के साथ अनुभूतियों का वर्णन होता है। तो आज स्वरांजलि कार्यक्रम में श्रीमती सोनिया रॉय ख्याल गायन प्रस्तुत करेंगी। तालियों के साथ मेरे को स्वागत कीजिए। सोनिया जी ने विदुषी शांति शर्मा जी से संगीत की गहन शिक्षा ली। सोनिया जी, आपकी वर्षों की लगातार रियाज, संगीत के प्रति एक अनोखा बौद्धिक नजरिया, परफेक्शन की स्वाभाविक चाहत और सबसे बढ़कर आपकी सुरीली और मधुर आवाज, इन सब ने मिलकर आपके संगीत को एक ऐसा खास आयाम दिया है जो संगीत प्रेमियों का दिल जीत लेता है। आपने ताज समारोह, महाराणा, कुंभ संगीत समारोह, काशी संगीत समारोह जैसे कई संगीत समारोहों में अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। सोनिया रॉय की

और कोमल अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं और ICCR नई दिल्ली की एम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं। आज इस कार्यक्रम में आपके गायन का आनंद लेते हैं और आपके साथ तबले पर संगत करेंगे अख्तर हसन, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तानपुरे पर हैं राधिका शर्मा और प्रिया मिश्रा। हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी दिल्ली के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो आज सबसे पहले राग मियां की मल्हार में गायन का आनंद लेते हैं। विलंबित झुमरा ताल में निबद्ध है, बोल हैं करीम तेरो नाम, द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।

आज इस कार्यक्रम में आप सोनिया रॉय का गायन का आनंद ले रहे हैं। अगली प्रस्तुति राग मेघ में, यह झपताल में निबद्ध है। बोल हैं गर्जत घटा घन।

और साथियों, आज के स्वरांजलि कार्यक्रम की यह है अंतिम प्रस्तुति, राग देश। ये एक ताल में निबद्ध है और बोल हैं, बीती जात बरखा रुत।

अति सुंदर और सुरीली प्रस्तुति स्वरांजलि कार्यक्रम में आज आप सोनिया रॉय का गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद अख्तर हसन, एक बार तालियों के साथ। हारमोनियम पर थे जाकिर धौलपुरी, तानपुरे पर थी राधिका शर्मा और प्रिया मिश्रा। आज का यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा था प्रकाश थपलियाल, मनीष कुमार और सुनील कुमार के तकनीकी सहयोग से। प्रस्तुति सहयोग दिया विशाल कुमार, दिव्या और रेवती राजन ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। और अब आज का स्वरांजलि कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। अब अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे।

0: जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest.

आंगन। घर आंगन के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। शो की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के एक प्रेरणादायक विचार से। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो केवल हमें जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य में जीना भी सिखाती है। सच है शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है दोस्तों, बेहतर इंसान बनना भी है। साथ ही साथ आज हम विश्व खेल पत्रकार दिवस पर उन सभी खेल पत्रकारों को भी नमन करते हैं जो खिलाड़ियों के संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उनको दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, अभी मैंने आज का सवाल तो बताया ही नहीं। तो आज का सवाल है, खाली वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, यानी आपकी हॉबी क्या है। अपना जवाब हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म धरती से, और अब हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्होंने उस दौर में इतिहास रचा जब महिलाओं के लिए घर की चौखट पार करना भी आसान नहीं था। यह कहानी है भारत की पहली महिला स्नातक डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी गांगुली ने उस समय समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी जब लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने की कल्पना भी उस समय बहुत कम महिलाएं कर सकती थी। साल 1883 में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ने इतिहास रचा। वो भारत की पहले महिला स्नातक बनी। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से प्राप्त की। उस समय ये उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा के नए युग का आरंभ था। उनकी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बेथुने कॉलेज जुड़ा था जिसे भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय माना जाता था। लेकिन कादम्बिनी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की और भारत की पहली महिला चिकित्सकों में अपना स्थान बनाया। जिस समय महिलाओं का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ही असाधारण माना जाता था, उस समय उन्होंने डॉक्टर बनकर समाज की सोच को बदल दिया। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली केवल एक डॉक्टर नहीं थी बल्कि महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की सशक्त प्रतीक भी थी। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमाएं हमारे मन में होती है। कादम्बिनी गांगुली की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक साहसिक निर्णय से होती है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो केवल अपना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का रास्ता भी रोशन करती है।

अभी हम सुन रहे थे मिन मिनी को फिल्म रोजा से। और दोस्तों, कहते हैं किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उस ज्ञान, संस्कृति और आविष्कारों से होती है जो वो पूरी दुनिया को देता है। तो आज हम बात करते हैं उन अनमोल सौगातों की जो भारत ने विश्व को दी और जिसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी अधूरी लगती है। तो सबसे पहले बात शतरंज की। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग शतरंज खेलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में चतुरंग नामक खेल के रूप में लगभग 6वीं शताब्दी में हुई थी और यहीं से ये खेल पूरे विश्व तक पहुंचा। और अब बात करते हैं शून्य का। गणित की दुनिया में शून्य का महत्व इतना बड़ा है कि इसके बिना आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर और तकनीक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की एक और अनमोल देन है चिकित्सा विज्ञान। लगभग 2600 वर्ष पहले महान वैद्य सुश्रुत ने सैकड़ों शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल तकनीकों का भी उल्लेख किया था। और दोस्तों, आज हम सभी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शैम्पू शब्द हिंदी के चंपी यानी सिर की मालिश से निकला है। भारत में सदियों पहले रीठा, शिकाकाई और आंवला जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बालों की सफाई और देखभाल की परंपरा रही है। बाद में यही विचार दुनिया भर में शैम्पू के रूप में लोकप्रिय हुआ। कपास और सूती वस्त्रों की कहानी भी कम रोचक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय 3100 ईसा पूर्व भारत दुनिया के उन शुरुआती क्षेत्रों में था जहां कपास की खेती और उससे वस्त्र बनाने की कला विकसित हुई और डायमंड्स यानी हीरे। हजारों वर्षों तक भारत ही दुनिया में हीरों का एकमात्र ज्ञात स्रोत था। गोलकुंडा की खदानों से निकले अनेक प्रसिद्ध हीरो ने विश्व इतिहास में अलग पहचान बनाई। दुनिया के सबसे चर्चित हीरो में से एक कोहिनूर भी भारत की धरती से ही निकला था। इतना ही नहीं, योग, आयुर्वेद, दशमलव प्रणाली और ध्यान की परंपरा जैसी अनेक अमूल्य धरोहरें भारत ने विश्व को दी है, जिनका प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप शतरंज की बिसात बिछाएं, शून्य का प्रयोग करें या शैम्पू से बाल धोएं, तो याद रखिएगा इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं भारत की समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है।

0: अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर को, फिल्म थी पूरब और पश्चिम। और हमारे पास कुछ मेल्स भी आए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं वो रेडियो एफएम गोल्ड भी सुनते हैं। और रश्मि कपूरिया, राधा वंदना, नीता, अंजू श्रृंखला, स्निग्धा वासु, सारिका, ये सब उस खाली समय में पुराने गीतों पर आधारित डम्ब शराज खेलते हैं। सुदर्शन मुखी जी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। चरण दास जी भी पुस्तक पढ़ते हैं और संगीत सुनते हैं। और महेश अग्रवाल जी को हमारी जानकारी बहुत पसंद आई और अभी अभी जो गाना सुन रहे थे वो भी बहुत पसंद आई। आप सबका मेल्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग खाली वक्त में क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। आपके संदेश का रहेगा हमें इंतजार।
1: ओ सजना

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म परख से। और दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी अद्भुत संरचना की जो धरती के भीतर उतरती है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मंदिर उल्टा खड़ा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव की, जिसे भारत की सबसे भव्य और अनोखी बावड़ियों में से एक गिना जाता है। करीब 900 वर्ष पुरानी इस अद्भुत धरोहर का निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। वाव यानी सीढ़ीदार कुआं। लेकिन रानी की वाव सिर्फ पानी संग्रह करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह कला, संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। रानी की वाव को देखकर ऐसा प्रतीत

लगता है मानो किसी भव्य मंदिर को उल्टा धरती के भीतर उतार दिया गया हो। सामान्य मंदिरों के शिखर आकाश की ओर उठते हैं, जबकि यहाँ सीढ़ियाँ और मंडप धरती की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। यही कारण है कि इसे अक्सर उल्टा मंदिर भी कहा जाता है। 7 स्तरों वाली इस वाव की दीवारों पर 500 से अधिक प्रमुख और लगभग 1000 से भी अधिक छोटी बड़ी मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, अप्सराएं और भारतीय जीवन के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। पत्थरों पर की गई यह बारीक नक्काशी आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। रानी की वाव की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत के गौरव का प्रतीक है। और इसी तस्वीर को भारत के 100 रुपए के नोट पर भी छापा गया है और यह बहुत कम स्मारकों को मिला ऐसा सम्मान है जो इसकी विशिष्टता को और भी बढ़ा देती है। सदियों तक सरस्वती नदी की बाढ़ और मिट्टी में दबे रहने के बावजूद यह अद्भुत संरचना सुरक्षित रही। जब इसे पुनः खोजा गया तब दुनिया ने भारतीय वास्तुकला के इस अनमोल रत्न को फिर से देखा। रानी की वाव हमें बताती है कि भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें सौंदर्य, आध्यात्मिकता और विज्ञान का अद्भुत मेल भी था। यह ऐसी धरोहर है जिसे देखकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। तो अगली बार जब आप गुजरात जाएं तो रानी की वाव को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह केवल एक बावड़ी नहीं है बल्कि पत्थरों में लिखी भारत की गौरवशाली कहानी है, एक रानी और एक राजा की।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म जॉनी मेरा नाम से। और दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या है, सोना, हीरा या पैसा? नहीं, आज का सबसे बड़ा खजाना है डेटा। आपकी तस्वीरें, बैंक अकाउंट, ईमेल, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि किसी देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी। और इस खजाने की रक्षा करता कौन है? एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जिस तरह पुराने समय में किलों की रक्षा के लिए सैनिक होते थे, उसी तरह आज की डिजिटल दुनिया के प्रहरी हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। इनका काम सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि किसी भी साइबर अटैक से पहले कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करना भी होता है। यानी ये डिजिटल जासूस भी हैं और सुरक्षा कवच भी। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक होने की बात कही जाती है। ऐसे में हर बैंक, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, ई कॉमर्स कंपनी, सरकारी विभाग और यहां तक कि सोशल मीडिया कंपनीज को भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। अगर आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लॉजिकल थिंकिंग और पहेलियां सुलझाना पसंद है तो ये करियर आपके लिए है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुए करियर विकल्पों में से एक है। अच्छे स्किल्स होने पर शानदार सैलरी, वर्क फ्रॉम होम के अवसर और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का मौका भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में लोग आपको सिर्फ आईटी प्रोफेशनल नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया का रक्षक भी कहें, तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एक ऐसा करियर है जिस पर आज से ही नजर डालना शुरू कीजिए। याद रखिए, भविष्य उसी का है जो सिर्फ तकनीक का उपयोग करना नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा करना भी जानता है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण को, फिल्म थी बड़े दिलवाले। और कभी कभी दुनिया हमें हमारे कपड़ों से परखने लगती है, कौन क्या पहनता है, कैसी दिखती है, उसका रंग कैसा है, वो किस पृष्ठभूमि से आता है। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके सपनों, उसकी मेहनत और उसके व्यक्तित्व से बनती है। ज़रा सोचिए, एक साधारण सी साड़ी जो ना बहुत महंगी थी, ना उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे, ना किसी फैशन डिज़ाइनर की कल्पना थी, फिर भी वो आज वो साड़ी दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम में, वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में सहेज कर रखी गई। आखिर क्यों? क्योंकि उस साड़ी को पहना था डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ ने, इसरो के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन के डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर ने, उसी दिन जब भारत का मंगलयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर मंगल की ओर बढ़ा था। डॉक्टर नंदिनी ने वही साड़ी पहनी थी। दुनिया उन्हें भारत की रॉकेट वुमन कहता है। तो जरा ठहर कर सोचिए, संग्रहालय में जगह उस साड़ी को नहीं मिली, बल्कि उस उपलब्धि को मिली, उस जुनून को मिली, उस स्त्री के साहस और प्रतिभा को मिली जिसने दुनिया को बता दिया कि सपनों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को कभी कभी दूसरों के नजरों से आंकने लगती है, याद रखिए, आपकी त्वचा का रंग आपकी क्षमता तय नहीं करता, आपके कपड़े आपकी बुद्धिमत्ता की सीमा नहीं बताते, आपका शहर आपकी भाषा या आपका पारिवारिक परिवेश आपके भविष्य का फैसला नहीं करते हैं। आप जो पहनना चाहिए उसे गर्व से पहनिए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपनी पहचान को संजोइए, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने व्यक्तित्व को बनाइए, क्योंकि दुनिया अंततः ये याद नहीं रखती कि आपने क्या पहना था, दुनिया ये याद रखती है कि आपने क्या कर दिखाया। और हाँ, अगर कभी कोई आपको आपके पहनावे से आंकने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर बस इतना कह दीजिए कि मेरे कपड़े मेरी पसंद हैं, लेकिन मेरी पहचान मेरी मेहनत है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से तय होती है, और जब हौसले बुलंद हो तो आसमान भी सीमा नहीं रहता।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म घर से, और हम बात करते हैं अब हमारी परंपराओं के पीछे छिपे विज्ञान और संस्कृति की। तो केले के पत्ते पर खाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, खुद भी खाया होगा, और उसमें हम खाना पकाते भी हैं। लेकिन क्यों? भारत के कई राज्यों जैसे दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर में केले के पत्ते पर भोजन परोसने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे कई रोचक कारण भी हैं। जब गर्म भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है तो पत्ते की प्राकृतिक परत से हल्की सी सुगंध भोजन में घुल जाती है, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इडली, पातोड़ी या मछली जैसी कई चीजें केले के पत्ते में लपेट कर पकाई जाती है। और केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल नामक एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। माना जाता है कि गर्म भोजन के संपर्क में आने पर इनका कुछ अंश भोजन तक पहुंच जाता है। और महत्वपूर्ण बात, केले का पत्ता पूरी तरह से प्राकृतिक है, बायोडिग्रेडेबल है, न धोने की चिंता, न प्लास्टिक का कचरा, यानी पर्यावरण के प्रति भी एक जिम्मेदार कदम। और शायद यही हमारी भारतीय परंपराओं की खूबसूरती है, जहां स्वाद, स्वास्थ्य और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो अगली बार जब आपको केले के पत्ते पर भोजन करने का अवसर मिले तो उसे केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव समझिए।

जी हाँ, हम भी चले। अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले को फिल्म पड़ोसन से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम को और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास

0: जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takeuchi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takeuchi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takeuchi to India. The External Affairs Ministry said the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, ये समय है उस कार्यक्रम का जिसका आपके साथ हमें भी बेसब्री से रहता है इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपके रेडियो हम सफर सोनाली। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, लेकिन ऐसे कैसे जब तक हम आपके साथ में कुछ बात ना कर लें, ऐसे कैसे आपको बता दें कि आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो केवल अपने प्रदर्शन के समय ही नहीं बल्कि बरसों बाद भी उसी उत्साह के साथ याद की जाती हैं। उनके गीत सुनते ही जैसे समय पीछे लौटने लगता है और किरदार आंखों के सामने उतर आते हैं और सिनेमा घर की वही पुरानी सीटें, वही तालियां और वही रोमांच फिर से महसूस होने लगता है। आज की जो फिल्म है, आपको बस इतना बता दूं कि 1998 में ये फिल्म रिलीज़ हुई है और ये बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही है। देखिए, अब मैंने आपको हल्का सा हिंट तो दे दिया है और ना एक थीम म्यूजिक भी बजा रही हूँ। अगर आप बता दें कि आज की हमारी फिल्म कौन सी है तो क्या ही बात हो। हाँ, लेकिन देखते हैं कौन कौन हमें बता सकता है कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। देखिए, ये जो फिल्म है ना, ये 20 नवंबर 1998 को प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक जोड़ी अब्बास मस्तान ने। चलिए, बहुत सारी हिंट हो गई, अब मैं आपको एक गाना सुना ही देती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने पता कर लिया ना कौन सी फिल्म है।

जी हाँ, अब आप लोगों से कोई भी बात कभी छुपी रह सकती है भाई, इतने इंटेलिजेंट श्रोता है ना हमारे, कि इन्हें आप एक क्लू दीजिए और आप यकीन मानिए वो उसी वक्त उसे पकड़ लेंगे और आपके सामने हर पहेली का जवाब एकदम दे देंगे। हाँ दोस्तों, हमारी आज की फिल्म है 1998 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर, और हम इसी की बात आज इस पूरे समय आपके साथ करेंगे। तो हमारे बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही हमें अपने जवाब भेज दिए हैं, तो उनके नाम मैं खैर आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अभी आप ये जो गाना सुन रहे हैं ना, ये गाना गाया है अलका याग्निक के साथ कुमार शानू ने, और हम इस फिल्म के बारे में आपको हमने बताया था कि निर्देशन किया अब्बास मस्तान ने। इस फिल्म के निर्माता थे कुमार एस तौरानी और रमेश एस तौरानी, जबकि संगीत की जो जिम्मेदारी संभाली ना वो संभाली अनु मलिक ने और गीत लिखे समीर ने। फिल्म में जो मुख्य भूमिकाएं निभाई वो थे बॉबी देओल और प्रीति जिंटा, जबकि उनके साथ राखी, सुरेश ओबेरॉय, दिलीप ताहिल, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, शरद सक्सेना और आशीष विद्यार्थी जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आए। देखिए दोस्तों, हमेशा हम ना आपको कहानी भी बताते हैं इस फिल्म की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपके साथ हमें ये जानकारियाँ साझा करनी चाहिए, है ना। तो आज हम ना पूरे समय ये कोशिश करेंगे कि इस फिल्म और इसमें जो पर्दे के सामने नजर आए वो कलाकार, और इसके अलावा पर्दे के पीछे जो कलाकार नजर आए उनके बारे में भी, कलाकार ही बोलेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि अगर वो नहीं अपनी कला का जलवा हमें दिखाते तो हमारे सामने पर्दे की इतनी रूप भली दुनिया कभी हमारे सामने कभी आती ही नहीं, है ना। तो हम उनके बारे में आपके साथ में सारी बातें साझा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए अब मैं क्यों ना बात करूँ उन दोस्तों की जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो हमारे साथ हैं, देखिए, बिल्कुल है सुनील पाठक जी, और ये लिख रहे हैं एक ही फिल्म के तहत फिल्म सोल्जर की गीत और कहानी सुन रहे हैं। ये फिल्म अपने ज़माने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप, और इसी खूबसूरती को आज हम अपने स्टूडियो में भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये हैं हमारे साथ मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार कुमकुम। फिर हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और इन्होंने भी बिल्कुल, देखिए मैं जिन जिन के भी नाम अभी आपके सामने ले रही हूँ ना हमारे दोस्तों की, इन सभी ने बिल्कुल सही हमें जानकारी दी है कि हम फिल्म सोल्जर की बात कर रहे हैं। फिर हैं ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, और लिख रही हैं सोनाली मैम जी, नमस्कार। ओहो, देखिए अब यहाँ पर तो मैंने जहाँ बोला कि मैं सही लोगों के नाम ले रही हूँ, ये तो आंसर मुझे गलत मिला है। देखिए बबलू साहू जी, ये बाजीगर नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया, ये सोल्जर है। और अरे वाह, क्या बात है, अजीत भावसार जी ने तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। तो देखिए ना, प्रमिला भावसार जी और अजीत भावसार जी, आप विरमगाम गुजरात से हमारे लिए लिख रहे हैं, आपने सब बता दिया कहाँ कहाँ शूटिंग हुई। देखिए मेरा ना थोड़ा सा आप काम आसान कर दे रहे हैं, तो देखिए वो सारी बातें मैं आपके साथ में ज़रूर साझा करूँगी जो अजीत भावसार जी ने हमें लिखी है। और फिर ये कौन है, ये हैं जी, ये नोहर राजस्थान से हैं, नरेंद्र सुथार, मनोज सुधार और हिमांशु सुधार, इन्होंने भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये 1998 में रिलीज खूबसूरत फिल्म सोल्जर है। और अच्छा, वो लिख रहे हैं कि मेरी शादी फरवरी 1999 में हुई थी, उस समय सोल्जर फिल्म और इसके गीत बहुत सुपरहिट थे। तो अच्छा, तो आपको देखिए वो पुराने दिन भी याद आ गए होंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आज हमारी इस फिल्म के माध्यम से आप उन सारे दिनों को दोबारा जी लीजिए। और ये हैं अस्तुपुरा ज़िला मऊ से मज़र अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं, तो अभी हम बातें और भी करेंगे, इसके पहले ना इस फिल्म का एक और गाना सुनते हैं, जो सुनकर के आप पक्का पक्का बल्ले बल्ले हो जाएंगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत। और देखिए हुआ ना मन मिजाज से बल्ले बल्ले। हाँ तो हम बात कर रहे हैं फिल्म सोल्जर की। और देखिए इस फिल्म में ना गाने बहुत सारे हैं, कम से कम तकरीबन 7 गाने हैं इसमें, और हम सब गाने आपके साथ में साझा करना चाहते हैं और आपकी बातें भी शुमार करना चाहते हैं। तो हमारे साथ देखिए कौन जुड़े हैं। हमारे साथ संजय ढिंगनिया है, ये हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपा ढिंगिया। और फिर हमारे साथ हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और ये हैं गांव हीरा वाली, फजिल का पंजाब से। फिर हमारे साथ हैं ये कौन है, हाँ गांव जाओ खुद राजस्थान से, शंभुदयाल खट्टक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक। और इन्हें भी हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और फिर ये हैं आदाब व नमस्कार बहन जी, ये हैं फ्रेंड्स रेडियो ग्रुप छोटी बलिया मुंबई करजत से, कौन है, अहमद भाई फुलवाली, नूर आयशा अहमद फुलवाली, इमरान अहमद फुलवाली, जूही इकबाल, सदफ आरजू, इकबाल अहमद फुलवाली और समस्त फुलवाली फैमिली, शुक्रिया। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से हैं सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश, और इन्हें भी अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सोल्जर, शुक्रिया। फिल्म आपने सही पहचानी है। फिर ये हैं आज हमें फिल्म सोल्जर के गीत और की जानकारी दे रही हैं, ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबलू और डब्लू। और फिर हमारे साथ हैं बबलू और डब्बू, माफ़ कीजिएगा, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से। फिर हैं इसहाक मोहम्मद,

जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम गगनीचा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, शुक्रिया। ये हैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार। और ये कौन है? ये है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, इंदिरा नगर, भवरपुर से। और चलिए, धर्मेंद्र छिपा जी का चिरपरिचित ईमेल हमारे पास आ चुका है। पूजा परिवार है इनके साथ और कपिल छिपा जी भी हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपका नॉलेज से भरपूर, पूरे इन्फॉर्मेटिव होता है आपका ईमेल। फिर ये हैं ग्राम नागरकोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू। आपका मैं ले चुकी हूँ। जी जी, आपने उसे करेक्ट कर दिया फिल्म को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? हम बात कर रहे थे फिल्म सोल्जर की और उसकी बातों की। तो आइए, अब मैं आपके साथ में जो गाना लेकर आ रही हूँ दूसरा, उसके पहले आपको बता दूँ कि हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का समय था कौन सा? 90 का समय। एक और रोमांटिक फिल्मों का जादू था, तो दूसरी ओर सस्पेंस और एक्शन पर आधारित फिल्में भी दर्शकों को आकर्षित कर रही थी। बाजीगर और खिलाड़ी जैसी सफल फिल्में देने के बाद अब्बास मस्तान एक बार फिर एक ऐसा विषय लेकर आए थे जिसमें प्रेम भी था, परिवार भी, विश्वासघात भी और रहस्य भी। यही संतुलन सोल्जर की सबसे बड़ी ताकत बना था। और हर मोड़ पर कहानी में एक नया सवाल खड़ा होता था और अंत तक दर्शक अनुमान लगाने पर मजबूर रहते थे कि आखिर इसकी एंडिंग क्या है। हाँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपका एंड बोल करके यहाँ पे मजाक किरकिरा नहीं करूँगी। आप ज़रूर ये फिल्म देखें। और इसकी सबसे दिलचस्प बात आपको पता क्या है कि इसकी प्रेरणा पंजाब की एक वास्तविक घटना से ली गई थी जिसे बाद में पटकथा का रूप दिया गया था। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक और दूसरे गाने की।

लेते हैं आपकी बातों से। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें आप लोग कैसे लिख देते हैं भाई, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। और इतनी सारी जानकारियां आपके पास में कहाँ से आती है, अच्छा बताइए तो। देखिए, ये हमारे सदकाने सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और लिख रहे हैं कि इन्हें आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ हो, शुक्रिया। और इन्हें आज की फिल्म के बारे में भी पता चल गया है और सोल्जर की बात लिखी है, शुक्रिया बहुत सारी, हमारी तरफ से भी आपको बधाई। फिर ये है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। और फिर है पहाड़गंज मुल्तानी थाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। और फिर है हमारे साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से पेश करता आदरणीय जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया। तो ये हमें कौन प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। फिर है भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, गोविंदा, अक्षय कुमार देवांगन। और ये है हमारे साथ हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से। फिर है हमारे साथ पीएस नवकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। फिर है मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरियेकर, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है उसके लिए धन्यवाद। ये कौन है, ये हैं बसंत कुमार सिन्हा जी है। और ये देखिए, ये फिल्म ना एक ही फिल्म से है तो इसमें मैं तो आपको सोल्जर के गाने सुनाऊँगी, तो आप कृपा करके आज फरमाइशी, ये फरमाइशी वाला प्रोग्राम नहीं है, तो आप फरमाइशी के लिए हमारा सुबह 10:10 पे प्रोग्राम होता है, उसमें आप ज़रूर अपनी फरमाइश भेजिएगा। और ये हमारे साथ और कौन है, ये हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ठिंगिया, नमन ठिंगिया, अपार ठिंगिया, शुक्रिया। और हम अभी बात कर रहे हैं अगेन सोल्जर की ही, तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ना प्रीति जिंटा और बॉबी देओल दोनों मुख्य किरदारों में थे। बरसात और गुप्त जैसी फिल्मों के बाद सोल्जर ने बॉबी देओल को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर मजबूत सफलता दिलाई। और आज भी बॉबी देओल के यादगार किरदारों की बात होती है तो सोल्जर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और रही बात प्रीति जिंटा की, तो ये फिल्म उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। और आपको बता दें, सोल्जर उनकी पहली साइन की हुई फिल्म थी, लेकिन रिलीज पहले कौन सी हुई थी, मणि रत्नम की दिल से। इसके बावजूद मुख्य अभिनेत्री के रूप में सोल्जर ने उन्हें घर घर तक पहचान दिलाई। उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, आत्मविश्वास और स्वाभाविक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी वर्ष जब दिल से और सोल्जर में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था। और रही बात, देखिए किसी भी फिल्म का जो संगीत होता है वो उसकी आत्मा होती है ना, तो इस फिल्म की आत्मा थी अनु मलिक का संगीत। अनु मलिक ने इस फिल्म में रोमांस, लोकधुन और आधुनिक संगीत का एक ऐसा संगम रचा कि पूरा संगीत एल्बम वर्ष 1998 के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों में शामिल हुआ। गाने हैं जैसे सोल्जर सोल्जर, तेरा रंग बल्ले बल्ले, महफिल में बार बार, हम तो दिल चाहे तुम्हारा, और मेरे ख्वाबों में जो आए, जैसे गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय थे। गीतकार समीर ने बेहद सरल लेकिन दिल में उतर जाने वाले बोल लिखे, और कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और हेमा सरदेसाई ने अपनी आवाजों से इन गानों को यादगार बनाया।

0: सोनू निगम को आप सुन रहे हैं और फिल्म है सुलझे। आपको बस चलते चलते इतना बता दूं कि इस फिल्म की जो लोकेशन थी वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों ने सोल्जर को एक बहुत ही अलग सी एक सनिक खूबसूरती दी। और इस समय उस समय विदेशी लोकेशन पर इतनी व्यापक शूटिंग बहुत आम बात नहीं थी, तो बस दर्शकों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और 1998 में ये फिल्म बनी थी महज 8.5 करोड़ रुपये में, लेकिन इसने 39 करोड़ रुपये का कारोबार किया और ये उस समय की सफल फिल्मों में शामिल रही। पुरस्कारों की बात करें तो 44th जी हाँ फिल्म फेयर पुरस्कारों में सोल्जर को 5 श्रेणियों में नामांकन मिला। फिल्म ने 2 पुरस्कार अपने नाम किए, प्रीति जिंटा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री और दिवंगत अकबर बख्शी को सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये था हमारे और आपके साथ आज हमने बात की फिल्म सोल्जर की। समय की कमी की वजह से बहुत से गाने आपको और भी नहीं सुना पाए, इसके लिए हम आपसे सच में माफ़ी चाहेंगे। बस आपको बता दूं कि आपका साथ हमारे लिए हमेशा बहुत मायने रखता है, तो आपके नाम आपको बता देती हूँ। ये हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। फिर हैं हमारे साथ कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, कुरकिरत राहुल, और ये हैं गुरशब्द सिंह राहुल। फिर हमारे साथ हैं और भी हमारे दोस्त हैं, ये हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी तामुरिया, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, पोता है इनका मास्टर अल कबीर। और समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकुर राधव गुप्ता। फिर है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की फिल्म सोल्जर में लीड वाली सफल फिल्म थी, जी हाँ ये हमें लिख रहे हैं डीबी राणा नेहरू विहार से। और हमारे साथ हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और ये कौन है, बसंत कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, श्रीमती रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी गुप्ता, और इन्हें भी ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। फिर ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ये सफ़र आपने तय किया आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले पंजाबी में फिर उर्दू में।
1: कुछ और गीता दे नाल
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री साने ताकायुची दरमियान सलाना शिखर सम्मेलन पत्री कल बाद नवी दिल्ली विच जारी, कई समझौतियां दे दस्तखत होण दी उम्मीद। केंद्रीय मंत्री भूपिंदर यादव का कहना है कि सरकार विकास नूं स्थिरता नाल संतुलित करन वालियां नीतियां राहीं चौगिरदा सुरक्षा नूं यकीनी बना रही है। सलाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। बेंगलुरु दक्षिणी तालुक विच एक चट्टान डिगण नाल 7 प्रवासी मजदूरों की मौत, कई होर जख्मी, ते पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच मानसून की छेती आमद नाल तापमान विच भारी गिरावट, 7 जुलाई तक तीनों थावां ते भारी मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विच अपने जापानी हमरुतबा साने ताकाईची नाल सलाना शिखर सम्मेलन पत्री गलबात कर रहे ने। ए शिखर सम्मेलन दोवां धिरां नूं समुच्चे दवल्ले सहयोग की समीक्षा करन अते इन्हां नूं मजबूत बनाउण दे नाल नाल आपसी हितां दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन दा मौका प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ते प्रधानमंत्री ताकाईची विचकार गलबात तों बाद कई समझौतियां दा वटांदरा होण दी भी उम्मीद है। अज पहलां राष्ट्रपति भवन विखे प्रधानमंत्री ताकाईची दा रस्मी स्वागत कीता गया। इस मौके ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद सन। जापानी प्रधानमंत्री कल शाम भारत दे 3 दिनां

दौरे ते नवी दिल्ली पहुंचे ने। यह प्रधानमंत्री ताकाइची दा भारत दा पहला अधिकारित दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत ते जापान विचकार विशेष रणनीतिक अते आलमी भाईवाली नूं अगे वधाउण लई इक अहम कदम है। साडे पत्रकार ने खबर दिती है कि भारत जापान संबंध अक्सर उच्च पदरी राजनीतिक शमूलियत राही झलकदे ने। हाल ही विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस विच G7 शिखर सम्मेलन दौरान जापानी प्रधानमंत्री नाल गलबात कीती सी। दोवें नेता इस तो पहला पिछले साल नवंबर विच जोहानसबर्ग विच होए G20 सम्मेलन दे मौके ते मिले सन। सालाना सम्मेलन भाईवाली दे रणनीतिक एजेंडे नूं अगे वधाउण वाला प्रमुख मंच बनिया होया है। चुगिरदा जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अज इस गल ते जोर दिता है कि सरकार विकास नूं स्थिरता नाल संतुलित करन वालियां नीतियां राही चुगिरदा सुरक्षा नूं यकीनी बनाउंदे होए जीवन दी सौख नूं उत्साहित कर रही है। इलैक्ट्रिक आवाजाई ते एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करते हुए श्री यादव ने कहा कि सरकार दा दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुगिरदा ते आर्थिकता दे नालों नाल विकास नूं यकीनी बनाउण दे दृष्टिकोण नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने इस गल ते भी जोर दिता कि तेज सनअती विकास के बावजूद देश का जंगलात कवर 2014 विच 7,01,673 वर्ग किलोमीटर तो वध के 7,15,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार सनअतां नूं मुड़ वरतोयोग अते घटाउण दे सिद्धांत आधारित एक सर्कुलर आर्थिकता नूं उत्साहित करन दे उद्देश नाल निर्माण मलबा ते ई कूड़ा समेत रहिंद खूंद प्रबंध लई जिम्मेवारी लैण लई उत्साहित करन वास्ते विस्तार पूर्ण उत्पादक जिम्मेवारी EPR नूं अगे वधा रही है। उन्होंने भी कहा कि सरकार दीआं सनअती नीतियां चुगिरदे पक्खी रोजगार बेहतर बुनियादी ढांचे अते पारदर्शिता ते केंद्रित ने। अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्दी ते व्यापक सम्मेलन लई भारत दी लंबे समय तो चली आ रही तजवीज़ नूं संयुक्त राष्ट्र महासभा विच नवी हमायत मिली है। दहशतगर्दी दे मुकाबले बारे संयुक्त राष्ट्र आलमी रणनीति दी नौवीं समीख्या जिसने 140 वोटां नाल अपनाया गया ने मैंबर देशां नूं अपील कीती है कि ओह 3 दहाके पहलां भारत वल्लों तजवीज़ कीते गए सम्मेलन नूं अंतिम रूप देण लई हर संभव कोशिश करन। संयुक्त राष्ट्र विच भारत दे स्थाई प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एक व्यापक तौर ते सहमति वाले कानूनी ढांचे की अणहोद दहशतगर्दी विरोधी आलमी यत्ना नूं कमजोर करती है। उन्हें जोर दे के कहा कि दहशतगर्दी नाल नजिठण विच कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिदा अते दोषियां रकमा जुटाउण वालियां ते स्पॉन्सरां नूं जवाबदेह बनाउण की मांग भी की थी। उन्हें कहा कि सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुकदमा चलाउण ते हवालगी नूं मजबूत करेगा ते दहशतगर्दां नूं सुरक्षित पनाहगाहां फंडां ते हथियारां तों इनकार करेगा। अमरीका इजराइल ते अर्जेंटीना ने रणनीति दे विरुद्ध विच वोट दित्ती। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNJalandhar। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR Jalandhar अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIRJalandhar। अज जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू दे भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप तो सख्त सुरक्षा दरमियान सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लई 4,822 श्रद्धालुआं दे पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। साढ़े जम्मू वाले पत्रकार ने खबर दिती है कि उपराज्यपाल ने पहलगाम अते बालटाल दोवां रूटां लई श्रद्धालुआं नूं हरी झंडी दिखाई। इस पवित्र यात्रा विच हिस्सा लैण लई देश दे वख वख हिस्सिआं तों श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे ने। 4,822 श्रद्धालुआं दा पहला जत्था जिस विच बालटाल रूट लई 2,312 श्रद्धालु अते पहलगाम रूट लई 2,510 श्रद्धालु शामिल ने 147 वाहनां दे काफिले विच रवाना होया। दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सेल ने ISI दी हमायत प्राप्त अंतरराज्जी दहशतगर्दी अते हथियारां दे नेटवर्क ते कारवाई करदिआं 4 मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है। पुलिस ने दस्सिआ कि मुलजम ISI हैंडलर शहजाद पट्टी अते उसदे साथियां दे इशारे ते राष्ट्रीय राजधानी विच दहशतगर्द गतिविधियां नूं अंजाम देण दी योजना बना रहे सन। कारवाई दौरान 2 विदेशी पिस्तौल 9 जिंदा कारतूस अते 5 मोबाइल फोन बरामद कीते गए। दिल्ली पुलिस मुताबिक मुलजम फड़े जाण तों बचण लई विदेशी नंबरां दी वरतों कर रहे सन। इह उन्हां दे पाकिस्तानी हैंडलर वल्लों प्रदान कीते गए सन। पुलिस ने दस्सिआ कि पंजाब दे एक मुलजम नूं दिल्ली विच धार्मिक स्थानां ते पुलिस अदारियां दी जासूसी करन दा काम सौंपिया गया सी। पुलिस ने भी दस्सिआ कि उस नूं शहर विच गोलीबारी करन दा भी काम दित्ता गया सी। बंगलुरू दक्षिणी तालुक विच इक चट्टान डिगण नाल 7 प्रवासी मजदूरां दी मौत हो गई है। ए हादसा मदनपटना पिंड

विच कावेरी क्रशर पत्थर खान विच एक वड्डी चट्टान डिगन करके वापिया जिथे मजदूर काम कर रहे सन। जख्मियां नूं इलाज लई हस्पताल च दाखल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया ते खान मालिका दी भाल कर रही है। मृतक बिहार मध्य प्रदेश ते उत्तरी कर्नाटका दे वसनीक सन। कर्नाटका दे उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना ते दुख प्रगट कीता है ते खान मालिका विरुद्ध ढुकवी कारवाई ते निर्देश दिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका दे बेंगलुरु विच एक पत्थर दी खान विच वापरे हादसे कारण होए जानी नुकसान ते सोग प्रगट कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने जख्मियां दे जल्दी ठीक होण दी प्रार्थना कीती। सरकार ने साबका फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी बारे सोशल मीडिया ते फैल रहे एक वीडियो नूं जाली दस्या है। ए पाकिस्तानी खात्यां तों प्रसारित कीता जा रहा है। वीडियो विच झूठा दावा कीता गया है कि जनरल द्विवेदी ने विरोध विच इस्तीफा दे दिता अते जनरल तीरथ सेठ नूं कमान सौंप दिती। प्रेस सूचना ब्यूरो दी तथ्यां दी जांच बारे इकाई ने कहा कि यह वीडियो एआई नाल तैयार कीता गया एक डीप फेक है जिसनूं दुरप्रचार ये जनता नूं गुमराह करने लई तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अजिहा कोई बयान नहीं दिता। इकाई ने यह भी कहा है कि फौज मुखी की नवी जिम्मेवारी जनरल द्विवेदी नूं उन्हां दी सेवा मुक्ति तो बाद अते स्थापित प्रक्रियावां दे अनुसार दिती गई है। पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच मानसून दे जल्दी आउण नाल वध तों वध तापमान विच भारी गिरावट आई है जिस नाल लोकां नूं गर्मी तो काफी राहत मिली है। दोवा राजा ते केंद्र शासित प्रदेश दे ज्यादातर हिस्सिआं विच देर रात अते सवेरे मीह पैण नाल बिजली दी मंग विच वी भारी गिरावट दर्ज कीती गई। तापमान विच गिरावट दे नाल हरियाणा दा नरनौल इस खेतर दा सब तो ठंडा शहर रहा जिथे सवेरे घट्टो घट तापमान 18 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। इस तो बाद पंजाब के बठिंडा च घट्टो घट तापमान 20.8 डिग्री सैलसीयस रहा। कल बठिंडा विच वध तो वध तापमान 41.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ विच घट्टो घट तापमान 24.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने अज तो 7 जुलाई तक पंजाब ते हरियाणा के नाल नाल चंडीगढ़ विच कई थावां ते गरज चमक नाल भारी मीह पैण दा येलो अलर्ट जारी कीता है। आखिर च खास खबरां इक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जापान दे प्रधानमंत्री सानी ताकायुची दरमियान सालाना शिखर सम्मेलन पदरी गलबात नवी दिल्ली विच जारी कई समझौतियां ते दस्तखत होण दी उम्मीद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दा कहना है कि सरकार विकास नूं स्थिरता नाल संतुलित करन वालियां नीतियां राहीं चुगिरदा सुरक्षा नूं यकीनी बना रही है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त सुरक्षा दरमियान 4,822 श्रद्धालुआं दे पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना कीता। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 तक होएगा। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाई तकाइची से सालाना सरबरा बातचीत की है। भारत और जापान ने मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें इक्तिसादी, सिक्योरिटी और तवानाई की यकीनी फरहमी, अद्वियात और एआई के शोबे शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर हिमायत की गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला जत्था रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो गई है। जुनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली में फैल गया है। यह शुमाली और मगरबी रियासतों की जानिब मजीद आगे बढ़ रहा है। और फीफा आलमी कप में अमरीका ने 2002 के बाद से नॉकआउट मरहले में अपनी पहली जीत दर्ज की है। बेल्जियम सेनेगल को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई जहानत, एआई, इक्तसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के वज़ीर आज़म सनाई ताकाइची के साथ सालाना छोटी मीटिंग की। इस मौके पर फरीकैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और इश्तराक को मुस्तहकम करने पर बातचीत की और उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर

0: खरी उतरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है और दोनों मुल्क आज़ादाना और खुले भारत बैरुल काइल को तरजीह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्क इक्तसादी और तवानाई की सिक्योरिटी की अहमियत को बखूबी समझते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में साझेदारी भारत और जापान के दरमियान तआवुन का सबसे ज़्यादा अहम सुतून होगा।
1: कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: इससे कबल आज जापान के वज़ीर आज़म ताकायुची राष्ट्रपति भवन के अहाते में रस्मी इस्तकबाल दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जापान के वज़ीर आज़म भारत के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची हैं। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजारत खारजा ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को मज़ीद आगे ले जाने के सिलसिले में एक अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि भारत और जापान के ताल्लुकात मुसलसल आला सतह के सियासी राबतों पर मबनी हैं। अभी हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापान के वज़ीर आज़म से बातचीत की थी। गुज़श्ता बरस नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 समिट के मौके पर भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के बारे में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज़ की अक़वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली से मुतालिक अक़वामी मुत्तहिदा की नवीं जायज़ा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मुल्कों पर जोर दिया गया है कि कन्वेंशन को कतई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि कानूनी खदुखाल पर आलमी सतह पर इत्तफाक राय न होने की वजह से दुनिया में दहशतगर्दी की रोकथाम की कोशिशें कमज़ोर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निपटते वक्त दोहरा मैार नहीं अपनाया जाना चाहिए। भारत ने इस सिलसिले में अपने पुख्ता मौक़िफ को दोहराया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशतगर्दी को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता और इस लानत को ख़त्म करने के लिए उसने जामे आलमी कार्रवाई पर जोर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक आलमी हिकमत अमली के नवे जायजे को इख्तियार किए जाने के दौरान अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए UN में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि दहशतगर्द होता है और इस बात पर जोर दिया कि झूठे जवाज़ या सियासी मसलहत पसंदी की आड़ में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें कमज़ोर नहीं हो सकती।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोज़ा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के 2 रास्तों से शुरू होगी, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून पूरी दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात के कुछ मजीद हिस्सों, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ गया है। इसी दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हुई है। मानसून के रियासत में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जुनूब मगरबी मानसून बाज़ाब्ता तौर पर मंगल को उत्तर प्रदेश पहुंच गया और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 24 घंटे में औसत से شدید بارش درج کی گئی جس سے گرمی کے طویل سلسلے سے لوگوں کو راحت ملی. سلطان پور، مظفر نگر، بدایوں، سہارنپور اور سنبھل میں بہت شدید بارش ہوئی جس سے کچھ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے، تاہم دن کا درجہ حرارت نیچے آ گیا. کسانوں کے لیے بارش ایک بڑی راحت ثابت ہوئی ہے کیونکہ دھان کی بوائی مقرر وقت سے پہلے ہی پیچھے چل رہی ہے. آئی ایم ڈی نے آج کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے. لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج رانچی میں لوک بھون میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سے متعلق فارم کو بھرنے اور دستخط کرنے کے بعد متعلقہ بی ایل او کے سپرد کیا. اس موقع پر اعلیٰ چناؤ افسر کے روی کمار، رانچی کے ضلع چناؤ افسر منجوناتھ بھجنتری اور دوسرے چناؤ اہلکار بھی موجود تھے. مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے. نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی. اس نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے. بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں اقتصادی، سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور اے آئی کے شعبے شامل ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے. جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے. جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے. یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं. एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है. क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं. इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे.
4: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
1: Technology partnership हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं. जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा.
4: The Prime Minister also informed that in the field of defence today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है. नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा. अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी.
4: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods, and accelerating the development of villages across the country. Union Minister for Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, has said. Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan, along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, today launched the VBG Ramji Act at Mukhavaripalle village in Tirupati district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the scheme aims to ensure that no poor labourer remains without work and that every hand gets employment. He thanked Prime Minister Narendra Modi for introducing the scheme and said employment under the programme has been enhanced from 100 days to 125 days.
5: Under Manrega, workers used to get employment for only 100 days. But under the Viksit Bharat Ji Ramji Yojana, laborers will receive employment for a full 125 days. In the very first year, the center's contribution to the scheme amounts to 95,600 crore rupees, with the states contributing their 40% share. A total of 1,51,282 crore rupees will be spent in just 1 year. 282 crore
4: rupees. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today underlined that the government is promoting ease of living while ensuring environmental protection through policies that balance development with sustainability. Addressing a national conference on electric mobility, Mr. Yadav said the government's approach reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring that ecology and economy grow together. He highlighted that despite rapid industrial development, the country's forest cover has increased from 7,1673 square kilometres in 2014 to 7,15,000 square kilometres. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to three Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on the 30th of this month and the counting of votes will be conducted on the 3rd of next month. The National Rain-Fed Area Authority-funded Wild Rice Conservation Project has achieved a major milestone in Assam. The Borjuli site in Sonitpur district has been notified as a biodiversity heritage site by the National Biodiversity Authority under the project. The project, titled In Situ Conservation and Management of Wild Rice, Oriza Rufipogon, in Sonitpur district of Assam, aims to protect wild rice in its natural habitat. The recognition is an important step towards conserving India's rich wild rice diversity and promoting climate-resilient agriculture. Minister of State for Home Nityananda Rai today attended the flag-in ceremony marking the success of the Mount Everest and Mount Lhotse mountaineering expeditions by the Border Security Force, BSF, Indo-Tibetan Border Police and National Security Guard in New Delhi. Speaking on the occasion, the minister said, by conquering the world's highest peak and singing Vande Mataram to the skies, the all-women mountaineering team of BSF has set a rare example of grit, patriotism and dedication. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. India's long-standing proposal for the Comprehensive Convention on International Terrorism has received renewed support at the United Nations General Assembly. The ninth review of the UN Global Counter-Terrorism Strategy, adopted by 140 votes, has urged member states to make every effort to finalize the convention proposed by India over three decades ago. Addressing the UN General Assembly, India's permanent representative to the UN, P. Harish, said the absence of a universally agreed legal framework weakens global counter-terrorism efforts. He stressed that there should be no double standards in tackling terrorism and called for holding perpetrators, financiers and sponsors accountable. He added that a terrorist is a terrorist and emphasized that counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
4: The first batch of 4,822 pilgrims for the annual Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off by Lieutenant Governor Manoj Sinha from the Bhagwati Nagar Yatri Nivas base camp in Jammu today amid elaborate security arrangements. Pilgrims from different parts of the country have been arriving in Jammu to take part in the sacred pilgrimage. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. The weather department has forecast thunderstorms accompanied by rain over many parts of the national capital during the day, with generally cloudy skies expected to prevail. A yellow alert has been issued for parts of western and central India for heavy rainfall. People in Uttar Pradesh got much-needed relief from the scorching heat as the monsoon arrived in the state, with almost all parts of the state witnessing rainfall. A report.
6: The southwest monsoon officially entered Uttar Pradesh on Tuesday, with the monsoon trough passing through Azamgarh, Bareilly and Ayodhya districts. Several parts of the state recorded moderate to heavy rainfall over the past 24 hours, bringing much needed relief from the prolonged heat. Sultanpur, Muzaffarnagar, Badayun, Saharanpur and Sambhal witnessed very heavy rainfall, disrupting normal life in some areas while significantly bringing down daytime temperature. The rainfall has come as a major relief for farmers who had been anxiously waiting for the monsoon, as paddy sowing was already running behind schedule. The Meteorological Department has forecast heavy rainfall in many districts today and said that weather conditions remain favorable for the further advance of the southwest monsoon across the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
4: Heavy rainfall continued across Maharashtra for the second consecutive day today, disrupting normal life in several parts of the state. More from our correspondent.
7: According to the IMD, Konkan and adjoining Ghat areas of central Maharashtra are likely to receive heavy to very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places. In Mumbai, heavy showers inundated low-lying areas, slow traffic and disrupted suburban train services on some routes. The Pavai Lake has started overflowing following continuous rainfall. The University of Mumbai has cancelled examination schedule for today for colleges in Palghar district and under the Panvel Municipal Corporation. Schools in Palghar and in Raigad, some talukas including Alibag, Panvel, Uran, Shrivardhan, Masla, Tala and Polatpur have also remained closed today as a precautionary measure. Fishermen have been advised not to venture into the sea. Nivedita, AIR News, Mumbai.
4: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
8: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
8: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
9: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
8: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे।

0: और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग

0: की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और ये जो समय है ये समय है एक ऐसे कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। तो आज के जो कलाकार हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, बस एक गाने की झलक आपके सामने रख रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कौन से हमारे आज के कलाकार हैं।

जी, तो आपने अनुमान लगाया हमारे आज के कलाकार कौन है? पहला जो जवाब हमारी जहन में आता है वो किसका होता है? अनिल कपूर। नहीं जी, जैकी श्रॉफ बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कौन होगा? देखिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ कौन है हमारे आज के कलाकार। और बताऊँ आपको, पहली जो हमारे पास में ईमेल आई है वो भी इसी जवाब के साथ आई है। जी हाँ, वो है हमारे साथ में प्रकाश वर्मा जी, लिख रहे हैं कि आज के कलाकार है अनिल कपूर। नहीं प्रकाश जी, मैं आपको बता रही हूँ आज के हमारे कलाकार कौन है। तो देखिए, हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वे आवाज़ें केवल गीत नहीं गाती बल्कि एक पूरे दौर की धड़कन बन जाती हैं। ऐसी ही एक दमदार, बुलंद और दिल छूने वाली आवाज़ किसकी थी? देखिए, वो आवाज़ थी मोहम्मद अजीज की। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर हम याद करेंगे उस फनकार को जिसने अपने शुरू से 80 और 90 के दशक के संगीत को नई ऊंचाइयां दी। तो अब आप समझ गए हमारे आज के कलाकार कौन है। जी हाँ, आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। और आज का ये जो सफ़र आप तय करेंगे, वो आप तय करेंगे मेरे साथ, यानी आपके रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ।

0: ये गाना सुनते ही बस हमारे सामने उस शख्स की छवि उभर जाती है जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। इनका जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में हुआ। उनका पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। महान गायक मोहम्मद रफ़ी उनके आदर्श थे और शायद यही कारण था कि उनकी गायकी में रफ़ी साहब की मिठास और अपनी अलग बुलंद आवाज़ का अनोखा संगम सुनाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको उनके एक उस गीत को याद दिलाना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने आदर्श, अपने आइडल, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की याद में गाया था। और वो जो गाना था वो बकायदा मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में ही था। तो वो गाने की झलक मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके भी मन में उनके कौन कौन से गानों के लेकर के क्या क्या यादें हैं। तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रोध का ये गाना।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

जी हाँ, तो इस गाने को आपने सुना और ये उन्होंने अपने आदर्श मोहम्मद रफ़ी के लिए गाया था। और हमारे आज के कलाकार मोहम्मद अज़ीज़ के बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने ना कोलकाता में कई वर्षों तक मंच पर गाना गाया। बंगाली फिल्मों में भी उन्हें अवसर मिले, लेकिन हर कलाकार की तरह उनका सपना भी मुंबई तक पहुँचने का था। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुंबई आने के बाद ना मोहम्मद अज़ीज़ की ज़िंदगी ने नया मोड़ लिया। संगीतकारों ने उनकी आवाज़ की ताकत को पहचाना, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई वह थी 1985 की सुपरहिट फिल्म मर्द। और गाना कौन सा था बताइए? जी हाँ, यही वाला।

पर वाला मर्द टांगे वाला, वो मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर।

देखिए ये जो मर्द टांगे वाला है ये हमारे आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और आप लोगों ने कितनी खूबसूरत बातें इनके लिए लिखी हैं तो वो आपके साथ जरूर साझा करूंगी। देखिए ये लिखते हैं प्रेम सागर शुभलता रोहित सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद से वी विश हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद अजीज वी आर एंजॉइंग द प्रोग्राम थैंक यू सो मच। और ये लिख रहे हैं नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु फिल्म अच्छा नहीं देखिए सर ये कार्यक्रम हम आपको फिर बता दें फरमाइश ही नहीं है इसमें हम कलाकारों की बात करेंगे और आज के हमारे कलाकार हैं मोहम्मद अजीज़। फिर हमारे साथ हैं और भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज़ और इनकी जानकारी और गीत अच्छे लग रहे हैं। ये कौन लिख रहा है वीरमगाम जंक्शन से अजित कुमार भावसर प्रमीला बेन भावसर। फिर है हमारे साथ ये हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल जय हिंद पाल दीक्षा पाल प्रतीक्षा पाल विमलेश पाल दिव्यांश बघेल और परिवार। और हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त जुड़े हैं ये हैं चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालिंदिरी लहरे। और ये है हीरामणि वर्मा दतरंगी भाटापारा से और इन्हें बिल्कुल समझ में आ गया है कि सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है। और ये लिख रहे हैं तुलसी मस्कीन जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनके साथ हैं मीना मस्कीन चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना और इन्हें मोहम्मद अजीज जी के जन्मदिन पर उनके गाए गीत और जानकारी अच्छी लग रही है लवली सॉन्ग से आगाज आपके आ जाने से। जी हाँ देखिए वो गाना तो इनका बहुत ही बेहतरीन गाना है। और ये और हमारे साथ कौन है संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है शुक्रिया। हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता गांव नधाना पंजाब से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद अजीज साहब की तो 80 का जो दशक था वो हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर माना जाता है। एक और जहाँ एक और किशोर कुमार का जादू था तो दूसरी ओर नई पीढ़ी के गायक अपनी पहचान बना रहे थे। इन्हीं के बीच मोहम्मद अजीज ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी पप्पी लाहिड़ी अनु मलिक आनंद मिलिंद जैसे लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती अनिल कपूर सनी देओल हो या गोविंदा हर बड़े अभिनेता पर इनकी आवाज़ खूब जची। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे सिर्फ गीत नहीं गाते थे वे पर्दे पर दिख रहे किरदार की आवाज़ बन जाते थे। और एक ऐसा ही किरदार था किसका खुदा गवाह में किसका अमिताभ बच्चन का। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गीत।

जो गाने आपको पसंद आ रहे हैं यकीन मानिए वो भी हमने बहुत दिल से चुने हैं हमारे आज के कलाकार के गाने, क्योंकि उनकी गायकी की जो बात है ना वो उनकी अलग अलग गानों में आपको नजर आएगी। ये जो गाना आप सुन रहे थे इसमें उनका साथ दिया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और देखिए हमारे साथ ना हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, खूब प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं। तो देखिए फिल्म खुदा गवाह का जो गाना है इसके बारे में लिख रहे हैं ज्योति मक्कड़, संदीप मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर हमारे साथ ये हैं हमारे दोस्त, जी हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बढ़िया गाने हैं, शुक्रिया। मोहम्मद अजीज को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं राधा कृष्ण, नवल किशोर, शुभलता, मधु, प्रेम सागर, और ये है खजाना गेट अमृतसर से, शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और पोता है इनका मास्टर अल कबीर। प्रस्तुतकर्ता सोनाली जी को सप्रिय नमस्कार करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, शुक्रिया शुक्रिया। और ये लिख रहे हैं कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से। फिर हमारे साथ ही संजय ढिंग्या, नमन ढिंग्या, अपार ढिंग्या, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। आप हमारे संग बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ है अनिता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से। और ये भी मोहम्मद अजीज साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। दीदी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, भाई आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये लिख रहे हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी। और इसके साथ है हमारे साथ पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से है नारायण इंगली, सोपान ताड़ी, आशीष मुरहेकर, और इन्हें मोहम्मद अजीज़ का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। फिर है तुलसी मस्कीन जी, लिख रहे हैं होस्ट मैडम सोनाली जी गुड आफ्टरनून, आज के एक ही कलाकार में मोहम्मद अजीज़ के बारे में अच्छी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, पेशकश सुपर, शुक्रिया। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रविता खुराना, केशु खुराना। तो प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। और देखिए हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं, आप कहाँ छूटेंगे हमसे। और ये लिख रहे हैं कौन, ये हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। फिर हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये हैं इसहाक मोहम्मद साहब। और आज के हम सफ़र में हम भी हैं आपके हम सफ़र, बिल्कुल आप भी हमारे हम सफ़र हैं। तो ये हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीचा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। देखिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने हुए, अनिल मोहन जी हैं, उषा मोहन टिलनायक, और इन्हें भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज़ साहब की। अब देखिए मोहम्मद अजीज़ की गायकी की एक और विशेषता थी उनके ऊंचे सुर पर सहज पकड़, चाहे देशभक्ति का गीत हो या रोमांटिक धुनों, उत्सव का माहौल हो, उनकी आवाज़ हर रंग में ढल जाती थी। यही कारण है कि उनके गाए गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद हैं। तो अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्म आवारगी का एक गीत जिसमें उनका साथ दिया है लता मंगेशकर ने।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गाना फिल्म आवारगी से, और इसमें इनका साथ दिया लता मंगेशकर ने, और हमारे साथ आप लोग दे रहे हैं लगातार। कौन है हमारे साथ दिए हैं? गांव फिरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और इन्हें प्रोग्राम में जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, धन्यवाद। फिर कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रोग्राम आपने पेश किया, बेहतरीन बातें बताई। देखिए धर्मेंद्र जी, यहाँ पर आज मैं बाजी मार गई ना, आज आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन थैंक यू, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए। आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, और हमारे साथ हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, और फिर हमारे साथ कौन है? जी हाँ, ये मोहम्मद अजीज साहब की, जी के सभी सॉन्ग सिलेक्शन ज़बरदस्त, लाजवाब है, आपकी आवाज़ अच्छी है, शुक्रिया। ये कौन लिख रहा है? अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन जाफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, चानेसर गोट कराची से, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, अब हम कार्यक्रम में उस जगह पर आ गए हैं कि अब हम आपके साथ और ज़्यादा बातें नहीं साझा कर पाएंगे, बस लेकिन चलते चलते ना मैं आपको इतना बता दूँ कि इस कलाकार को हमने 4 दिसंबर 2018 को खो दिया। मोहम्मद अजीज़ दुनिया से विदा हो गए, लेकिन कलाकार कभी भी विदा नहीं होते, हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। और बस आपको इतना बता दूं, चलते चलते उनके एक गाने के साथ आपको छोड़ रही हूं, और ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अलग सा है, आप ये सुनिए और आगे निकलते हैं फिर, और मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। आपकी रेडियो हम सफ़र सुनाली, इजाज़त चाहूँगी, नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजे हैं और रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल और अगले आधे घंटे में हम चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जहां हर धुन दिल में उतर जाया करती थी और हर गीत एक कहानी कहता था। आज हम आपको सुनवाएंगे 60 के दशक के कुछ ऐसे अमर गीत जिनके पीछे छिपे हैं दिलचस्प किस्से, यादगार घटनाएं और संगीत की अनसुनी बातें। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ, आवाज लता मंगेशकर और रफी साहब की फिल्म आरजू से।

दोस्तों, ये गीत जितना मधुर है इसकी रिकॉर्डिंग भी उतनी ही खास रही। संगीतकार शंकर जयकिशन चाहते थे कि गायिका लता मंगेशकर की आवाज़ में रूठने की मासूमियत साफ झलके। रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार सिर्फ एक मुस्कान का एहसास आवाज़ मिलाने के लिए टेक दोहराए गए। कहते हैं कि अभिनेता राजेंद्र कुमार इस गीत को अपनी पसंदीदा फिल्मी धुनों में गिना करते थे।

और अब बात करते हैं आराधना फिल्म का वो गोल्डन गीत जिसने हर युवा दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। जी हाँ, किशोर कुमार का गाया गीत मेरे सपनों की रानी। इस गीत की शूटिंग अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पर फिल्माया गया यह गीत उस समय तकनीकी दृष्टि से काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। अभिनेता राजेश खन्ना जीप में थे और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर चलती ट्रेन में। एक और रोचक तथ्य ये है कि इस गीत को किशोर कुमार की आवाज़ ने नई ऊंचाइयां दी और इसके बाद किशोर कुमार का दौर तेज़ी से आगे बढ़ा।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना और अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जो हिंदी फिल्मी गीतों में अमर गीतों में गिना जाता है। फिल्म वो कौन थी का लग जा गले। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार मदन मोहन की बनाई इस धुन को शुरू में बेहद सरल समझा गया था, लेकिन जब लता मंगेशकर ने इसे अपनी आवाज़ दी तो ये गीत क्लासिक बन गया। गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने शब्दों में बिछड़ने की पीड़ा को इतनी खूबसूरती से पिरोया कि आज भी ये गीत हर पीढ़ी को छू जाता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।
1: कहीं करती होगी
0: यह आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म है फिर कब मिलोगी।

और दोस्तों अब बात करते हैं संगीतकार ओपी नैयर की। उनकी धुनों में हमेशा एक अलग लय होती थी। फिल्म मेरे सनम का पुकारता चला हूं मैं, इस गीत में सड़क पर चलते हुए आजादी और मस्ती का एहसास पैदा करने के लिए विशेष ताल वाद्यों का इस्तेमाल किया गया था और मोहम्मद रफी की खुली आवाज ने इस गीत को सफर का स्थायी साथी बना दिया।

दोस्तों, 60 के दशक में गीतों में महिलाओं की स्वतंत्र सोच को भी दर्शाया गया, जैसे कि गाइड फिल्म का गीत आज फिर जीने की तमन्ना है। एसडी वर्मन के संगीत और शैलेंद्र के शब्दों ने इसे सिर्फ गीत नहीं बल्कि जीवन जीने का संदेश बना दिया। बताया जाता है कि अभिनेत्री वहीदा रहमान ने इस गीत की भाव भंगिमा पर विशेष मेहनत की थी, ताकि रोजी के चरित्र का आत्मविश्वास पूरी तरह उभर कर आए।

कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं सूरज फिल्म के उस गीत को जो आज भी उतना ही सदाबहार है जितना उस दौर में। ये गीत शादी ब्याह और खुशियों का पर्याय बन गया। मोहम्मद रफी की आवाज और शंकर जयकिशन का संगीत आज भी इसकी ताजगी बनाए हुए है।

दोस्तों, 60 का दशक सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी स्वर्णिम दौर था। उस समय गीत बनते नहीं थे, जिए जाते थे। हर धुन में मेहनत थी, हर शब्द में एहसास और हर आवाज में सच्चाई। इसलिए 6 दशक बाद भी ये गीत हमारे दिलों में उसी तरह गूंजते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी, इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते याद रखिए, अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वे बस नई यादों के साथ फिर लौट आते हैं। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश खिदमत है प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सामेईन, इस शेर के खालिक शायर मशरिक अल्लामा इकबाल हैं। आज अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, जिसे यौम उर्दू के तौर पर भी मनाया जाता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फारसी और उर्दू के एक बड़े शायर हैं, जो 9 नवंबर सन 1877 में पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल को इल्म अदब से बचपन से ही लगाव था। सैयद मीर हसन जैसे फाजिल उस्ताद की सोहबत ने मजीद जिला बख्शी। मिर्जा दाग तहलवी से कलाम में इसला ली। उनकी शायरी पैगाम की शायरी है, अमल खुदी हुब्बुल वतनी उनकी शायरी में जगह जगह नजर आती है। आइए सामेईन, अब चलते हैं प्रोग्राम अंदाज़े नज़र की तरफ। सामेईन, खबर रसानी जमाने कदीम से जारी है, लेकिन अखबारात छपने के साथ साथ खबर रसानी वाकयात और हालात के बयान करने को सहाफत का नाम दिया गया। सहाफत एक अहम पेशा है, जिसने हर मैदान में एक अहम किरदार अदा किया है। अदबी सहाफत सहाफत की ही एक शाख है। तो आइए सामेईन, एक मुबाहिसा सुनते हैं। मौजू है अदबी सहाफत नई सदी में। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब तालीफ हैदर।
1: आज आकाशवाणी की जानिब से एक बहुत ही अहम मौजू पर एक ऐसा मुकालमा हम यहाँ कायम कर रहे हैं, जो वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आज का मौजू नई सदी में अदबी सहाफत। उर्दू सहाफत बमुराद वो तमाम अदबी जरीदे, वो तमाम अदबी रसायल, या इस अहद में सोशल मीडिया पे जो अदबी मौजूआत

0: पर बहसें होती हैं, इस मौजू में इन तमाम चीज़ों का अहाता होता है। आज की इस बहस में हमारे साथ दो बहुत ही अहम शख्सियात हैं। मैं तालीफ हैदर, हमारे साथ बहुत ही सीनियर अदीब, बड़े सहाफ़ी मुदीर जनाब हसन ज़िया साहब यहाँ मौजूद हैं, जो इन दिनों आजकल जैसे बहुत ही अजीम रसाले को देख रहे हैं, उसकी इदारत कर रहे हैं और बहुत से अदबी मौजूआत पे गुफ्तगू करते रहते हैं। ख़ुद बड़े सहाफ़ी, बड़े अदीब हैं। हमारे साथ जो दूसरी अहम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं वो मुनव्वर हसन कमाल साहब हैं। ये भी एक बड़े सहाफ़ी, बड़े अदीब, बड़ी शख्सियत हैं, आजकल भी ऐवान उर्दू से वाबस्ता हैं, मुदीर हैं। मैं मुनव्वर साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ।
1: बहुत
0: हसन भाई आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ बहुत बहुत। आज की इस गुफ्तगू में सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हसन ज़िया साहब, ये उर्दू सहाफ़त जो इस अहद में जब हम कहते हैं तो न सिर्फ ये कि उसकी तमाम खसूसियात, तमाम आसानियाँ, बल्कि तमाम मसाइल भी सामने आ जाते हैं कि आज उर्दू सहाफ़त जो है वह अदबी सहाफ़त किस तरह से, किन वजूहात की बिना पर आसान हुई और किन वजूहात की बिना पर मुश्किल हो गई, इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: देखिए, ये आज का मौजू जो अदबी सहाफ़त नई सदी में, बड़ा अहम मौजू है। और जैसा कि आपने कहा कि क्या क्या नई आसानियाँ और क्या क्या दुश्वारियाँ आ गईं, ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम अगर पिछली सदी की सहाफ़त पर नज़र डालते हैं तो उसका एक रोशन और ज़र्रीन दौर रहा है, और आज से अगर हम उसका मवाजना करें तो हम देखते हैं कि आज हालात अक्सर मुख्तलिफ हैं। अगर आप इस तरह देखें कि आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में जो शराय ख्वानदगी थी वो 18% थी, 80 की दहाई तक आते आते 30-35% रही, और आज के जो इदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक आज हिंदुस्तान की शराय ख्वानदगी 77% है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है, और जो कोई भी अदबी जरीदा है उससे पढ़ने के लिए ज़ाहिर है कि आदमी का ख्वानदा होना ज़रूरी, उसके बाद उसका पढ़ा लिखा होना, अदबी ज़ौक होना, तभी वो रिसाला पढ़ेगा। और आज इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास ख्वानदगी और तालीम का बेहद फैलाव हुआ है, बेशुमार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ नई नई खुली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि अगर एक मानों में हम देखें तो ये कह सकते हैं कि अदबी सहाफ़त बहुत से बड़े चैलेंजों का शिकार है। अगर कोई ये भी कहे कि शायद किसी मानों में जवाल पजीर है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। और उसकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आज नई सदी है और ये समाज है, इसमें इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये इंसानी रवैयों को भी तब्दील कर रही हैं, इंसान की तरजीहात को, उसकी पसंद नापसंद को और उसके पूरे तर्ज ज़िंदगी को बदल रही हैं। तो जाहिर है कि अदब या अदबी सहाफ़त या उर्दू सहाफ़त, ये तमाम चीज़ें उसी के तहत आती हैं, ये अलग से कुछ नहीं हो सकती, माशरे से अलग हम करके नहीं देख सकते। और आज पिछले अहद में हम देखते हैं तो जो दिलचस्पी लोगों की थी अदब से वो आज कम हुई है। बज़ाहिर अदब पढ़ने वाले बढ़े हैं लेकिन सही मानों में हकीकी दिलचस्पी रखने वाले कम हुए हैं।
0: ये बहुत बुनियादी बात है कि ये वक्त के साथ साथ तरक्की तो हुई है लेकिन पढ़ने वालों की दिलचस्पी जो है, मुझे लगता है कि बात बहुत आपने आम कही है कि कुछ कम हुई है। ऐसा ही मुनव्वर साहब, मुझे भी यही लगता है कि जो ज़िया साहब कह रहे हैं, एक ज़माना था जब फ़नून, शफून और ऐसे बहुत अहम रसायल निकलते थे और सौगात, उन रसायल में जो मबाहिस होते थे उन मबाहिस को बहुत संजीदगी से लिया जाता था, उन पर बहसें होती थीं, उस पर्चे में छपना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई अगर कोई पर्चे में छप गया तो महीनों उसके मज़मून का चर्चा होता था। क्या सूरत हाल है कि आजकल हमारी उर्दू सहाफ़त जो है, तो उर्दू की जो अदबी सहाफ़त है, वो वसाइल तो बहुत हैं और बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मबाहिस ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, क्या ख्याल है आप?
3: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ये सूरत हाल ये है कि वक्त के साथ साथ जो तजर्बेकार सहाफ़ी थे, जहीज सहाफ़ी थे, वो रुख्सत हो गए और नए सहाफ़ी जो आ रहे हैं मैदान में, नई नस्ल जो आ रही है, उनके पास मुताले का फुकदान है। वो खुद तैयारी तो कर रहे हैं, वो अखबारात में काम कर रहे हैं, रसाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मुताले की अदबी सहाफ़त को ज़रूरत है वो उनके पास कम है या नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नहीं है। हालांकि है, जिस सतह पे भी है, लेकिन वो कोई ना कोई सतह ऐसी है कि वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अदबी सहाफ़त की वो उनसे नाआशना ही नज़र आती।

0: हैं बधाई। उसके लिए सबसे जो ये है कि तजिया निगारों का एक मुसलसल बहरान पैदा हो गया उसकी वजह से, इसलिए कि जो चीज़ें उनके सामने आती हैं वो उस पर तजिया करने की सलाहियत उनके यहाँ नहीं पाई जाती, और अगर सलाहियत पाई भी जाती है तो वो उसके उन पहलुओं को नहीं उभार पाते जिनकी उस अदबी मैदान में ज़रूरत है। दूसरे ये कि असल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि यहाँ शुमाली हिंद में ख़ास तौर से उर्दू मीडियम स्कूलों का फुकदान है। उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल बुनियाद है उर्दू की, और उर्दू बुनियाद फिर बनती है अदब की, और अदब फिर बुनियाद बनती है अदबी सहाफ़त की, सिलसिला या दर सिलसिला बात आगे बढ़ती है। और जब हमारे पास बुनियाद ही कमज़ोर होगी और फिर हम मामूली सतह पे उर्दू सर्टिफिकेट लेकर या उर्दू कोर्स कोई करके आगे बढ़ेंगे और अपने किसी तरह से मुलाजमत भी हासिल कर लेंगे, और मुलाजमत हासिल करना ही असल अब मौजू रह गया है, अब असल खिदमत नहीं है। जो पहले लोग थे वो अदबी खिदमत भी करते थे, उनके सामने नज़रिया ये होता था कि जो चीज़ है मैं इसमें अदबी खिदमत कर रहा हूँ और इसको अपने तौर पर मुमकिन तौर पर जहाँ तक भी हो सकता है परवान चढ़ाऊँ।
1: अदबी खिदमत से क्या मुराद है?
0: अदबी खिदमत से ये मुराद है जो अदबी ज़खायर हैं हमारे उनको हम मंजर आम पर लाएँ और उनसे दूसरे लोग बुनियादी तौर पर इस्तिफादा करें, और जब वो उसकी सलाहियत हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन आप देखते होंगे लाइब्रेरियाँ आजकल खाली ही नज़र आती हैं। आजकल लाइब्रेरी में कहीं लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, या जाते हैं तो सिर्फ अपने काम के लिए कि उनको इतनी तैयारी करनी है इम्तिहान की, उसके बाद ख़त्म। पहले ये होता था कि जो कॉलेजेस के अलावा भी लाइब्रेरियाँ होती थी वहाँ पर लोग जाते थे, अखबारात के ज़खाइर जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर उनका मुताला करते थे, रसाइल जहाँ मौजूद हैं उनका मुताला करते थे। अब जैसे आजकल की ही बात कीजिए आप, आजकल में तमाम फाइलें जब से ये 1942 या कब से ये है तो वहाँ मौजूद है, और लोग पहले किस कदर वहाँ आते थे और उनसे मुताला करते थे, उनसे इस्तिफादा करते थे, आज मेरे ख्याल से वो सूरत हाल नहीं है।
1: ये
0: बताएँ
1: सूरत हाल ना होने की वजह मुनव्वर भाई या हसन भाई, मुझे ऐसा
0: जी।
1: लगता है कि क्या ये भी है कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई हैं सारी चीज़ें, और अदबी मबाहिस से किसी नौ की बज़ाहिर कोई फ़ायदा लोगों को नज़र नहीं आता जो नई लस है। हालांकि हमने ये देखा कि भाई पिछली सदी में हर ज़बान का अपना एक अदब होता है, हर ज़माने में अदब लिखा जाता है, आज भी दुनिया की हर ज़बान में अदब लिखा जा रहा है, वो पढ़ा जा रहा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान की सतह पर उर्दू ज़बान व अदब को पढ़ने वाले किसी तरह की एहसास कमतरी का शिकार हैं, या कि क्या सूरत हाल है ये?
2: देखिए तालीफ हैदर साहब, आपने जो ये सवाल उठाया है ये बहुत अहम सवाल है। असल बात क्या है, देखिए अगर पहले हम बुनियादी सवाल की तरफ जाएं कि अदब क्या है। अदब जो है, अदब के लिए कहा जाता है कि ये हमारे जमालियाती ज़ौक की तरबियत करता है, और उसको कहना चाहिए कि जो एस्थेटिक हमारा सेंस है उसको सेटिस्फाई करता है। और अदब में तखयल भी होता है, आला और अरफा ख्यालात भी होते हैं, और इंसानी जज्बात की तर्जुमानी भी होती है।
1: सही
2: तो अदब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कारोबार के तौर पर या उस तरह लें। अदब का मुताला करने के लिए जो हमारे पास जो चीज़ हमें प्राइम मोटिव हमारा होगा वो हमारा अदबी ज़ौक होगा। और आज के समाज में हम ये देख रहे हैं कि कैसी मकसदियत पैदा हो गई है। मकसदियत अच्छे सेंस में भी होती है और मकसदियत बुरे उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है, कि जिस चीज़ का हमें कोई बराह रास्त फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा उस चीज़ में हम दिलचस्पी कम ले रहे हैं। और हमने भी अपने तालिबे इल्मी के दौर में हम रिसाले अदबी रिसाले पढ़ते थे, तो हमें उस वक्त यही होता था कि हमें कोई किसी फ़ायदे के लिए हमने कभी नहीं 20वीं सदी या कोई रिसाला ख़रीदा। हम सोचते थे चलो इसमें फ़िक्र तौंसी
1: मैं
2: का
1: जोक के
2: मज़मून
1: लिए
2: है या करेंया लाल कपूर का तंज है, तीरो नश्तर है, हम इसके लिए पढ़ते थे। आज कारीन की एक बड़ी तादाद और लिखने वालों की ऐसी है जो इस मकसद से लिख रहे हैं कि या तो उनकी चीज़ छप जाए, या उनको जो है, कई ऐसे अक्सर लोग हमसे राबता करते हैं कि हमें वो रिसाला तो मिल गया लेकिन वो जो बेगार था उसमें हमारा नहीं था वो मज़मून, अब अगला मैं
1: जी
2: देखूंगा, ये तो हमारी रख देते हैं ऐसे ही मजबूर।
1: जी
2: इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तहरीर कहीं छपेगी, हमारी तस्वीर छपेगी, तब तो हमें दिलचस्पी है अदबी सहाफत से, वरना हमें अदबी सहाफत से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये चीज़ है कि जो बेलौस कारीन उनकी तादाद कम हुई है, आज ऐसे लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं जो अगर उनकी चीज़ छपी तभी उनको दिलचस्पी होती है।
1: ये मुनव्वर भाई, मेरे ख्याल से सूरत हाल आपके सामने भी आती होगी
0: जी
1: इदारत के
0: बिल्कुल
1: दौरान,
0: बिल्कुल
1: के
0: यही
1: जो
0: मसला है।
1: मजामीन आ रहे हैं वो मजामीन जो है वो भी किसी एक ख़ास मकसद के तहत आते होंगे, और जो मबाहिस जिस तरह के कायम हो रहे हैं वो भी एक ख़ास मकसद के तहत ही कायम हो रहे हैं। मतलब कोई खालिस अदबी मौजूआत का मुताला करने के लिए और उससे कोई एक बहस सामने आ रही है या कोई नतीजा अखज़ किया जा रहा है,

0: जिस तरह से हम देखते चले आए, मतलब ये पूरी नस्ल जो है वो हमारे सामने, जो 20वीं सदी में हमारे दरमियान आई, इसमें शमी मनफी थे या बाकर मेहदी थे या वारिस अलवी थे, शमसुर्रहमान फारूकी थे, ये पूरी नस्ल जो हमारे सामने आई, ये अदबी मौजूआत से वाबस्तगी रखती थी। लेकिन शायद मेरे ख्याल से आज अदबी मौजूआत के बजाय जो है वो कारोबारी मौजूआत जो हैं वो ज़्यादा दाखिल हो गए हैं। क्या ख्याल है आपका?
1: जी, असल में ये आलमगीरियत तो और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें उन्होंने ऐसा गरचे एक इनकलाब बर्पा किया है, लेकिन उसमें अदब के लिए जो शिद्दत होनी चाहिए, जो उसके लिए दिल के अंदर अपने एक जज्बा होना चाहिए, वो नहीं पाया जाता। और उसके लिए मैं फिर यही कहूँगा, उसके लिए मुताले का फुकदान है। मुताला नहीं करते और ज़ौक़ पैदा नहीं होता। मुताला करने से असल में ज़ौक़ भी पैदा होता है। हम किसी एक सिंफ में मुताला करते हैं, उसी में ज़ौक़ हमारा पैदा होता है, उसी में हम परवान चढ़ाते हैं और उसी में फिर हम मज़मून लिखते हैं या शायरी करते हैं या तंजिया मज़ाहिया मौजू पे किसी पे मज़मून मुंतखब करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है उसको दूर करने की ज़रूरत है, और उसको दूर करना जो है वो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए ये होगा कि हम ऐसी चीज़ें सामने लाएं और मुताले के लिए हम ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें जिन्हें हमारा जहन कबूल करता हो। अब हमारा जहन तो किसी चीज़ को कबूल नहीं कर रहा और हमें इम्तिहान देना है उसका, तो वही इम्तिहान देने में वहीं पे ही बात दिगर गुं हो जाती है। इसलिए नई नस्ल में ये चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं। और नई नस्ल ये जो सोचती है कि हमें जो है अदब की खिदमत तो अपनी जगह है, हमें तो सिर्फ मुलाजमत हासिल करनी है, और मुलाजमत हासिल करने के लिए हमें इतना पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही पढ़ें, बाकी क्या करेंगे,
0: लेकिन इसी के
1: बाकी दूसरी
0: दरमियान
1: जुबान हो।
0: मुनव्वर भाई, मतलब सहाफ़ियों के पास तो जैसे आप हैं या ज़िया साहब हैं, तो आप लोगों के पास जो मजामीन आते होंगे, ये सब मजामीन आते हैं हर महीने, क्या तादाद होती है?
2: मज़ामीन बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के उन तलबा या असातिज़ा के होते हैं कि जिनको किसी वायवा में किसी इंटरव्यू में शामिल होना है, और वहाँ एक ख़ास तादाद ज़रूरी होती है मज़ामीन की, जो आपके छपे हों उसकी गिनती होती है। उस मकसद के मज़ामीन ज़्यादा होते हैं, और खालिस अदबी ज़ौक़ के लिए, खालिस इल्मी मुताले के लिए लिखे गए मज़ामीन कम होते हैं हमारे पास।
0: शमसुर्रहमान फारूकी शायद अगर ये ऐसे मजामीन छापते रहते तो शायद शबखून जो है वो एक तारीख रकम ना कर
2: बिल्कुल
0: पाता। मेरे ख्याल से शायद ये
1: बिल्कुल,
0: सारे
1: वो
0: रसायल जी
1: उसी तरह की सूरत हाल है।
0: जी
1: मजामीन की सूरत हाल ये है कि कम से कम 15-20 मजमून, 10 तो कम से कम, वरना 10 से ज़्यादा ही मजमून, कम से कम जब भी मेल खोलो तभी सामने नज़र आ जाते हैं।
0: ओ
1: अब उनको आप निकालिए, उन्हें देखिए, पढ़िए, तो उसमें ज़्यादातर तादाद ऐसी होती है जैसे जैसे ज़िया साहब ने बताया, जैसे जिस स्कॉलर होते हैं कि ये साहब मेरा मजमून लगना है, मुझे 2 नंबर 4 नंबर इसके मिलेंगे, आप इसको छाप दीजिए। ऐसे अफराद बहुत कम हैं, जैसे प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब हैं, प्रोफेसर अब्दुल हक साहब हैं, इनके मजामीन आते हैं, प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब हैं, ये लोग मजमून लिखते हैं, लेकिन वही सूरत हाल ये होती है कि हर महीने तो छाप नहीं सकते,
0: सही
1: कोई भी रिसाला हर महीने किसी को नहीं छाप सकता, और उसके लिए 3-4 महीने की ज़रूरत होती है, 3-4 महीने बाद उनके मज़ामीन छापे जाते हैं।
0: इसकी क्यों कैद होती है कि हर महीने नहीं छाप सकते जिया साहब?
2: असल में सरकारी रिसालों में ये कैद इसलिए होती है कि किसी भी सरकारी इदारे में ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम किसी खास जो फर्द है उसके साथ कोई फेवर कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा लिखने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको बार बार छापेंगे ये भी हो सकता है कि हम उसके साथ कोई जानिबदारी बरत रहे हों। और क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए, इसकी अगर नहीं मिले कम से कम कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी को मौका, इसीलिए ये रूल बनाया जाता है। अब
0: नई नई सदी में जो ये 21वीं सदी है मुनव्वर हसन साहब, जिया साहब, इतने बरसों में आप लोग भी इतने ज़माने से इदारत कर रहे हैं या हिंदुस्तान के दीगर जो रसायल यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि नई सदी में जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस एकेडमिक वर्ल्ड से अलग होके भी लिखने की कोशिश करते हैं या इस तरह के भी मौजूआत होते होंगे। जैसे मैं देखता हूं कि जो पर्चे आलमी सतह पर कुछ पर्चे हैं उर्दू
1: जी
0: के जो निकल रहे हैं, उनमें
1: जी
0: तराजिम शाये होते हैं, उनमें बहुत अच्छे मजामीन शाये होते हैं, नज़में शाये होती हैं। मेरे ख्याल से खालिस हिंदुस्तान की सतह पर लोग कम हैं, लेकिन अगर कम भी हैं तो उनकी शनाख्त क्यों कर मुमकिन है? मतलब किस तरह से उनकी शनाख्त होगी कि भाई ये लोग जो हैं वो एकेडमिक्स की दुनिया से अलग होकर एक खालिस जज्बे के तहत मजामीन लिख रहे हैं? क्या ख्याल है मुनव्वर साहब?
1: जी बिल्कुल, इस तरह तो होता है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं ऐसा, अपने अपने मौजू से हटके भी लिखते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखते हैं, लेकिन वही सीनियर्स जो हैं वो मामला यही होता है कि उनकी सब चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं, फिर ये होता है कि वो किताबी शक्ल में भी सामने आती हैं, वो लोग उनको किताबी शक्ल में शाये करके पेश करते हैं, इसलिए कि सारे मजामीन रसाइल में चले जाएँ ऐसा मुमकिन नहीं होता। अखबारात में तो खैर जा सकते हैं, अखबारात

0: तो छप जाती हैं चीज़ें, लेकिन रसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, रसाइल का एक मिजाज होता है, हर रिसाले का एक अपना मिजाज होता है, वो उसके एतबार से मजामीन उसमें शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से अफसाने शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से गज़लें शाये की जाती हैं। बाज़ रसाइल जो हैं वो सिर्फ़ जदीद तर्ज़ की गज़लें शाये करते हैं, बाज़ रसाइल जो हैं रिवायती गज़लें शाये करते हैं, बाज़ रसाइल जदीद और रिवायत दोनों को मिला के शाये करते हैं। ऐसे रसाइल की तादाद ज़्यादा है जिसमें जदीद और रिवायती दोनों तरह की गज़लें शाये होती हैं, और वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं इसलिए कि उसके क़ारी दोनों तरह के मिल जाते हैं उसको। और यही सूरत हाल मज़ामीन की है। जब मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है, आज सहल पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई है नई नस्ल में, या नई नस्ल को छोड़िए जो पिछली नस्ल के भी बाज़ लोग हैं उनके यहाँ भी सहल पसंदी आ गई है, और वो भी कोई किताब उठाई और उस पर कोई तबसराती मज़मून लिखा और ज़रा तवील मज़मून हो गया तो उसको भेज दिया कि साहब ये एक मज़मून हो गया है, इसको आप शाये कर दीजिए। नहीं शाये कर पाते हम लोग, मजबूरी है। रसाइल के सफ़ात भी महदूद होते हैं, उन्हीं के अंदर मज़ामीन समेटने हैं। अब उसी में अगर हमारे पास 4-5 सफ़े के 8-10 मज़मून आ गए तो हमारे रसाइल का तो पेट भर गया, और मज़ामीन आए हमारे पास 20-25, तो अब जाहिर है 15 मज़मून तो नहीं छप पाएंगे। 15 मज़मून में भी कोई और मज़मून होंगे एक दो, तो अगले महीने काम आ जाएंगे, वरना वो रखे रहेंगे या उनका तकाजा होगा। जैसे बताया उन्होंने कि किसी का तकर्रुर है, किसी की तरक्की है, किसी स्कॉलर की PhD जमा हो रही है, उनको करना है, अब उसमें सूरत हाल ये होती है कि उनको बताया
1: नहीं,
0: जाए।
1: ये मुनव्वर भाई बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये सब सूरत हाल को बदला कैसे जाए? मतलब हिंदुस्तान की सतह पर ये तो मसाइल हैं, लेकिन मसाइल को कैसे बदला जाए? मतलब हमारे सामने, हमारे पेशे नज़र, आपका जो तजर्बा है, हमारे पेशे नज़र जो मौजूआत या जो रसाइल हैं कि भई ये रसाइल थे और इन रसाइल को हमने जो है वो मतलब ऐसा जाना कि भई इसी तरह से रसायल होना चाहिए, तो अब सूरत हाल को तब्दील करके रसायल की दुनिया में इनकलाब कैसे लाया जाए?
2: आप सही कह रहे हैं कि उसमें तब्दीली की बात भी हमें सोचनी चाहिए। हम यही नहीं सोच सकते सिर्फ कि जो मसाइल हैं हम उनको गिनवाने लगें। बात यह है कि अगर हम लोग अदब में सच्ची दिलचस्पी लें और जो रिसाइल हैं उनको खरीदें, उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें पढ़ें, और उनमें अगर हमें कोई कमी लगती है तो उसको पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है कि भाई आप जो है मुदीर को लिख सकते हैं कि इसमें आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और उसमें अगर हम लोग दिलचस्पी लेंगे, और रिसाइल से पहले तो अदब में दिलचस्पी लेंगे अगर हम, तो मैं समझता हूँ कि रिसाइल में एक नई जान पड़ सकती है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि नई सदी जो है इसमें पूरा प्रिंट मीडिया ही एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर वक्त जो है डिजिटल मीडिया में, मोबाइल में सर्फ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिजिटल रिसाइल भी निकल रहे हैं, अदबी रिसाइल अगर हम देखें, और जो सरकारी रिसाइल हैं निजी भी हैं। ओवरऑल मेयार में मैं समझता हूँ कि कमी ज़रूर आई, लेकिन अगर हम लोग दिलचस्पी लें अपने ज़बान में, अपने अदब में, और रिसाइल को खरीद कर पढ़ेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं और नई सदी में हम एक अच्छी अदबी सहाफत जो है पेश कर सकते हैं।
1: खरीद के पढ़े जाएं, इसकी पॉलिसी कैसे बनेगी हसन भाई?
0: हाँ सर, खरीद के पढ़ना पॉलिसी क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे तो खर्च होते नहीं हैं, बस अपने दिमाग को इस तरफ लगाने की ज़रूरत है।
1: क्या कारईन जो इतने मजामीन भेज रहे हैं, क्या उर्दू के रसायल जो मुदीर हैं या जो इदारे रसाले निकाल रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि उनके रसायल का कारी कहाँ है और उसको किस तरह से पकड़ना है? क्या ये पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में तो कहीं कोई कमी नहीं है जिससे कारी तक हमारे रसायल पहुँच ही नहीं रहे? क्या इस तरह की कोई कमी महसूस करते हैं आप?
0: नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस डिजिटल दौर से हम गुजर रहे हैं उस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उसकी उतनी जितनी मेहनतों की ज़रूरत है उतनी मेहनतें नहीं हो पाती। असल में हुआ यह है कि एक बड़ा तबका जो है अदबी सहाफत का ही कह लीजिए, नई सदी में, इसमें 21वीं सदी में, ये सोशल मीडिया की तरफ चला गया है अभी गुज़िश्ता 8-10 साल से। और सोशल मीडिया पर जाने के बाद उनके सामने सूरत हाल यह है कि उनकी एक चीज़ अभी शाये हुई, अभी उनके पास कमेंट आने शुरू हो गए, बस वो फारिग हो गए, कहने लगे बहुत अच्छा मैंने लिख दिया। अभी पिछले दिनों एक थी शायद, मैं एक नज़्म पढ़ रहा था कोई, उसमें लिखा हुआ था आओ बच्चों, नूनगुलने के साथ तखातुब था, तो मैंने उसमें कमेंट किया कि ये गलत है और आप जो है आओ बच्चों लिखिए। तो उल्टा बजाय इसके कि कोई उसमें अच्छा कोई अदीब होता है, कोई शायर होता है, कुछ लोग उनके पास मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए, कैसे ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। मैंने उन्हें लिख के समझाया कि जैसे आप ए लोगों बोलते हैं, ए लोगों नहीं बोलते, इसी तरह से आओ बच्चों बोलेंगे। तब वो शायरा थी, उनकी समझ में आई बात, और उन्होंने दोबारा फिर वो नज़्म अपनी ठीक करके दोबारा पोस्ट की। तो ये सूरत हाल है, 4 हमारे पास कमेंट आ गए, 10 कमेंट आ गए, और हम फारिग हो गए कि हमने बहुत अच्छा लिख दिया है। रसाइल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी शक्ल में, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर अदीब हो, वो ऐसा जाना ही नहीं।

0: देगा। लेकिन ये है कि चीज़ें
1: ये
0: सोशल मीडिया से नुकसान पहुंच रहा है, सोशल मीडिया में इसलाह की ज़रूरत है। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसमें इसलाह करें, और अच्छे लोग जो हैं वो भी सोशल मीडिया से जुड़ें और इसी तरह से जो चीज़ें देखें उन पर कमेंट करें, उन्हें बताएं,
1: यकीन
0: इसलाह करें उनकी। जब
1: यकीन
0: इसलाह करेंगे, अब मैंने उन्हें बताया कि जब आप सही लिखोगे तभी तो बच्चों की इसलाह होगी, वरना बच्चे तो यही पढ़ेंगे यही बोलेंगे, और जब तक इसलाह का आपके यहाँ पहलू नहीं होगा तो यही चलता जाएगा, यही सिलसिला आगे बढ़ जाएगा।
1: यकीन है। जैसा आप कुछ कह रहे थे,
2: मैं ये एक तो आपने मार्केटिंग की बात की, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया की मार्केटिंग मुतासिर हुई है। बहुत सी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, बुक शॉप्स हैं, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है या कुछ और कारोबार करने लगे। उससे हमारे भी काफ़ी एजेंट्स और कम हुए हैं, और जब एजेंट नहीं होगा तो वो सप्लाई नहीं पहुंच पाती उन जगहों तक जहां तक हमारी पहुंचनी चाहिए। ये एक मसला है। और दूसरी बात, अभी जैसे मुनव्वर साहब ने कही, एक और अहदे हाजिर में एक नई एक मसला ये भी है कि अब कोई भी शख्स जो है, एक नई तब्दीली आई है रवैये में कि वो सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है। ये इंसानी फितरत है, हम ये चाहेंगे कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करें, लेकिन हमें इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या किसी दूसरे ने हमारी कोई गलती की तरफ निशानदेही की है तो उसे हमें मानना भी चाहिए। लेकिन
1: यकीन
2: आज ये एक अफसोस की बात यह है, और इससे अदब का नुकसान भी हो रहा है, कि आज का अदब लिखने वाला ये तवक्को कर रहा है कि जैसे ही उसकी तहरीर सामने आएगी तो तारीफ के
0: सिर्फ
2: लोग पुल
0: तारीफ ही
2: बांधे,
0: तारीफ।
2: और अगर कोई उसकी तनकीद करता है तो वो चाहे कितनी ही सेहतमंद और जायज़ तनकीद क्यों हो तो वो बुरा मानते हैं लोग। ये चीज़ गलत है।
1: मेरे ख्याल से शायद 20-21 सालों में मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हुआ है। जो अहम लिखने वाले हैं वो तेज़ी से हमारे दरमियान से गायब होते चले गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब संजीदा मौजूआत पे बहस करने वाले जो लोग हैं वो अगर हैं भी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो शिरकत नहीं करते हैं बल्कि किनारा कर रहे हैं। हम सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है, एक तो सोशल मीडिया और एक रसाइल का जो एक पूरा एक मैं समझता हूँ कि एकेडमिक दुनिया जो हावी हो चुकी है रसाइल पर, इसकी वजह से भी जो है, जो कि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो पीएचडी में आ गया है, और पीएचडी के मौजूआत बड़े ही ऊट पटांग से होते हैं। उन मौजूआत पे पीएचडी के वो मजामीन लिखते हैं, वो जब मजामीन लिख के भेजते हैं तो जाहिर है कि मुदीर एक नहीं मना करेगा, दो मना करेगा, चार मना करेगा, लेकिन वो उसकी भी एक मजबूरी है कि वो इदारत को अपनी जारी रखेगा, तो कहाँ तक मना करेगा। तो मेरे ख्याल से इस फिजा से भी जो है वो संजीदा लिखने वाले वो शायद दूर हुए हैं। क्या ख्याल है
0: हाँ,
1: मुनव्वर?
0: असल में संजीदा लिखने वाले दूर हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो क्या करें, उनके सामने मसला यह है कि वो करें क्या, दूर क्या हो गए हैं। एक तो एक पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म हो गई है, या वो उम्र की इस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि अब उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, और नई नस्ल जो आई है वो अपना जिस तर्ज पे लिख रही है वो सबको पता है, और कुव्वत बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। पहले यह होता था कि लोग बर्दाश्त भी करते थे और हिम्मत भी रखते थे बर्दाश्त करने की। मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया कि हज़रत माहिरुल कादरी तबसरा निगारी में बहुत
1: जी,
0: मारूफ थे,
1: फरहान
0: और
1: निकालते थे।
0: बहुत फरहान निकालते थे, और किसी की भी किताब के अपना
1: जी,
0: एक
1: तबसरे करते थे, मुझे
0: इतना
1: किताब
0: उमदा
1: भी।
0: तबसरा करते थे कि
1: जी
0: हर बहर उसको। अब उनके पास जोश मिली आबादी की यादों की बारात गई तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जोश साहब अपने हाथ से लिख के भेजेंगे तो तबसरा करूंगा, ऐसे नहीं
1: वाह
0: करूंगा। तो जोश साहब ने एक किताब भेजी, उस पर लिखा बकरा हाजिर है, देखिए जोश
1: वाह
0: साहब ने लिख के भेजा। तो इतनी सलाहियत थी, हालांकि जोश मिली आबादी के सामने फौज की कतारें खड़ी रहती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं गिरफ्त करेंगे मेरी, लेकिन उनके अंदर यह सलाहियत थी कि वो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते थे। आज बर्दाश्त करने की हिम्मत है नहीं
1: हिम्मत
0: किसी
1: नहीं
0: में
1: है
0: भी,
1: उन।
0: आप किसी भी अदीब को उठा लीजिए, किसी को भी कोई बर्दाश्त नहीं करता।
1: यकीन है, इस गुफ्तगू में बहुत आप लोगों से दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मारुल कादरी का आपने तस्करा किया। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैं उनवान चिश्ती का एक मजमून देख रहा था कि उन्होंने अपनी एक किताब है उनकी गालिबियात चंदवानात, तो उसके आखिर में जो है वो कसीदे राइया का उन्होंने किसी मौलवी से तर्जुमा करवाया था, और वो उसको कसीदे राइया के तर्जुमे को उन्होंने उसे शामिल किया। तो एक बहुत अच्छे आलिम है, जीलम शख्सियत है, उन्होंने उसके ऊपर तबसरा करा। उन्होंने कहा कि उनवान चिश्ती को या तो अरबी नहीं आती थी, या उन्होंने जिससे कराया उसे नहीं आती थी, कि पूरे कसीदे राइया को जो है उन्होंने तबाह कर दिया। तो उस पूरे मजमून को उन्होंने लिखा छपा, और जितने संजीदा लिखने वाले हैं सारे लोगों ने उसकी तारीफ की और उसको सराहा कि भाई उनवान चिश्ती जैसा आदमी है उससे गलती हुई है। तो हमारे वहाँ मेरे ख्याल से बात सही है कि जो एक पूरा मुआशरा तनकीद बर्दाश्त करने वाला था वो शायद ख़त्म हो गया। इस गुफ्तगू में हसन ज़िया साहब ने जो बातें कहीं, या मुनव्वर साहब आपने जो बातें कहीं, या हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने का मकाम है कि आज जो पूरा पूरा मंजरनामा हमारे सामने है, उर्दू सहाफत को कैसे तब्दील किया जाए, कैसे संजीदा मौजूआत को पेश नज़र रख के उन पर काम किया जाए, पुराने लोगों ने जो काम किया है इस वक्त ज़रूरत यह है कि उनको सामने दोबारा लाया जाए। जब तख्लीकी सलाहियतें कमज़ोर पड़ने लगती हैं किसी मुआशरे में, तो उनको इस बात को की ज़रूरत महसूस करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है हम पहले उसको सामने लाएँ और लाते रहें उस वक्त जब तक हमारे अंदर जो है तख्लीकी सलाहियत वो दोबारा जोश न मारे या बेहतर तरीके से हमारी सलाहियतें काम में ना आए। आज की इस गुफ्तगू में उर्दू सहाफ़त के मौजू पर मुनव्वर हसन कमाल साहब और जनाब हसन ज़िया साहब, आप दोनों से गुफ्तगू हुई। बहुत मालूमाती, बहुत अहम मौजू और बहुत ही अहम निकात की तरफ आप दोनों ने इशारा किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर एक बहस करवाई जिसका आज का जो मौजू था कि नई सदी में उर्दू सहाफ़त, तो इस मौजू पर बहुत ही बामानी बहस हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे। शुरका थे जनाब मुनव्वर हसन कमाल, जनाब हसन ज़िया, जनाब तालीफ हैदर। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब तालीफ हैदर। तो सामीन, ये था आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 4 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध मजबूत बनाए हैं।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित

जावड़ेकर ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावारीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण खाली हुई। इसके अलावा मंजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेश भाई नरदास पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। सह मेजबान अमरीका ने राउंड ऑफ 32 के मैच में आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। वर्ष 2002 के बाद नॉकआउट चरण में अमरीका की ये पहली जीत है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। ये सूचना हमें मिली है न्यूराज नगर कोतवाली नगर बुलंदशहर से। विशाल राणा पुत्र देवेंद्र सिंह सूचित करते हैं कि संध्या उनकी बहन 10 अप्रैल 2026 से अपने घर से गुस्सा होकर चली गई है। संध्या की उम्र 18 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर, शरीर पतला और चेहरा लंबा है और रंग गोरा है। संध्या से संबंधित कोई भी सूचना थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर को दी जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है प्रीति के बारे में। प्रीति, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा बदन और कद 5 फुट 2 इंच है तथा कंधे पर तिल के निशान है। वह 25 मार्च 2025 से अपने घर से बिना बताए अपने साथ चली गई है। प्रीति निवासी सिद्धनाथपुरी मजरा रोतापुर शंकरपुर सराय थाना गंगाघाट जिला उन्नाव से है। उनके विषय में यदि आपके पास कोई सूचना या जानकारी है तो कृपया थाना गंगाघाट उन्नाव को सूचित करें। हरिओम निवासी गांव लोना थाना कोच जालौन उत्तर प्रदेश से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी आरती, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच है, शरीर हष्टपुष्ट, रंग गेहुआ और चेहरा लंबूतरा है। वह अपने घर से अपने बेटे को लेकर बिना बताए चली गई है। अंतिम बार 13 मार्च 2026 को गांव रामपुरा थाना खेड़की दौला गुरुग्राम में देखा गया था। उनसे संबंधित सूचना थाना खेड़की दौला को दी जा सकती है। थाना खेड़की दौला से ये सूचना हमें मिली है। सुमन पत्नी बेनीवाल, जिनकी आयु 35 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर हष्टपुष्ट, रंग सांवला, चेहरा गोल है, उनको अंतिम बार सेक्टर 83 गुरुग्राम में 14 जून 2026 रविवार को देखा गया है। सुमन का पता है निवासी पनकी पावर हाउस पानी की टंकी कच्ची झोपड़ी पंक बहादुर नगर जिला कानपुर। उनसे संबंधित जानकारी के लिए थाना खेड़की दौला से संपर्क किया जा सकता है। ये सूचना हमें मिली है गांव भांगरौला गुरुग्राम से।

सुबोध कुमार सूचित करते हैं कि उनकी बेटी नंदिनी, जिसकी उम्र 21 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है, वह 13 मार्च 2026 से बिना बताए घर से चली गई है। नंदिनी के बारे में कोई सूचना होने पर आप जानकारी थाना खेड़कीदौला को भी दे सकते हैं। सतान सिंह गांव पुठरी कला, जिला बुलंदशहर से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री अंजलि, जिसकी उम्र 19 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा लंबोतरा, शरीर हष्टपुष्ट, कद 5 फुट 2 इंच है, वह 2 अप्रैल 2026 से गांव सिकंदरपुर गुरुग्राम से बिना बताए कहीं चली गई है। अंजलि के हाथ पर ओम का निशान है। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए थाना खेड़कीदौला हरियाणा से संपर्क किया जा सकता है। थाना खेड़कीदौला गुरुग्राम से ही दूसरी सूचना मिली है कि पायल पुत्री मातादीन, उम्र 20 वर्ष, रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर तंदुरुस्त, कद 5 फुट 5 इंच, माथे पर तिल का निशान। सूचना देने वाले को उचित राशि दी जाएगी। अंतिम बार गांव खेड़कीदौला गुरुग्राम सेक्टर 43 में देखा गया। इनसे संबंधित जानकारी थाना खेड़कीदौला से प्राप्त की जा सकती है। ये सूचना हमें मिली है नीतू कुशवाहा के बारे में। नीतू की आयु 14 वर्ष, कद 5 फुट, शरीर दुबला पतला, रंग सांवला है। अंतिम बार इनको 9 जून 2026 को गांव ढोरका गुरुग्राम में देखा गया। अगर आप नीतू से संबंधित कोई सूचना या जानकारी रखते हैं तो थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। आवाज़ आ रही है ना?
1: बिल्कुल आ रही है, और सिर्फ हमें ही नहीं पूरे शहर को आ रही है।
0: परफेक्ट। तो हेडफोन्स एडजस्ट कर लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बिकॉज अगले कुछ मिनट सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बट एंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन और मस्ती का फुल पैकेज लेकर हम आ गए हैं।
1: एग्जैक्टली। वेदर यू आर ट्रैवलिंग, स्टडिंग, रिलैक्सिंग एट होम या बस चाय की चुस्कियों के साथ वक्त बिता रहे हैं, वेल, यू've लैंडेड एट द परफेक्ट फ्रीक्वेंसी।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्रेया।
1: और मैं हूँ कर्मण्य, और आप सुन रहे हैं
0: युववाणी आकाशवाणी पर। आज के शो में बातें होंगी आज की, लोगों की, टेक्नोलॉजी की, और हाँ, एक खास गेस्ट के साथ एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी।
1: तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए और साथ बने रहिए, क्योंकि हर सेगमेंट के साथ मिलेगा कुछ नया, कुछ यूजफुल और बहुत सारा फन।
0: जी, तो बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ। गीत का नाम तुम ही देखो ना, फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास सेगमेंट आज की बात में। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के 11 सालों की और कैसे इस इनिशिएटिव ने भारत की डिजिटल जर्नी को एक नई पहचान दी।
1: बिल्कुल श्रेया, 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया मिशन का मकसद था टेक्नोलॉजी को हर नागरिक तक पहुंचाना और गवर्नमेंट सर्विसेज को और आसान बनाना।
0: वही कर्मण्य आज बैंकिंग हो, टिकट बुकिंग हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्यादातर काम मोबाइल से कुछ ही मिनट्स में हो जाता है।
1: और यूपीआई ने तो पेमेंट सिस्टम ही बदल दिया। डिजी लॉकर, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स और आधार इनेबल्ड सर्विसेज ने भी लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी। उम्मीद है आने वाले सालों में भारत डिजिटल इनोवेशन में और नए माइलस्टोन्स अचीव करेगा।
0: तो कर्मण्य, अभी मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, इरशाद इरशाद।
0: सुरों के आसमां का वो चमकता अजीज सितारा था, जिसकी आवाज का हर एक अंदाज दिलकश और प्यारा था। आज भी गूंजती है फिजा में लखन की वो तान, उनकी यादों से महक रहा है संगीत का सारा जहान।
1: क्या बात है श्रेया, मैं हिंट ले रहा हूँ आपकी इस खूबसूरत शायरी से कि आप एक खास शख्सियत के बारे में बात करने वाली हैं।
0: जी हाँ, आज मोहम्मद अजीज का जन्मदिन मनाया जाता है। इन्होंने अपनी प्यारी आवाज से 80 और 90 के दशक के गानों में सुर की चार चांद लगा दिए थे।
1: वही गाने जिन्हें हम आज भी लूप पर सुनते हैं, जिनके बिना हमारी गुड वाली प्लेलिस्ट अधूरी है।
0: वही तो, कैन यू बिलीव इट कि उन्होंने अपने करियर में 20,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड करे, और सिर्फ हिंदी ही नहीं बट बांग्ला, उड़िया और कई दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में भी अपनी आवाज दी।
1: हाँ श्रेया, और उनकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि उन्हें हाई पिच सॉन्ग्स का किंग माना जाता था। माई नेम इज लखन से लेकर प्यार हमारा अमर रहेगा जैसे एवरग्रीन सॉन्ग्स उन्हीं की तो देन है।
0: देखो, बातों बातों में मुझे वो गाना याद आ गया जिसे मैं कल रात गुनगुना रही थी। तो दोस्तों, आइए साथ मिलकर सुनते हैं गीत का नाम आपके आ जाने से, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद अजीज ने फिल्म खुदगर्ज से।

0: तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक।
1: अच्छा श्रेया, हमारे साथ कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आईबीपीएस की और कोई यूपीएससी की, तो तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं क्या?
0: कर्मण्या, यूपीएससी को लेकर एक बेहतरीन टिप सुनने जा रहे हैं हम इसी सेगमेंट में, एक बातचीत यूपीएससी मेंटोर करण महंगी और संतोष द्विवेदी के बीच। प्रस्तुत है आप सभी के लिए बातचीत,
1: तो आइए साथ में सुनते हैं।
2: नमस्कार युवा साथियों, आज की मन से माइक्रोफोन तक के सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं करण महंगी जी, जो कि यूपीएससी मेंटोर हैं। करण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: जो युवा साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबके बिहाफ पे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन जो अपने आप में एक तपस्या है, क्या सही समय है कि जब उसे इस तैयारी में लगना चाहिए?
3: जी संतोष जी, मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि स्कूल तक तो आप एक क्लोज शेल में होते हैं, जो सब कुछ सीख रहे हैं, दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। 3 साल के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मतलब आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहाँ पे फुल फ्लेश तरीके से एक्सपोजर लें, सीखें दुनिया कैसी चलती है, फिर उसके बाद इस प्रिपरेशन में आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप दुनिया के बारे में जानेंगे नहीं, फिर आप इस एग्जाम में बैठ जाएंगे तो फिर से वापस उस क्लोज शेल में जाना, एक कमरे में बंद होकर पढ़ना, तो वो सही नहीं है, मेरा मानना ये है।
2: जी करण जी, जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा दुनिया को देखें, समझें, जानें, फिर इस तपस्या में आप कूदें, और तपस्या में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल लाखों नए विद्यार्थी उसमें जुड़ते हैं। अगर हम अनुमानता माने तो 1000 सीट्स के आसपास का एक एवरेज है जिसमें बच्चे जाते हैं, और तैयारी करने वाले 12-15 लाख हर साल अपीयर होते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने मान लीजिए तय कर लिया कि उसे अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न उसके समक्ष आता है वो होता है कि विषय चयन। क्या जिस फील्ड में पढ़ता रहा है अभी तक वो उस विषय का चयन करे, या पढ़ाई के दौरान वो ये तय करे कि किस विषय में उसकी अधिक अभिरुचि है, कैसे करे?
3: देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि आप यूपीएससी का सिलेबस देखें। हर साल यूपीएससी एक नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें 30+ ऑप्शंस होते हैं, जो विषय होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। एक एक ऑप्शनल को, एक एक सब्जेक्ट को, विषय को आप पढ़ें, समझें उसकी गहराई क्या है, फिर आप उसमें रुचि देखिए। तो देखिए, यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसे कहते हैं कि आपके भाई बंधु की तरह है, क्योंकि अगर आप इसको अंदर बाहर से नहीं समझेंगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। हमारे यूपीएससी में ट्रिनिटी का प्रिंसिपल होता है कि ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक रह जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस भाई को आपको समझना पड़ेगा, उसको मित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, किस में आपकी रुचि है, फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा कि उसका कोई पढ़ाने के लिए कोई है व्यक्ति, कोई एक एक्सपर्ट आदमी है जिसमें आपको गाइड कर सके, फिर तीसरा देखिए आप उसके नोट्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं है, फिर फोर्थ आप देखिए कि आप उसको टाइम स्लॉट में कवर अप कर पा रहे हैं। एक ऐसा विषय ना चुन लें जो बहुत बड़ा हो, जैसे हिस्ट्री कहते हैं कि काफी बड़ा ऑप्शन है, लोग उसको ले तो लेते हैं कि चलो स्टैटिक है कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले देखें रुचि है, इंटरेस्ट है, फिर देखें कि यूपीएससी की क्या डिमांड्स आ रही है, मेरे को, मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूं, तभी आप उसको चुन के आगे बढ़े।
2: अच्छा करण जी, मैंने भी कई बार ये देखा है कि जब जब रिजल्ट आता है तो एक चलन सा चल पड़ता है कि कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भीड़ चलती है, जैसे आपने कहा कभी हिस्ट्री की तरफ, कभी पॉलिटिकल साइंस, तो जिस तरह का रिजल्ट आता है उस तरफ चल पड़ती है, और अगले साल फिर ये चलन बदल जाता है। इस चलन के हिसाब से तो मुझे लगता है कि विषय चयन ना हो, अपनी अभिरुचि के हिसाब से हो। अच्छा, एक दूसरी और विषय इसमें कोचिंग का बहुत बड़ा रोल आजकल देखने को मिल रहा है, कोचिंग का चयन भी कैसे करे व्यक्ति, कोचिंग का कितना रोल है और क्या कोचिंग अनिवार्य है?
3: देखिए, जैसे चंद्रगुप्त को भी एक चाणक्य की जरूरत पड़ी थी, तो वैसे ही एक मार्गदर्शक की आपको जरूरत पड़ती है कि आपको इस एग्जाम में फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। तो मेरा मानना यह है कि कोचिंग या मेंटरशिप, जो अगर आपको एक व्यक्ति मिल जाए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि देखिए आजकल सारे रिसोर्सेज मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए या सोशल मीडिया पे जाइए या कहीं भी आप गूगल पे करिए, आपको सब कुछ मिल सकता है। बट आपको पढ़ना तो कैसे है, किस दायरे में पढ़ना है, क्या लिमिट्स रहनी चाहिए, किस एंगल से पढ़ना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए एक गाइड होना जरूरी है। तो कोचिंग जो है आपको उसमें हेल्प कर सकती है, एक हेल्पिंग एड की तरह ले सकते हैं। देखिए, यूपीएससी की डिमांड बहुत क्लियर है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि जितने हमारे सरकारी संस्था है, एनसीईआरटी हो गई या हमारे ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्ट हो गए या हमारे पीआईबी के ब्रॉडकास्ट हो गए, तो वो सबसे बेहतर रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो यूपीएससी कहता है कि पहले उन्हें फॉलो करें। कोचिंग एक एड की तरह काम कर सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन पढ़ना, तपस्या करना और उसके अंदर आपको झिझोड़ देना, अपने अंदर से गोल्ड कैसे निकालना है, सोना कैसे निकालना है, वो आपको ही करना पड़ेगा।
2: जैसे करण जी ने कहा कि आप विश्वसनीय स्रोतों की तरफ जाएं, जैसे पीआईबी है, आकाशवाणी।

0: नहीं है, दूरदर्शन है, इनके जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं इन पे आप जाएं तो आपको विश्वसनीय जानकारी मिलेगी और आप भटकाव से बचेंगे। करण जी, हमें और आपको लाखों करोड़ों युवा इस समय सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट साझा करें जिसमें कि कोई व्यक्ति एकदम मीडियोकर था पढ़ाई लिखाई में, पर आगे चल करके उसने सफलता अर्जित की।
1: मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में मीडियोकर रहे, मतलब कॉलेज में, स्कूल में उनके 50% 60% मार्क्स भी नहीं आए। एक तो स्वीटी उपाध्याय मैम ही आई थी, उनका आपने लास्ट टाइम देखा ही था आकाशवाणी पे, उनके खुद रिवील किया था कि मेरे कितने मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के अंदर, फिर भी उन्होंने यूपीपीसीएस क्रैक किया। मेरा एक स्टूडेंट है जो असम में एसडीएम है अभी, उनके भी मार्क्स बहुत कम थे। वो बहुत ही एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनका फाउंडेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल उन्होंने बहुत मेहनत करी। आज वो एसडीएम है, एपीएससी उन्होंने क्रैक कर लिया, यूपीएससी की फिर से वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बहुत फेमस आईपीएस ऑफिसर भी हैं, अभी इस साल इनका चयन हुआ है, उनका भी यही था कि कॉलेज में उनके मार्क्स 55% मार्क्स थे। तो यूपीएससी कभी क्राइटेरिया नहीं देता कि आप टॉपर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है इसमें हर कोई इंसान अगर अच्छे से पढ़े, मनन करें, चयन करें, तो सिलेक्शन जरूर होगा उसका।
0: जी बिल्कुल, आप मनन करें, चिंतन करें और आपका चयन अवश्य होगा, ये मूल मंत्र है करण जी का। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे करण जी कि जैसे कि आपके पास मेंटोरशिप के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं
1: जी,
0: कोई साइंस स्ट्रीम का होगा, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होगा, कोई ह्यूमैनिटीज का भी होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं आप, मतलब किस तरह की स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी?
1: देखिए, हर बच्चा अलग दिमाग लेके पैदा हुआ है, मेरा ये मानना है। तो मैं पहले उस बच्चे को समझता हूँ कि वो किस एरिया में स्ट्रांग है, किस फील्ड में स्ट्रांग है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे एक साइंस का बच्चा है तो उसका एनालिटिकल स्किल्स ज्यादा अच्छा होगा, तो पहले मैं उनको एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइंस वाले सब्जेक्ट्स पहले कराता ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर धीरे धीरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ला जाता है। अब एक आर्ट्स फैकल्टी का व्यक्ति है तो वो हिस्ट्री में स्ट्रांग होगा, पॉलिटी में स्ट्रांग होगा, लेकिन इनके अंदर भी देखिए यूपीएससी की डिमांड बहुत वर्सेटाइल होती जा रही है आजकल। उसमें क्या है कि रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको समझने वाले बच्चे भी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले। तो दोनों को, हर एक व्यक्ति को उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आना कि वो कॉन्सेप्ट भी समझे, फैक्ट्स भी रटे और आगे बढ़े। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 में, तो उसकी डिमांड करेगी कि कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हों और फैक्ट्स में हमें पकड़ रखे, कि कल को हम कहीं बाहर जाते थे, आईएफएस ऑफिसर है कहीं बाहर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या चल रहा है। तो उसके लिए उसको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी के सारे कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूपीएससी की डिमांड ये, तो दोनों एरियाज पर यूपीएससी टेस्ट करता है, तो दोनों माइंडसेट डेवलप करने पड़ते हैं इस एग्जाम के लिए, उसका मिश्रण ही आपको आगे ले जा सकता है।
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले भारत को बेहतर तरीके से जाने, यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य सबको समझें, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को समझें, तब जाकर के एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप कार्य कर पाएंगे। करण जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे यूपीएससी नेशनल लेवल पर सिलेक्शन करती है, ऐसे स्टेट लेवल पर भी सिविल सर्विसेज के लिए पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, तो एक व्यक्ति एक समय में क्या दोनों के लिए तैयारी कर सकता है या उसे एक बार में एक ही पे फोकस करना चाहिए? हमारे बहुत सारे श्रोता मुझे लगता है इस बात को जानना चाह रहे
1: हैं। जी, मेरा मानना बिल्कुल ये है कि आपको यूपीएससी करना तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी होना चाहिए। जैसे मैं हर व्यक्ति जो भी मेरे साथ जुड़ता है, एस्पिरेंट जुड़ता है, मैं उसको हमेशा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की तैयारी साथ साथ कराता हूँ। तो प्लान बी में हमेशा मेरा स्टेट पीसीएस रहता है। देखिए, 70-80% जो डिमांड है स्टेट पीसीएस की वो एकदम सिमिलर है यूपीएससी की, 20-30% डिमांड अलग होती है। हाँ, यहाँ पे फैक्ट्स तैयार ज्यादा करने पड़ते हैं जो कि आपको यूपीएससी में भी काम आते हैं, तो वो भी आप साथ साथ क्रैक कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी नहीं निकाल पाए लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट में स्टेट पीसीएस क्रैक करके बैठे, असम में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, आंध्रा, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: करण जी, चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो बच्चे अभी कॉलेजेस में हैं और जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहते हैं, एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा जो कॉलेज में एस्पिरेंट्स हैं, आप पहले कॉलेज लाइफ जिए, उसको एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। जब आप आखिरी साल में हो तो तब एक यूपीएससी का सिलेबस जरूर निकालें, प्रिंट आउट करके अपनी दीवार पे से चिपकाएं और पढ़ें कि क्या है इसमें, पेपर वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री फोर ऑप्शनल कैसे होते हैं, सी सेट क्या होता है, पहले समझिए इसे कि गेम क्या है। कहते ना कि पहले गेम खेलने से पहले गेम को समझिए, उसके नियम समझिए, पहले नियम समझिए कि क्या चाहिए, कितने मार्क्स से कट ऑफ हो सकती है, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मेरी वीकनेस है। एक स्वॉट एनालिसिस, मैं हर एस्पिरेंट को बोलता हूँ अपना स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट में क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आपको एक पेज पे लिखना होगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या किसमें लैक कर रहा हूँ। तो पहले उन एरियाज जो आपके स्ट्रेंथ्स है, पहले उस पर काम करें। मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं इंटरेस्ट के लिए डेवलप करता हूँ, क्योंकि जब आपके वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वीक पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेंगे। तो सिलेबस सबसे पहला, फिर साथ साथ ऑप्शनल का चयन, जो सब सब्जेक्ट की हमने बात करी शुरुआत में, फिर उसके बाद आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल शेड्यूल आपको सेटअप करना पड़ेगा। नहीं है तो एक गाइड लीजिए, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आपको हर चीज इंटरनेट में मिल जाती है, एआई टूल्स का जमाना है और आप सीख सकते हैं कैसे आगे बढ़ना है। बट ये है कि दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। आप अपनी जर्नी को एक्सटेंड ना करें, क्योंकि ये एक तरह से दलदल है, मैं जो मानता हूँ 5-10 साल इसमें लोग बिता देते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मैं सभी को ये कहूंगा कि दूसरों की गलती से जरूर सीखें, एक्सपीरियंसेस लें, लेकिन टॉपर टॉक्स में फंस ना जाएं, सारा दिन वही बैठ के देख रहे हैं। पहले एक्सपीरियंसेस लें, अपनी गलतियों को देखें कि हाँ मेरी ये गलती है।

0: मिनिमिस्टेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो वहाँ पे पैराग्राफ या पैसेजेस आते हैं, तो वैसे ही टॉपर्स टॉक में आप सिर्फ उनसे बुनियादी बातें सीखें कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो उसका सिर्फ एक ही नाम है, वो है परिश्रम। और जीवन में पढ़ाई का और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। करण जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे युवा श्रोताओं के लिए इतनी बहुमूल्य जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑल इंडिया रेडियो का, संतोष जी आपका पर्सनली आपने मुझे बुलाया और मैं अपने जो विषय है मतलब अपने जो नॉलेज शेयर कर सका, आई होप सबको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू अगेन।
2: क्या बात है, कितना थॉटफुल एंड इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था ये। आई एम श्योर सारे यूथ के लिए ये काफी मोटिवेशनल रहा होगा।
3: बिल्कुल करमन, तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। गीत का नाम हैरा हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर, जिसे स्वर दिया है अनुराधा और शब्बीर खान ने फिल्म जवाब हम देंगे।

0: बस इतना समझ लीजिए, एक स्कैम्स का दरिया है और सेफ्टी से निकल के जाना है।
1: लेकिन हम है ना, आज अपने वीकली सेगमेंट में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में।
0: लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि ना ही केवल हम बात करेंगे स्कैमर्स के ऑब्सेशन की, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं।
1: बट इमेजिन करिए कि आप अपने रूम में बैठे हैं और अचानक किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ जाती है, और कॉल उठाते ही सामने कोई नहीं बल्कि एक ऐसी ऑब्जेक्शनेबल वीडियो चल रही होती है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं।
0: उसके बाद स्कैमर्स उस कॉल का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि वो आपकी पिक्चर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिखाएंगे, इसकी धमकी देते हैं। और बिलीव मी, लोग घबरा कर जो वो कहते हैं वो करने को भी तैयार हो जाते हैं।
1: लेकिन दोस्तों, सबसे पहला रूल है डोंट पैनिक।
0: जी हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो पैसे बिल्कुल मत भेजिएगा। सबसे पहले साइबर कंप्लेन पोर्टल पर कॉल कीजिए, जिसका नंबर है 1930, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉन्टैक्ट करें।
1: एंड साथ ही में व्हाट्सएप के कॉल सेक्शन में साइलेंस अननोन कॉलर्स फीचर्स को भी ऑन रखिए। एक छोटी सी सेटिंग आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है।
0: रिमेम्बर, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट होना सिर्फ फास्ट इंटरनेट से नहीं, सेफ इंटरनेट से होता है।
1: सो स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, बिकॉज साइबर सेफ्टी स्टार्ट्स विद यू।
0: जी, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ, फिल्म गुलाबी से, गाने का नाम जहाल मिस्किन।

0: तो चलते हैं अपनी अगली सेगमेंट क्विक बस की तरफ।
1: श्रेया, सोचो अगर पूरे दिन की इम्पोर्टेंट अपडेट्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मिल जाए, कितना मजा आ जाएगा ना।
0: वेल विश ग्रांटेड। वेलकम टू क्विक बस, जहां न्यूज है क्विक, कन्वर्सेशंस है फन और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट।
1: सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग एंड द हेडलाइंस आर वेटिंग।
0: सबसे पहले क्रिकेट। विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है।
1: टीम इंडिया से भी काफी उम्मीदें हैं। सीनियर प्लेयर्स के अनुभव और यंग टैलेंट के जोश का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हर मैच पॉइंट्स टेबल के लिए महत्वपूर्ण होगा और फैंस को एक रोमांचक टूर्नामेंट की उम्मीद है।
0: और हाँ, क्रिकेट फैंस के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट। आज रात 10:30 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा,
1: तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट पक्का करेगी।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है,
1: लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना और पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
0: जी, और अब एक पॉजिटिव स्पोर्ट्स अपडेट।
1: एथलेटिक्स, बैडमिंटन, चेस और शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्रास रूट्स लेवल पर भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिल रहा है। अगर आप भी देश और दुनिया की ऐसी रोचक जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो बने रहिए आकाशवाणी के युववाणी प्रोग्राम के साथ।
0: तो चलिए अब बढ़ते हैं एक खूबसूरत गीत की तरफ। गीत का नाम फिर ले आया दिल, जिसे स्वर दिया है रेखा भारद्वाज ने फिल्म बर्फी से।

0: अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट हिस्ट्री की तरफ।
1: आज यानी 2 जुलाई के दिन हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो स्पोर्ट्स दुनिया के अनसंग हीरोज को डेडिकेट किया गया है।
2: बिल्कुल श्रेया, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के नाम है जो स्टेडियम के बाहर रहकर भी हार जीत की कहानी हम तक पहुंचाते हैं।
1: इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी AIPA की फाउंडेशन को याद करते हुए की गई थी। इसका मकसद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करना।
2: और वैसे देखा जाए तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिर्फ स्कोर नहीं बताता, वो प्लेयर्स की जर्नी, उनकी मेहनत, इमोशंस और बिहाइंड द सीन स्टोरीज को भी ऑडियंस तक लेकर आता है।
1: अगर भारत की बात करें करमन्या, तो हर्षा भोगले का नाम सबसे पहले याद आता है। क्रिकेट की उनकी नॉलेज और सिंपल प्रेजेंटेशन स्टाइल ने उन्हें हर जनरेशन का फेवरेट बना दिया है।
2: बिल्कुल, और इंटरनेशनल लेवल पर जॉन आर्लुट का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कमेंट्री और स्पोर्ट्स राइटिंग ने क्रिकेट जर्नलिज्म को एक अलग पहचान दी है। आज भी उनके काम को लोग इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सफर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया।
1: उम्मीद है आज की बातें आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में कुछ नए ख्याल जरूर छोड़ गई होंगी।
2: मैं हूं कर्मण्य।
1: और मैं हूं श्रेया।
2: मिलते हैं फिर एक नए दिन, नए जज्बे और नए किस्सों के साथ।
1: तब तक खुश रहिए,
2: सीखते रहिए
1: और सुनते रहिए युववाणी सिर्फ आकाशवाणी पर। और अब इजाजत दीजिए एक खूबसूरत संगीत के साथ।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को

0: संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits.
2: भारत-जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to 3 Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on 30th of this month and the counting of votes will be conducted on the 3rd of next month. Indian Railways has registered a 4% growth in freight in June this year as compared to the corresponding month last year. The Ministry of Railways said that railways loaded over 142 million tons of freight during last month. It added that Railways has also registered a steady growth in passenger traffic in June this year. Furthermore, the number of Amrit Bharat train services in the country has reached 72, with 4 new services inaugurated during June this year. Meanwhile, the number of Vande Bharat services has increased to 164, including the recently introduced Vande Bharat sleeper service between Howrah and Kamakhya. The Ministry of Women and Child Development invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Awards 2026 to recognize the extraordinary achievements of children aged 5 to 18 years. The last date for submitting applications is 31st of this month. The ministry said that nominations can be made through the online portal awards.gov.in. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran tomorrow to attend the funeral ceremony of late Supreme of Iran Grand Ayatollah Syed Ali Khamenei. Ministry of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries, providing a robust foundation to political and economic engagements. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार। तो कुसुम बहन हम हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के, और इस कार्यक्रम में हम अपने सभी बहन भाइयों के लिए लेकर के आते हैं प्यारे प्यारे लोकगीत।
1: बिल्कुल अतुल भाई, बहुत ही अच्छे प्यारे से लोकगीत लेकर आते हैं, और आज भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे लोकगीत लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा लोकगीत सुनवाने वाले हैं?
0: तो सुनते हैं मंजू शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे रंगीला मारा बालमा अंगूठी का नगीना, बहुत ही प्यारा लोकगीत था ये और कलाकार थी मंजू शर्मा अतुल भाई। और अब हमारी अगली कलाकार हैं अनुराधा शर्मा, आइए सुनते हैं इनसे प्यारा सा लोकगीत।

0: सज धज कर जब सासू निकले देखो उसके ठाट,
1: सज धज कर जब सासू निकले देखो उसके ठाट।

कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे अनुराधा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत सासू मुझे बुलावे री मैं तो सास रे ना जाऊं, और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं वीना ढिल्लोर और उनकी सखियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे वीना ढिल्लौर, उनकी सखियों की आवाज में ये लोकगीत।
1: और अब बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं जय प्रकाश शर्मा से एक और लोकगीत। ये क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के बारे में।

0: जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आई जइयो, ये बहुत ही प्यारा सा लोकगीत सुना जयप्रकाश शर्मा की आवाज में।
1: और कुसुम बहन, इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
0: नमस्कार।

0: अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। नमस्कार प्रेरणा।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: आज खेल पत्रकारिता दिवस है तो देश और दुनिया के सभी खेल पत्रकारों को बधाई। और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप के मुकाबलों की
3: और साथ ही बात होगी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल की, जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए आमने सामने होंगी। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले का हाल भी जानेंगे।
2: साथ ही बात होगी विंबलडन टेनिस की और दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसका बीती रात कल ऑक्शन हुआ है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास रिपोर्ट पेश करेंगे।
3: और साथ ही बात करेंगे कनाडा ओपन बैडमिंटन, यूनाइटेड स्टेट्स मैच टेबल टेनिस की भी और रहेंगे कुछ अन्य खेल समाचार।
2: तो आइए प्रेरणा शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप की, और जहां रोमांच शिखर पर पहुंच चुका है और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले बेहद जबरदस्त, दमदार और रोमांचक हो रहे हैं।

0: फीफा विश्व कप के मुकाबलों में रोमांच का सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी टीमों को साग बचाने के लिए पूरा दमखम झोंकना पड़ रहा है। बेल्जियम की गिनती मजबूत टीमों में होती है, लेकिन इस फीफा विश्व कप में टीम सही लय में नहीं दिख रही है। अफ्रीकी छुपे रुस्तम माने जाने वाली सेनेगल की टीम के खिलाफ 85वीं मिनट तक बेल्जियम 2 गोलों से पिछड़ रही थी, लेकिन अगले लगभग 3 मिनट के अंतराल में बेल्जियम ने 2 गोलों से बराबरी कर ली और फिर अतिरिक्त समय तक खिंचे मुकाबले के इंजरी टाइम में पेनल्टी से हुए गोल के साथ बेल्जियम की नैया राउंड ऑफ 32 से पार लग गई। बेल्जियम ने यह मुकाबला 3-2 से जीता। यह अभी तक इस विश्व कप का सबसे उतार चढ़ाव भरा मुकाबला रहा। सेनेगल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख दिखाया। 25वें मिनट में हबीब डियारा ने सेनेगल को भड़क दिलाई। मध्यांतर के बाद मैच के 51वें मिनट में इस्माइल असार ने अकेले दम पर गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया।
1: Here they go here with Ismaïla Sarr. Belgium, this one's right into the path of Ismaïla Sarr.
0: सेनेगल के प्रयासों से 2 बार गेंद गोल पोस्ट से टकरा कर रह गई, वरना उसकी बढ़त और भी मजबूत होती। ऐसा लग रहा था कि अब तो उलटफेर तय है, लेकिन बेल्जियम ने अंतिम क्षणों में वापसी कर ली। बेल्जियम के स्टार रोमेलो लुकाकू ने 86वें मिनट में गोल कर अंतर 1-2 कर दिया। और लगभग 3 मिनट बाद योरी टिलेमांस ने हेडर से बराबरी दिला दी।
1: In from Trossard. Oh, Mori Jau came for it. Wow! In a flash, Belgium are back. Physical beating in there. It doesn't matter. He's gonna.
0: अतिरिक्त समय में जब मुकाबला पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ रहा था, तब वीडियो समीक्षा यानी वीआर तकनीक के परीक्षण के बाद रेफरी ने बेल्जियम को पेनल्टी अवार्ड कर दी। सेनेगल ने फैसले का कड़ा विरोध भी किया। 125वें मिनट में टिलेमांस ने पेनल्टी को गोल में बदलकर बेल्जियम को

0: रोमांचक जीत दिला दी।
1: Some may debate the decision.
2: An absolutely brilliant penalty. It was like a training park penalty, like he's done so many times before.
1: And it is over. From the brink to the next round.
0: अब बेल्जियम की टक्कर सह मेजबान अमेरिका से होगी। लगता है फीफा विश्व कप की मेजबानी अमेरिका को खूब रास आ रही है। सहमेजबान कनाडा और मेक्सिको के बाद यूएसए ने भी राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका ने अंतिम 16 में प्रवेश के लिए 24 साल के इंतजार को समाप्त किया। बॉलेगन और टिलमैन ने गोल किए। सैन फ्रांसिस्को में फोलोरिन बॉलेगन ने हाफ टाइम से पहले गोल कर अमेरिका को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। यह बॉलेगन का इस विश्व कप में तीसरा गोल रहा। टीम ने गेंद प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से अपने कब्जे में ली और टिलमैन को बढ़ा दी, जिन्होंने बॉक्स में बॉलेगन को सटीक पास दिया, जिन्होंने लेफ्ट फुट से गेंद को गोल में उतार दिया।
3: Balogun's there. No one else is McKinney.
4: So the little flick, Tillman. Looking for Balogun. It might fall for Balogun.
0: अमेरिका की टीम का पलड़ा भारी था। बॉलेगन और क्रिस्टियन पुलिसिच के दो गोल अमान्य भी किए गए थे। दोनों गोल ऑफसाइड करार दिए गए। बोस्निया के गोलकीपर मैट फ्रिज ने कई अच्छे बचाव भी किए थे। ऐसे में 1-0 की बढ़त सुरक्षित नहीं लग रही थी। कोच मॉरिसियो पोचेटिनो की टीम ने अपने घरेलू दर्शकों के बीच लगातार हमले बोले। मैकेनी और टिलमैन ने हमलों को पैनी धार दी। किसी यूरोपियन टीम के खिलाफ यह अमेरिका की 10 हार के बाद पहली जीत है। अमेरिका ने 2002 के ग्रुप चरण में पुर्तगाल को हराया था। उसके बाद विश्व कप के 13 मैचों से यूरोपियन टीम के खिलाफ उसे जीत नहीं मिली थी। इस मुकाबले में विजय के बावजूद अमेरिका को मैच में एक झटका भी लगा, जब उसके स्टार बॉलेगन को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी तारिक मोगेरमोविच को टैकल करते समय हुए फाउल के लिए रेफरी ने रेड कार्ड दे दिया। अब अमेरिका की टक्कर बेल्जियम से होनी है। ऐसे में 64वें मिनट में मिला रेड कार्ड अमेरिका को अगले मैच में भारी पड़ सकता है। ये वही बॉलेगन हैं जिन्होंने पराग्वे के खिलाफ 2 गोल किए थे। लगभग 26 मिनट अमेरिका को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने के बावजूद भी अमेरिका ने बढ़त मजबूत करने के प्रयास जारी रखे और बोस्निया की बराबरी के प्रयासों को भी टाला। 82वें मिनट में अमेरिका ने जीत सुनिश्चित कर ली, जब टिलमैन ने फ्री किक ली और गेंद लहराती हुई गोल पोस्ट के जाल में जा टकराई।
4: It is Tillman and it's in.
3: A bit, not a lot. To see the man looking to get down to his right hand team. How to deal with going a man down and getting through to the next round.
0: 2-0 की बढ़त के बाद मेजबान दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अमेरिका की ये विश्व कप के नॉकआउट में दूसरी जीत है। इससे पहले 2002 में मेक्सिको को हराया था। बोस्निया के लिए विश्व कप यादगार रहा, जिसे अपने दूसरे विश्व कप में पहली बार नॉकआउट में प्रवेश किया, कतर को हराया और कनाडा से ड्रॉ खेला। बात इंग्लैंड और डीआर कांगो के मैच की करें तो इंग्लैंड के लिए कप्तान हैरी केन सुपरस्टार हैं और अपने इसी रुतबे को वो कायम रखे हैं। हैरी केन ने डीआर कांगो के खिलाफ 2-1 की जीत में टीम के दोनों गोल किए। इंग्लैंड ने राउंड ऑफ 32 की इस जीत के बाद राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 75वें मिनट से पहले तो एक गोल से पिछड़ने के समय टीम के खिलाड़ियों का दम फूलता सा नजर आ रहा था। मैच की शुरुआत में ही कांगो के ब्रायन सिबेंगा ने काउंटर अटैक पर 7वें मिनट में गोल कर इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया था। कप्तान चांसिल ने गोल करने में असिस्ट किया था। गोल करने के बाद सिपेंगा ने खुशी में कलाबाजी लगाकर कैमरून के रोजर मिल्ला का जश्न यादों में ताजा कर दिया। 1990 के विश्व कप में कैमरून के रोजर मिल्ला गोल करने के बाद कॉर्नर किक के पास जाकर डांस करते थे और इस विश्व कप में सिपेंगा ने समरसेट लगाकर अपनी खुशी का बेहतरीन अंदाज में इजहार किया। दरअसल इस विश्व कप में अफ्रीकी टीमें अच्छी छाप छोड़ रही हैं। कांगो की टीम हार गई, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों को दिल उसने अपने मजबूत रक्षण से जरूर जीते होंगे। उनके गोलकीपर लियोनल मपासी ने पहले हाफ में कई बचाव कर इंग्लैंड को बराबरी से रोका। ये तो इंग्लैंड के पास हैरिकेन जैसे खिलाड़ी हैं जो दबाव के बीच भी निखरने का हुनर जानते हैं। बेशक जूड बेलिंगम और मार्क्स रशफोर्ड ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत का सहरा तो हैरिकेन के सिर ही बंधा। 75वें मिनट में हैरिकेन ने बराबरी दिलाई जब सब्स्टिट्यूट एंथोनी गॉर्डन ने बाएं ओर से शानदार क्रॉस फेंका और केन ने दमदार हेडर से गोल कर दिया।
5: They needed enough power to get beyond the goalkeeper.
0: बराबरी के बाद तो इंग्लैंड की टीम में जैसे नई ऊर्जा भर गई। टीम ने दोनों फ्लैंकों से लगातार दबाव बनाए रखा और 86वें मिनट में पेनल्टी बॉक्स के ठीक बाहर हैरी केन को गेंद मिली और उन्होंने एक टच में दाएं पांव से जोरदार शॉट लगाकर दमदार गोल कर दिया।
5: हैरी केन, हिज केन, वाओ, वाओ, वाओ, ऑन द फील्ड, रैप्स हिज हिप्स अराउंड हिम. Strikes it with venom. And that is one of the best goals and one of the most important goals.
0: हैरी केन वो नाम है जो खेल जगत में इंग्लैंड का मान बढ़ाता रहा है। 50-60 के दशक में ब्रिटिश एथलीट हैरी केन रहे हैं, तब तो इस स्टार फुटबॉलर हैरी केन का जन्म भी नहीं हुआ था।
6: फुटबॉलर हैरी केन के लिए
0: एथलीट हैरी केन प्रेरणा का स्रोत रहे होंगे। इंग्लैंड की टक्कर अब सेमीफाइनल मेक्सिको से होगी। इंग्लैंड के दर्शक बेहद उत्साहित होंगे जिन्होंने कांगो के खिलाफ मैच से पहले प्री क्वार्टर का टिकट बुक करा लिया था, वरना एक समय तो कांगो ने उलटफेर करने के इरादे दर्शा दिए थे। टीआर कांगो तीसरे स्थान की शीर्ष 8 टीमों में शामिल थी जिसने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका, उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। हाँ, कोलंबिया के खिलाफ उन्हें हार जरूर मिली थी। कांगो इस विश्व कप से बाहर हो गई, लेकिन अभियान समाप्त होने से पहले उसने कई यादगार पहलू बटोरे। जी हाँ, ये तो बात थी फीफा विश्व कप की, जहाँ कल जो मुकाबले खेले गए, जहाँ अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से, इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से और बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से पराजित किया। और मुकाबले तो आज भी खेले जाने हैं प्रेरणा, और मुकाबले फिर सितारों की जंग देखने को मिलेगी जब पुर्तगाल और क्रोशिया आमने सामने होंगे। एक तरफ CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें गोल मशीन के नाम से जाना जाता है, दूसरी तरफ दुनिया के प्रख्यात मिडफील्डर लुका मोद्रिच। दोनों कप्तानों और दोनों सितारों की एक ये दिलचस्प कश्मकश होगी इस मुकाबले में। इसके अलावा ऑस्ट्रिया स्पेन का भी मुकाबला है और स्विट्जरलैंड भी उतरेगी। तो क्या है इस जो आने वाले मुकाबले हैं, इनके बारे में क्या बताना चाहेंगी?
7: फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में अब मुकाबले और भी रोमांचक होते जा रहे हैं। आज देर रात और कल सुबह होने वाले 3 अहम मुकाबलों की चर्चा कर लेते हैं, जिनमें स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, पुर्तगाल की टक्कर क्रोशिया से और स्विट्जरलैंड का मुकाबला अल्जीरिया से होगा। तीनों टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। सबसे पहले नजर रहेगी स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर, जो भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। स्पेन ग्रुप एच में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा है। टीम ने सऊदी अरब को 4-0 और उरुग्वे को 1-0 से हराया, जबकि कार्पो वर्डे के खिलाफ मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप जे में 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ अगले दौर में जगह बना ली है। टीम ने जॉर्डन को 3-1 से हराया, अर्जेंटीना से 0-2 से हार झेली और अल्जीरिया के साथ 3-3 का रोमांचक ड्रॉ खेला। दोनों के बीच अब तक 16 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें स्पेन ने 9, ऑस्ट्रिया ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 3 मैच ड्रॉ रहे। विश्व कप में ये दोनों की दूसरी भिड़ंत होगी। पिछली बार 1978 के विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने स्पेन को 2-1 से हराया था। स्पेन की नजर युवा स्टार लामिन यामाल पर होगी, जबकि ऑस्ट्रिया को कप्तान मार्सेल साबिजर से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। इसके बाद भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 पर टोरंटो में पुर्तगाल और क्रोशिया आमने सामने होंगी। विश्व कप इतिहास में दोनों देशों की ये पहली भिड़ंत होगी। हालांकि दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 10 मुकाबलों में पुर्तगाल का दबदबा रहा है। पुर्तगाल ने 7 मैच जीते हैं, जबकि क्रोशिया को केवल 1 ही जीत मिली और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। पुर्तगाल ग्रुप के में अपराजित रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा। टीम ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, जबकि कांगो डीआर और कोलंबिया के खिलाफ मुकाबले ड्रॉ रहे। दूसरी ओर क्रोशिया ने शुरुआती हार के बाद शानदार वापसी करते हुए पनामा और घाना को हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। इस मुकाबले में सबकी नजरें पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेंगी, जिन्होंने ग्रुप चरण में 2 गोल किए हैं। वहीं क्रोशिया की उम्मीदें अनुभवी कप्तान लुका मॉड्रिच के प्रदर्शन पर टिकी होंगी। दिन का तीसरा मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 पर वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच खेला जाएगा। स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में 2 जीते और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम ने बोनसेनिया एंड हर्जेगोविना को 4-1 और मेजबान कनाडा को 2-1 से हराया, जबकि कतर के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। वहीं अल्जीरिया ने 1 जीत 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ नॉकआउट में जगह बनाई। टीम को पहले मुकाबले में हार मिली, लेकिन उसके बाद जॉर्डन को हराया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-3 की बराबरी खेलकर अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया। दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं और दोनों में स्विट्जरलैंड को जीत मिली है। विश्व कप में ये उनकी पहली भिड़ंत होगी। स्विट्जरलैंड की उम्मीदें इस विश्व कप में 3 गोल कर चुके युवा फॉरवर्ड जोहान मंजाबी पर रहेंगी, जबकि अल्जीरिया को अनुभवी विंगर रियाद महरेस से एक और शानदार प्रदर्शन की आस होगी। ऐसे में नॉकआउट चरण की ये 3 मुकाबले बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है, जहां एक छोटी सी गलती किसी भी टीम के विश्व कप अभियान का अंत कर सकती है।
0: फुटबॉल के मैदान से अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर और बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की जो T20 सीरीज है उसका कल पहला मुकाबला खेला गया। हालांकि बारिश के कारण ये मुकाबला अधूरा ही रद्द हो गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने तो खुलकर हाथ दिखा ही दिए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने को उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 189 रन बनाकर मेजबान टीम को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई और मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने 68 और अभिषेक ने 59 रन का योगदान दिया। भारतीय टीम ने 2 विकेट महज 6 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद अभिषेक और कप्तान अय्यर ने 82 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला। अभिषेक ने 24 गेंदों की पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाकर अपना स्वाभाविक अंदाज पेश किया। बाद में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 21 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाए। और इंग्लैंड के लिए साकिब महमूद ने 3 विकेट लिए, सैम और आदिल को 1-1 विकेट लिया। बात T20 क्रिकेट की ही करें तो ईशान किशन दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पछाड़ा है। ईशान के 876 रेटिंग अंक हो गए हैं। अभिषेक 7 अंक पीछे इसके बाद दूसरे स्थान पर हैं। विराट, सूर्य कुमार और अभिषेक के बाद ईशान T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले 4थे भारतीय हैं। और प्रेरणा क्यों ना बात ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप की जाए, जहां दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच।
7: T20 विश्व कप 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पहला फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया पहले ही तय हो चुका है और अब सबकी निगाहें दूसरे सेमीफाइनल पर हैं, जहां आज मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान पर आमने सामने होंगी। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला रात 11 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का होगा। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो इंग्लैंड अब तक सबसे संतुलित और प्रभावशाली टीम के रूप में सामने आई है। मेजबान टीम ने ग्रुप चरण के सभी 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पूरे टूर्नामेंट में अभी तक उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी रही है। सलामी बल्लेबाज डैनी व्हाइटहॉर्स ने शानदार फॉर्म में रहते हुए 5 मैचों में 282 रन बनाए हैं। उनका औसत 94 का रहा है और स्ट्राइक रेट 153 से अधिक है। इस दौरान उन्होंने नाबाद 105 रन की बेहतरीन पारी भी खेली है। गेंदबाजी में दुनिया की शीर्ष स्पिनरों में शामिल सोफी एक्लेस्टन लगातार प्रभाव छोड़ रही हैं। उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं और उनकी इकोनमी मात्र 5.9 रही है। वहीं कप्तान नेट साइवरब्रंट की चोट से वापसी ने इंग्लैंड को और मजबूत बना दिया है। उनके अनुभव और ऑलराउंड क्षमता से टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। दूसरी ओर है दक्षिण अफ्रीका की टीम। उन्होंने भी शानदार वापसी करते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआती हार के बाद टीम ने पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के लिए इस विश्व कप में ताजमिन ब्रिस बेहतरीन लय में नजर आई। उन्होंने केवल 3 पारियों में 174 रन बनाए, जिसमें नाबाद 114 रनों की शानदार पारी भी शामिल है। वहीं अनुभवी ऑलराउंडर मारिजान कैप एक बार फिर टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगी। भारत के खिलाफ

0: उन्होंने नाबाद 81 रन बनाने के साथ 2 विकेट भी हासिल किए थे। पूरे टूर्नामेंट में कैप ने 7 विकेट लिए हैं और बल्ले तथा गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता वो रखती हैं। गेंदबाजी में उनके साथ अनुभवी तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल, आयाबोंगा खाका और बाएं हाथ की स्पिनर नोंगकोलुलेकु मलाबा की भूमिका भी बेहद अहम रहेगी। वहीं कप्तान लॉरा वॉलवर्ट से भी बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड पर नजर डाले तो आंकड़ा इंग्लैंड के पक्ष में दिखाई देता है। अब तक दोनों टीमों के बीच 28 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 23 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को केवल 4 मुकाबलों में सफलता मिली है। एक मैच बेनतीजा रहा। हालांकि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पुराने रिकॉर्ड ज्यादा मायने नहीं रखते, खासकर तब जब दक्षिण अफ्रीका लगातार तीसरी बार विश्व कप के अंतिम चरण तक पहुंची है और बड़े मुकाबलों का अनुभव भी रखती है। पिच की बात करें तो ओवल की विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। मैदान की बाउंड्री भी अपेक्षाकृत छोटी है, जिससे बड़े स्कोर बनाने की संभावना रहती है। हालांकि इस वर्ष यहां खेले गए महिला T20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को सफलता मिली है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेजबान इंग्लैंड अपनी अजय लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में पहुंचता है, या फिर दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर बड़े मंच पर उलटफेर करते हुए लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में अपनी जगह पक्की करता है। जो भी टीम आज जीत हासिल करेगी उसका सामना 5 जुलाई को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया से होगा, जहां महिला T20 विश्व कप 2024 का मिलेगा हमें नया चैंपियन।
1: बात क्रिकेट की जारी रखते हैं और बात करते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग की, जिसका बीती रात कल ऑक्शन हुआ और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी खास तौर पर वहां मौजूद थे। किस खिलाड़ी को कितना तवज्जो मिली, किसको अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला, ये सब इस रिपोर्ट में।
2: दिल्ली प्रीमियर लीग T20 सीजन 3 के पुरुष तथा महिला वर्ग की नीलामी नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। सभी 8 फ्रेंचाइजियों ने अपने अपने स्क्वाड को अंतिम रूप दे दिया है और अब सभी की निगाहें आगामी सीजन पर टिकी हैं। DDCA के सचिव अशोक शर्मा बता रहे हैं इस बार का ऑक्शन कैसा रहा।
3: देखिए, आपने पूरा जब से ऑक्शन शुरू हुआ है आप उस दृश्य को देखते आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पिछली बार जीत की गई थी 39, इस बार अपने टीम में कहां और किस वजह से और क्यों इतनी बोली गई है, ये फ्रेंचाइजी अपने नोट करके लाई थी कि कहां पर इनको यूज करना और किस प्लेयर को कहां तक लेना है, क्योंकि सबका पॉकेट फिक्स था। उतने ही पॉकेट में बेस्ट टीम बनानी है, रिटेनरशिप का इनको फायदा मिला क्योंकि तकरीबन 9 से 10 लड़के इन्होंने ऑलरेडी पहले रिटेन कर लिए हैं जो टीम का मेन हिस्सा है।
2: इस बार नीलामी के सबसे बड़े स्टार रहे तेजस्वी दहिया, जिन्हें साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने 40 लाख रुपए में राइट टू मैच यानी RTM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ बनाए रखा। वे इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। ये हैं साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स टीम के कोच सनदीप सिंह, जो बता रहे हैं तेजस्वी इतना खास क्यों है।
4: देखिए, पहले तो चीज थी कि जैसे हमें कुछ प्लेयर रिटेन्स कर रहे थे, तो हमने 7 प्लेयर अच्छे रिटेन्स किए, ABC और मार्केम ने आयुष बडोनी को रखा। तेजस्वी दहिया एक ऐसा खिलाड़ी था कि जो कि टॉक ऑफ टाउन बन चुका था, सारी फ्रेंचाइजीज को था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी दहिया हमारी टीम में आए, बट हमने RTM यूज किया 40 लाख रुपए का ऊपर, क्योंकि 2 साल से जिस खिलाड़ी पे आप बेट कर रहे हैं सबने तैयार किया, इतना बड़ा प्लेयर बनाया, KKR में वो सिलेक्ट हुए, तो हमें वो प्लेयर चाहिए था और वो प्लेयर हमारे पास वापस आ गया, तो काफी हद तक हमें रिलीफ मिला। अच्छे ओपनर्स हमें मिल गए, स्पिनर्स बहुत क्वालिटी मिले हमें जो कि दिल्ली में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो इन प्लेयर्स के लिए मिल चुका है कि जहां पे आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं IPL स्काउट्स हमेशा देखने आते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप IPL के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। जैसे लास्ट ईयर दिव्येश राठी भी खोए, वो हमारे पास थे, प्रिंस यादव खेले, तेजस्वी DSL खेले, प्रियांश आर्या पहले हमारे पास थे, वो पंजाब टीम्स के पास गए, तो काफी यहां से प्लेयर्स हैं, 8 से 9 प्लेयर जो कि IPL के लिए जा चुके हैं।
5: 40 लाख का दाव लगाया है, क्या लग रहा है सही हुआ है?
4: देखिए, अगर ऑक्शन अमाउंट बढ़ जाती तो शायद उससे भी ज्यादा जाते हम, क्योंकि वो प्लेयर उस अमाउंट का है।
2: दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हिम्मत सिंह, जिन्हें नई दिल्ली टाइगर्स ने RTM के जरिए 38 लाख रुपए में हासिल किया। वहीं अनुज रावत 27 लाख रुपए में पुरानी दिल्ली 6 के साथ जुड़े। सार्थक रंजन को 17 लाख रुपए में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने RTM के जरिए अपनी टीम में बरकरार रखा। नई दिल्ली टाइगर्स हिम्मत सिंह को अपनी टीम में शामिल कर कितना संतुष्ट है, टीम से जुड़े कोच राजकुमार शर्मा इस बारे में बताते हैं।
6: बहुत अच्छी टीमें बनी हैं और सभी ने अपने जो चॉइस के प्लेयर्स थे सबने लिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये DPL 2 से भी बड़ा होने वाला है, DPL 3, और शानदार परफॉर्मेंस आएगी यहाँ के प्लेयर्स की और वो आगे जाकर IPL और फिर उसके बाद इंडिया के लिए खेलेंगे।
5: नई दिल्ली टाइगर्स कैसी बनी है, कितना संतुष्ट?
6: पूरी तरह सेटिस्फाइड है हम लोग।

0: प्लेयर्स हमें चाहिए थे हमने वो लिए हैं। अब 100% तो नहीं मिल पाते क्योंकि बिडिंग होती है और भी कुछ लोग जाते हैं उन प्लेयर्स के लिए, लेकिन काफी हद तक हम सेटिस्फाइड हैं। 90% मैं कहूंगा हमें जो प्लेयर्स चाहिए थे वो मिले हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट।
1: आपको पता है DPL के बारे में, इसकी जो इसका मुकाम है इसको कैसे देखते हैं, दिल्ली वालों के लिए कितना फायदेमंद?
0: देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं तब एपेक्स में था और मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि शुरू हो DPL, मतलब मैंने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था कि किसी भी तरह ये DPL जरूर चालू होना चाहिए, एंड थैंक्स टू मिस्टर आवर प्रेसिडेंट की उन्होंने ये शुरू किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसका रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, हमारे कितने प्लेयर IPL में चले गए और इंडिया ए में खेल रहे हैं और इंडिया नॉक कर रहे हैं।
2: पुरानी दिल्ली 6 टीम के बारे में बता रहे हैं टीम के कोच विजय दहिया।
3: अगर मैं अपनी टीम की तरफ नजर डालता हूँ तो एक ऐसी टीम बनी है जहाँ पर युवा खिलाड़ी नजर आते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नजर आते हैं, आपके पास बहुत सारे विकल्प नजर आते हैं, क्योंकि जब आप इस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए, तो वो सब नजर आता है इस टीम की।
2: मार्की राउंड में कुलदीप यादव, सुरेश शर्मा, नवदीप सैनी और सिमरजीत सिंह अपनी अपनी टीमों के साथ बेस प्राइज 10 लाख रुपए में जुड़े। अब सभी 8 टीमों ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा और उभरती प्रतिभाओं का शानदार मिश्रण तैयार कर लिया है। सेंट्रल दिल्ली किंग्स की कमान कुलदीप यादव और यश धुल जैसे खिलाड़ियों पर होगी, जबकि ईस्ट दिल्ली राइडर्स के पास मयंक यादव और सिमरजीत सिंह जैसे बड़े नाम हैं। ये हैं ईस्ट दिल्ली राइडर्स के मैनेजर रविंदर सिंह बता रहे हैं जो खिलाड़ी उन्होंने ऑक्शन में लिए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं।
4: बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं, जो हम चाहते थे लगभग हमने ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर लिया, एक आध रह गया, लेकिन क्योंकि ऑक्शन है आप पूरी तरह से अपने मनपसंद तो नहीं ले सकते, लेकिन हम जो था हमारा 90% से ऊपर हम जो सर्टिफाइड है।
1: टीम आपने बहुत जल्दी पूरी कर ली थी ऑक्शन के बीच में, क्या आपने जो जो सोचा था कर लिया था?
4: हमने पहले ही शॉर्टलिस्ट करके लड़के बना रखे थे, लड़के भी देखे थे और उसी उन्हीं पे काम किया हमने, जहाँ पे एक आधम चीज रह गई बस वो रह गई, बाकी हमने सब पहले नाम सब शॉर्ट कर 2-3 दिन से हम लोग मीटिंग करके पहले यही कर रहे थे सर।
1: जब एक ऑक्शन में आते हैं एक लिस्ट बनाते होंगे किन किन खिलाड़ियों को लेना है, उस पे अमाउंट भी कुछ सेट करते हैं, यहाँ तक जाएंगे कैसे बताएं?
4: सब कुछ देखिए, अब 8-7 जो लोग पहले हम रिटेन करते हैं हम देख लेते हैं कि उनमें हमारा कितना अमाउंट खर्च हो चुका है और फिर मार्की प्लेयर और 8 कैटेगरी देखते हैं कि किस प्लेयर की क्या वर्थ है, उसको हम कितने तक ले सकते हैं और क्या वो हमारे को कितना काम आ सकता है, तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। हमने पूरा लगा रखा था कि इस ऐसे हमने सिमरजीत के लिए लगा रखा था कि प्लेयर है हमें अगर ये पहले मिल जाए हमें 30 लाख तक मिल जाएगा हमें चल जाएगा, लेकिन हमें 10 लाख का मिल गया तो हमें उसमें बहुत फर्क पड़ गया।
2: वही वेस्ट दिल्ली लायंस में नीतीश राणा, सुरेश शर्मा, साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स में आयुष बदौनी और तेजस्वी दहिया, वही पुरानी दिल्ली 6 के लिए अनुज रावत, दिग्वेश राठी और ललित यादव आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले साल की चैंपियन वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नीतीश राणा अपनी टीम के बारे में कहते हैं।
5: सर मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, जो चीजें कंट्रोल में है वो कंट्रोल करने को देखेंगे, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हाँ एक तरीके का गेम खेलने को देखेंगे जो कि हमने लास्ट ईयर भी खेला है। और मैं काफी बार ये चीज बोल चुका हूँ कि इंडिविजुअली हम बहुत अच्छे हैं सारे, सभी शायद ऑप्शन में पिक हुए हैं, बट एज ए कलेक्टिव एज ए टीम हम कैसे खेलते हैं वो बहुत मैटर करता है इस टूर्नामेंट।
2: इसी बीच महिला वर्ग की चारों टीमों साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, सेंट्रल दिल्ली क्वींस और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई। मिलते हैं सेंट्रल दिल्ली क्वींस की मार्की खिलाड़ी सोनी यादव से, जो बता रही हैं पिछली बार हम फाइनल हारे थे लेकिन इस बार चैंपियन बनेंगे।
6: जैसे कि जो हम होमवर्क करके आए थे ऑलमोस्ट वो हमने एग्जीक्यूट किया है और जिस प्लेयर्स के लिए हमने होमवर्क किया था वो ऑलमोस्ट हमारा डन हुआ है, तो आने वाला सीजन जो लास्ट ईयर थोड़ा सा हम लैक कर गए थे, फाइनल हारे थे, तो मे बी नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है होपफुली हम ट्रॉफी उठाएं। और इस बार हमारी टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, यंग टैलेंट है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो होपफुली बेस्ट सीजन रहेगा ये सेंट्रल दिल्ली।
1: जो आपकी टीम बनी हुई जो खिलाड़ी है पूरी तरह संतुष्ट है या लग रहा कुछ और होना चाहिए?
6: नहीं सर, ऑलमोस्ट मैं 99.9% कहूंगी जिन प्लेयर्स के लिए हमने होमवर्क किया था वो ऑलमोस्ट डन हुआ है, जिन प्लेयर्स की स्क्वाड में रिक्वायरमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट डन हुई है, तो आई एम हैप्पी एंड प्लेयर्स भी शायद हैप्पी होंगे।
7: और अब बात कर लेते हैं विंबलडन 2026 की। महिला एकल में विश्व नंबर 1 आर्याना सेबुलेंका ने पहला सेट गंवाने के बाद दमदार वापसी करते हुए मार्क टेनी कैसलर को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। तीसरे दिन का सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब पूर्व विंबलडन चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा ने 5वीं वारी और मौजूदा फ्रेंच ओपन चैंपियन मीरा एंड्रेवा को 4-6, 7-5, 6-4 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके अलावा कोको गॉफ ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत भी दर्ज की।
8: कनाडा ओपन बैडमिंटन की बात करें तो भारत के एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम और सतीश कुमार कर्णाकर ने जीत के साथ प्री क्वार्टर में प्रवेश कर लिया। महिला एकल में आकर्षि कश्यप तानिया हिमंत ने भी अगले दौर में प्रवेश किया है, जबकि अश्मिता चालिहा और देविका सिहाग को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय ऊंचीकूद के एथलीट सर्वेश अनिल कुशारे 10 जुलाई से होने वाली डायमंड लीग के मोनाको चरण में हिस्सा लेंगे। मुंबई में चल रही स्क्वाश पीएसए चैलेंजर टूर में भारत के वेलवन सीवी सेंथिल कुमार ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मिस्र के अब्दुल्ला हफीज को 39 मिनट 3-0 से पराजित किया। टेबल टेनिस की बात करें प्रेरणा,
7: तो WTT US मैच 2026 में भारत के लिए अच्छी खबर है। पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानु शाह की जोड़ी ने जापान के सोरा माचुम और शुनु केतामी को 3-1 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। तो आज के खेल खिलाड़ी में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर विश्व खेल पत्रकार दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे प्रेरणा शर्मा और सहयोगी नवीन कुमार शर्मा को दीजिए अनुमति।
8: नमस्कार।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
10: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
9: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
10: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
9: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी रामजी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
11: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defence and health that will make the partnership futuristic and limitless.
10: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
11: In her address, Prime Minister of Japan Sanai Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defence and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanai Takaichi in New Delhi this afternoon. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
12: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strengths. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We are selling high-quality, precision-engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
11: India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said a terrorist is a terrorist and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
13: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
11: Governor of Bihar, Lieutenant General retired Sayyed Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran tomorrow to attend the funeral ceremony of the late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, and some parts of Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
14: Welcome to Science Talk.
15: I am Professor Manoj Varghese, a science communicator and a dean, School of Journalism and Mass Communication at Singhania University. In recent years, media houses across the world have adapted artificial intelligence for various journalistic functions. Automated journalism systems generate financial reports, sports updates, and election results with remarkable speed and accuracy. Algorithms curate news feeds, recommend stories to audiences, and determine the visibility of content across digital platforms. At times, AI-driven systems are even involved in headline writing, translation, image selection, and even news presentation. While these practices enhance efficiency and scalability, they also blur the boundaries between human judgment and mission-driven decision-making. In such a context, the traditional understanding of science journalism as the objective reporting of facts appears increasingly inadequate. Facts alone do not automatically constitute truth. Truth in science communication involves interpretation, contextual understanding, ethical judgment, and responsibility towards society. When information is selectively highlighted, framed, or amplified by algorithm system, the meaning of truth becomes fragmented and contested. Science communicators in the age of artificial intelligence should be understood as curators of truth. In essence, the assumption is that while artificial intelligence can process information, it cannot assume moral responsibility. The preservation of truth in journalism or communication ultimately depends on human judgment, ethical reasoning, and accountability. Journalism as a social institution has historically played a crucial role in shaping public understanding, democratic participation, and collective consciousness. Across different historical phases, journalism has evolved in response to changes in technology, political structures, and societal needs. From the early days of print journalism to the emergence of broadcast media and later digital platforms, each transformation has redefined how news is produced, circulated, and interpreted. However, the contemporary phase marked by the rise of AI represents a shift that is qualitatively different from previous technological transitions. Artificial intelligence is not merely another tool added to the newsroom. It represents a system capable of analyzing data, generating content, predicting audience behavior, and influencing editorial decisions. India is one of the largest digital news markets in the world, characterized by a rapidly growing online audience, extensive use of social media, and increasing independence on mobile-based news consumption. Issues such as misinformation, fake news, sensationalism, political polarization, and declining public trust have raised serious concerns about the credibility and social responsibility of news media. In the digital environment, information circulates rapidly, often without verification or contextualization. Algorithm-driven platforms amplify content based on engagement metrics such as clicks, shares, and watch time, rather than
16: journalistic values such as accuracy, balance, and public interest. Artificial intelligence plays a complex role in this environment. On the one hand, AI systems are often perceived as neutral and objective due to their reliance on data and computational logic. On the other hand, scholars have demonstrated that algorithms are shaped by human design choices, institutional priorities, and underlying data biases. As a result, algorithmic decision-making can reproduce existing inequalities, reinforce dominant narratives, and marginalize alternative perspectives. Traditionally, science communicators functioned as gatekeepers who exercised editorial discretion in deciding what is to be communicated. Algorithmic. The integration of artificial intelligence into science journalism has introduced a fundamental shift in how news is produced, selected, framed, or distributed. While technological advancement has historically influenced journalism, the current phase is marked by the delegation of decision-making processes to algorithm system. We are

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां जापान समकक्षेण प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां मंत्रणां विहितवान्। उभाभ्यामपि देशाभ्याम आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, औषध, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु क्षेत्रेषु अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा समुत्तीर्णा। संयुक्तराष्ट्र महासभायां अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलंबित प्रस्तावः समर्थितः। जम्मू कश्मीरस्य भगवती नगर आधार शिविरात् तीर्थयात्रिणां प्रथमस्य दलस्य प्रस्थानेन सह श्री अमरनाथ यात्रा विधिवत् समारब्धा। दक्षिण पश्चिम प्रावृट्कालः अद्य समग्र दिल्ली क्षेत्रं सम्प्राप्तः तथा च अयम् उत्तर पश्चिम राज्यानां केषुचित् भागेषु अपि अग्रेसरति। अपि च फीफा विश्वचषके संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन 2000-तमात् परं प्रथमः नॉकआउट स्तरीय विजयः समंकितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतेन जापानेन चाद्य आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा, औषध रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु विभिन्न क्षेत्रेषु अनेके प्रमुख सन्धयः परस्परं विनिमयीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां स्वस्य जापान समकक्षया प्रधानमंत्रिणा साने ताकाइची इत्यनया सह वार्षिक शिखर स्तरीयां वार्तां साधितवान्। द्विपक्षीय वार्तानन्तरं संयुक्तं संवाददातृ सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी प्रावोचत् यत् वर्तमान समये पारस्परिक विश्वासः सम्पत्तिः वर्तते, सहैव भारत जापान सम्बन्धेन समयस्य प्रत्येका परीक्षा सोत्तीर्णा। तेन रेखांकितं यत् उभावपि देशौ विश्वस्य विशाल अर्थव्यवस्थासु अन्यतमौ स्तः।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् उभावपि देशौ आर्थिक सुरक्षायाः, ऊर्जा सुरक्षायाः च महत्वं सम्यक् जानीतः। तेन प्रोक्तं यत् प्राविधिक सहभागिता भारत जापान सहयोगस्य महत्वपूर्णः आधारस्तम्भः भविष्यति। एतमेव संकल्पं सफलीकर्तुं द्वाभ्यामपि देशाभ्यां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः क्षेत्रे एकं संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितम्।
1: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: प्रधानमन्त्रिणा विशेषेण घोषितं यत् अद्य भारत जापानयोः मध्ये प्रथम सह विकास परियोजनायै सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं संजातम्।
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया।

0: नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
1: जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने ताकाई चीत्येषा गत सायंकाले त्रिदिवसीय यात्रायाः कृते नवदिल्लीं सम्प्राप्ता। प्रधानमंत्री रूपेण ताकाईची महोदयायाः इयं प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत जापानयोः पारस्परिक सम्बन्धाः सर्वथा विशिष्टाः सन्ति तथा च द्वयोः देशयोः आर्थिक सहभागिता वैश्विकपटले साक्षात् साफल्यस्य आदर्शरूपम् अस्ति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां भारत जापान संयुक्त आर्थिक मञ्चं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् जापान देशस्य प्रविधि विशेषज्ञता निवेशश्च भारतस्य तीव्रगत्या सह मिलति, तदा समग्रं विश्वं लाभान्वितं भवति। उभाभ्यां पक्षाभ्यां स्वकीयः आर्थिक सम्बन्धः गतिशीलं गंभीरं च विधातुं संकल्पः कृतः। अत्रावसरे द्वाभ्यामपि देशाभ्याम् आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु भविष्योन्मुखाः सन्धयः विहिताः। वैश्विकार्थव्यवस्थायाः विषये कथयता प्रधानमन्त्रिणा रेखाङ्कितं यत् वर्तमानसमये समग्रं विश्वम् आपूर्तिशृङ्खलावरोधैः, व्यापारिक अनिश्चिततावशात् च ग्रस्तं वर्तते। अत्रांतरे भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था वर्तते। विगत वित्तीय वर्षे भारतस्य जीडीपी वृद्धिः 7.7% आसीत्। तेन विशेषेण प्रोक्तं यत् सर्वकारेण करप्रणाल्यां, सुशासने, व्यापार सुगमतायां च उत्तम परिष्काराणि कृतानि। स्वकीय सम्बोधने जापानस्य प्रधानमन्त्री साने ताकाईची इत्येषा ऊर्जा सुरक्षां प्रधानविषयं मन्वाना अवदत् यत् जापान देशः पावर एशिया इनिशिएटिव इत्यनेन माध्यमेन मुक्त पारदर्शी ऊर्जा व्यापारं सुदृढं कर्तुं कृतसंकल्पः अस्ति। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे उभाभ्यां प्रधानमन्त्रिभ्यां हरियाणा राज्यस्य खरखौदा स्थिते मारुति सुजुकी संस्थायाः चतुर्थस्य वाहन निर्माण संयंत्रस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनं कृतम्।
0: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्र महासभायाम् अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादं विरुध्य व्यापक अभिसमयस्य कृते भारतस्य कश्चन चिरलम्बित प्रस्तावः समर्थितः। संयुक्तराष्ट्रस्य वैश्विक आतंकवाद विरोधि रणनीतेः नवम समीक्षायां या च 44.1% मतैः अंगीकृता। तत्र सदस्य देशाः आदिष्टाः यत् ते विगत त्रिदशकेभ्यः भारतेन प्रस्तावितस्य अस्य अभिसमयस्य कृते अन्तिमरूपं प्रदातुं पूर्ण प्रयत्नान् विदध्युः। वार्षिकस्याः श्री अमरनाथ जी यात्रायाः कृते 22.8 million तीर्थयात्रिणां प्रथमसमूहं जम्मूनगरस्य भगवती नगर यात्रीनिवास आधारशिविरात् विस्तृत सुरक्षाव्यवस्थायां हरितध्वजं प्रदर्श्य उपराज्यपालेन मनोज सिंहावर्येण अद्य प्रेषितम्। देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः तीर्थयात्रिणः पवित्रयात्रायां भागग्रहणाय जम्मूनगरम् आगच्छन्तः सन्ति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् विकसित भारत रोजगार इत्यस्य तथा आजीविका मिशन इत्यस्य प्रत्याभूति वीबीजी रामजी अधिनियम 20-25 आजीविका सुनिश्चितताया, ग्रामीणाजीविकाया सुदृढ़ीकरणस्य तथा च देशस्य ग्रामाणां विकासस्य गतिं वर्धयितुं प्रमुखं पदक्षेपः अस्ति। अद्य नैऋत्य प्रावृट्कालः सम्पूर्णे दिल्ली नगरे, गुजरातस्य केषुचित् भागेषु, उत्तरप्रदेशस्य शेषभागेषु, मध्यप्रदेशस्य अधिकांशभागेषु, हरियाणा पंजाब प्रदेशयोः, राजस्थानस्य

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो कुसुम बहन, हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के। और आज गुरुवार का दिन है, और गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, जिसमें हम अपने भाइयों का मनोरंजन करते हैं उनकी पसंद के कलाकार के द्वारा।
1: बिल्कुल अतुल
0: तो
1: भाई,
0: लेकिन छोटी
1: और
0: छोटी जानकारियां भी हम
1: जी
0: उनके लिए लेकर के आते हैं,
1: चर्चा भी करेंगे, जानकारियां भी देंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो तब हमें लगता है जब हम बाहर निकलते हैं घर के, तो हमें वृक्षों के महत्व का पता लगता है कि अगर वृक्ष होते तो हम वृक्ष की छाँव में जाते, तब हमें उसका एहसास होता है, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है अतुल भाई। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि प्रकृति का अटल सत्य है। जब वर्षा की पहली बूंदें धरती को स्पर्श करती हैं, तब प्रकृति मानो नए जीवन का स्वागत करती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, मिट्टी में नमी बढ़ जाती है और वातावरण पौधों के विकास के लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु को वृक्षारोपण का सर्वोत्तम समय माना जाता है अतुल भाई।
0: बिल्कुल, देखिए हमारे उत्तर भारत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखिए मानसून दस्तक दे देता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है।
1: जी
0: कुसुम बहन, तो बरसात के मौसम में भाई हमारी भी कोशिश रहती है, और हम तो यही कहना चाहेंगे हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। और बरसात के मौसम में जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है अपनी जड़ें जो है पकड़ लेता है,
1: बिल्कुल,
0: और वो उसका जो फुटाव है वो भी अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि जो हम पेड़ लगाते हैं वो सूखता नहीं है। और कई बार देखा होगा आपने गर्मियों में, अगर आपने लगा दिया, धूप छिलका निकल रहा है तो पेड़ सूख जाता है,
1: तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पानी की समस्या भी होती है उस समय। और इस समय तो कहते हैं प्राकृतिक तौर पे वर्षा का जल होता है। हाँ, वर्षा ऋतु में लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले वर्षों में विशाल वृक्ष बनकर हजारों वृक्षों को शुद्ध वायु, छाया, फल, औषधियाँ, पर्यावरण संरक्षण का अमूल्य उपहार देता रहता है। इसीलिए वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है।
0: कहते नहीं है देखिए, वृक्ष लगाओ और जीवन को खुशहाल बनाओ।
1: बिल्कुल अतुल भाई, यदि आप जीवन में सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं, हम तो दान बहुत तरह के करते कहते हैं दान करने से पुण्य होगा, तो यदि आप जीवन में सबसे बड़ा दान करना चाहते हैं तो एक वृक्ष लगाइए, ये बिना किसी भेदभाव के वर्षों तक सभी को जीवन देता रहेगा।
0: बिल्कुल, तो भाई हम तो यही कहना चाहते हैं सभी श्रोताओं से कि भाई एक पेड़ आप अवश्य लगाएं।
1: बिल्कुल,
0: और भाई आप जैसा कि हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है कुसुम बहन, तो भाई हम भी तैयार हैं अपनी सभी बहन भाइयों के SMS लेकर के और उनकी पसंद के कलाकार को लेकर के। आज के हमारे कलाकार हैं मनोज चौहान, और उनके लिए SMS आ गए हैं। ये SMS हमारे पास में आया है पलारी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं नितेश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार, जिला मुरादाबाद गाँव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश कश्यप और इनका पूरा परिवार, जसपुर उत्तराखंड से हमें फरमाइश भेज रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार, बेहर खाल वाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार, हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश भेज रहे हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार।
1: जी हाँ अतुल भाई, मनोज चौहान को ही सुनना चाहा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नलवाकर और उनका पूरा परिवार, मलकापुर से नारायण इंगले और उनका संपूर्ण परिवार, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें ये SMS आया चंडीगढ़ सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, इन्होंने भी फरमाइश की है, वो सुनना चाहते हैं मनोज चौहान को। और ये SMS आया है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाल अकेला का, और ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का भी हमें मैसेज आया है।
0: कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामूरिया और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार, जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश भेज रहे हैं जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से, भेजने वाले हैं गगन सिंह गगनदीप।

0: थांदी और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है Chak 5 MD पतरोड़ा से, भेजने वाले हैं मंगल जनागल और इनका पूरा परिवार। गांव खुकरावली श्रीगंगानगर से फरमाइश भेजने विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार।
1: और ये SMS आया है राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा उनके समस्त परिवार का, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से। और हमें फरमाइश भेजी है मनोज चौहान को सुनना चाहते हैं, घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी और समस्त परिवार। साथ ही यह SMS आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब का, और साथ ही गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और समस्त डूडी परिवार का हमें SMS प्राप्त हुआ है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी और समस्त परिवार ने भी फरमाइश की है मनोज चौहान की।
0: सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से फरमाइश भेज रहे हैं पंजाब राम टेके और उनका पूरा परिवार। बक्सर बिहार से फरमाइश भेज रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी और उनका पूरा परिवार। डुमराव बिहार से भी हमारे पास में SMS आया भेजने वाले डॉक्टर W अंसारी और उनका पूरा परिवार। सारिमपुर बक्सर से फरमाइश भेज रहे हैं राज HD अंसारी और उनका पूरा परिवार। खेल बाजार पानीपत से फरमाइश भेज रहे हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भेजने वाले हैं पीयूष सिक्का और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है एकता कॉलोनी रोहतक से, भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार। भोला कॉलोनी गरौना से फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र कुमार जयजान और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर मनोज चौहान की आवाज़ में ये रागनी।

0: कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे मनोज चौहान की आवाज में, ये रागनी और किस्सा था पन्ना राय का।
1: जी हाँ अतुल भाई, आज 2 जुलाई है और आज शिमला समझौता दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन ही यानी 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ये समझौता युद्ध के बाद शांति, संवाद और आपसी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसके साथ ही एक और है आज, यानी आज 2 जुलाई है तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस भी है।
0: बिल्कुल, देखिए 2 जुलाई को ये मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों के कार्यों को मान्यता देता है कुछ तो बहनों, और उन्हें और अधिक कुशलता और पूर्ण समर्पण के भाव के साथ काम करते रहने के लिए भी प्रेरित करता है। तो ये तो रही भाई विश्व खेल दिवस पत्रकार दिवस के बारे में जानकारी। और हमारे पास में SMS भी काफ़ी आए हुए हैं, और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं सनोज, और इनके लिए ये SMS हमारे पास में है। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। मेरठ से हमें फरमाइश भेज रहे हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, और ये SMS हमें मिला है कलानौर से भेजने वाले हैं नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं शंकरलाल जायसवाल और इनका पूरा परिवार। दादरी गेट भिवानी से भी हमारे पास में SMS आया है जो सुनना चाहते हैं सनोज को ही, कृष्ण मेहरा और इनके पूरे परिवार का। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से SMS भेज रहे हैं ओम प्रकाश राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से SMS भेज रहे हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है भाई संदीप मक्कड़ और इनके पूरे परिवार का, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से।
1: अतुल भाई ये मैसेज आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ और समस्त परिवार का, ये भी सुनना चाहते हैं सनोज को। और गांव हांडी खेला जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा और समस्त परिवार का हमें SMS मिला है। इसके अलावा फरमाइश की है महिपाल श्योरण न्यूरू उत्कर्ष और दिव्यांश गांव चैना जिला भिवानी हरियाणा से, इन्होंने भी फरमाइश की है सनोज की सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता और समस्त परिवार की भी फरमाइश आई है सुनना चाहते हैं सनोज को। और ये SMS आया है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ और समस्त राठौड़ परिवार का। साथ ही गुलाम रोड हर गोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु और समस्त संधु परिवार का हमें मैसेज आया है जिन्होंने फरमाइश की है सनोज की।
0: गांव लोहगढ़ ठाकुर वाला से फरमाइश भेज रहे हैं स्वर्ण सिंह गिल और उनका पूरा परिवार। गांव गोविंदगढ़ मांझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राजू टूटेजा और इनका पूरा परिवार। पुरुषोत्तम कुमार शेख जफर हसन ने हमें फरमाइश भेज रही है गांव डंडी तहसील भद्रवा जिला डोडा जम्मू कश्मीर से, ये फरमाइश हमारे पास में आई है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भेजने वाले हैं सुरेश ग्रोवर और इनका पूरा परिवार। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। गाँव चोहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं धर्मेंद्र छीपा और इनका पूरा परिवार।
1: और ये SMS आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और समस्त परिवार का, इन्होंने भी फरमाइश भेजी है और सुनना चाहते हैं सनोज को। साथ ही ये फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ हम सदा हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू और पायल साहू का। इसके अलावा फरमाइश करी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का, सुनना चाहते हैं सनोज को।
0: सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर सनोज की आवाज में ये रागनी।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे सनोज की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था कृष्ण सुदामा का।
1: और अतुल भाई, स्वच्छता किसी भी समाज की प्रगति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आधार होती है। और स्वच्छ वातावरण न केवल बीमारियों को कम करता है बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत की। और अतुल भाई, इस चरण का लक्ष्य केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक गाँव को स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा मुक्त बनाना है।
0: बिल्कुल, देखिए, और स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य यही है कि स्वच्छ 2020 से 2025 तक संचालित किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण भारत में ODF+ की स्थिति बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन करना है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो रही जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ईसम सिंह और सचिन शर्मा, इनके लिए भी SMS आ गए हमारे पास में। कुसुम बहन, ये SMS हमें मिला है,
1: ग्राम पंचायत बटेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा और उनके समस्त परिवार का। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और समस्त परिवार का। GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडली पंजाब, मोहम्मद अनवर अंसारी और समस्त परिवार का। साथ ही हमें फरमाइश भेजी है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद और समस्त परिवार का। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है असम से हितेंद्र दास का, उन्होंने फरमाइश की है। और इनकी फरमाइश, एक और फरमाइश आई है कुगदा कुम्हाड़ी छत्तीसगढ़ से बलराम बया, दामनी बया और समस्त परिवार का।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और उनका पूरा परिवार। सादुल शहर से फरमाइश भेज रहे हैं राम कुमार रेवाड़ और इनका पूरा परिवार। MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। सचिन कुमार और ईसम सिंह को ही सुनना चाहा है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन और उनके पूरे परिवार ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं मिंटो टॉम्स और इनका पूरा परिवार।
1: जी हाँ, सचिन शर्मा और ईसम सिंह को ही सुनने की फरमाइश की है गांव मुरादनगर जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज और समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश है सोमनाथ कालिया और समस्त परिवार की। इसके अलावा हमें मैसेज आया नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामणि से अकरम हुसैन और समस्त परिवार का। एक और हमें SMS आया है नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से ही। और इसके अलावा पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से हमें फरमाइश की है अनिल मोहन, उषा मोहन और समस्त परिवार ने।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे ईसम सिंह और सचिन शर्मा की आवाज में ये रागनी, और किस्से हम महाभारत के वैराट पर्व से
1: बिल्कुल
0: ये रागनी अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम। अतुल भाई
1: जी, कुसुम बहन,
0: इसमें भी हम बातचीत सुनवाएंगे और योजना के बारे में भी जानकारी देंगे और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन भी होगा।
1: बिल्कुल, तो भाई हम एक बातचीत भी अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं कि बकरी पालन से जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो कुसुम बहन, लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। खेती के साथ साथ पशुपालन का हमेशा से रिश्ता रहा है, क्योंकि जब से खेती आपने शुरू की है और खेती बिना पशुओं के नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि अगर आपकी खेती में कभी छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो आपकी भरपाई पशुपालन से हो जाती है। तो पशुपालन को अगर हम रोजगार का जरिया बनाते हैं और उसमें विशेष तौर पे गाय भैंस को तो ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन जो भेड़ और बकरी, संख्या तो इनकी बहुत है लेकिन उतना इस पे जोर नहीं दिया गया, और अगर इसे रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व स्तर पे भी किस तरीके से किया जाए जिससे कि किसान का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और जो इससे जुड़े हमारे व्यवसायी हैं या जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी लाभ मिल सके। और इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एस के सिंह जी को, जो कि परियोजना निदेशक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सिंह साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि भेड़ और बकरी पालन, और इसको हमारे किसान भाई जो एक तो मध्यम या और निचले तबके के हैं वो लोग करते आए हैं, लेकिन इसको अगर बड़े स्तर पे ले जाना हो और देश नहीं विश्वव्यापी स्तर पे, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कैसे ले जाया जा सकता है?
3: अगर हमें खाद्य सुरक्षा पे ध्यान देना है तो पशु उत्पादों से जो खाद्य है आदमियों के लिए वो सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति, चाहे वो यूरोप में रहता हो, चाहे एशिया में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, चाहिए। अब आप अपने भारत देश की देखें
2: जी,
3: तो इसमें आप पाएंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा बकरियाँ होती हैं और अच्छी संख्या में भेड़े भी हैं
2: जी।
3: तो संभावनाएँ तो अपार हैं, केवल हमें क्या करना है कि आधुनिक युग में विज्ञान का, पशुपालन तकनीकियों का समावेश करते हुए किसानों तक इतना ज्ञान पहुंचा देना है कि वो सक्षम हो सकें भेड़ और बकरी का ज्यादा से ज्यादा संख्या में कम लागत में उत्पादन करना। और दूसरी सबसे बड़ी कि हमारा जो भौगोलिक परिवेश जो देश का है
2: जी,
3: जिसमें हमारा जो है जोत बहुत छोटी होती जा रही है। आप देखें कि जोत इतनी छोटी हो गई है कि ट्रैक्टर तो चलना मुश्किल हो जाता है आजकल तो, पूरा यूपी बिहार बंगाल इधर देखें तो
2: जी।
3: ऐसी स्थिति में भेड़ और बकरी जिसका वजन कम है, साइज कम है, उनको पालना बहुत ही अनुकूल होगा।
2: कम क्षेत्रफल में उनको रख भी सकते
3: हैं, रख सकते हैं, उनका फार्म खोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व में अलग अलग इस महाद्वीप में और देशों में कहीं बकरी के मांस का और दूध का बहुत मांग है, कहीं भेड़ की मांग है। उसको देखते हुए हमें अपने देश में बहुत बड़े स्तर पे भेड़ और बकरी का उत्पादन करना चाहिए, किसानों को आकर्षित करना चाहिए कि वो भेड़ और बकरी न केवल देश की खपत के लिए बल्कि वैश्विक खपत के लिए उत्पादन करें।
2: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि उत्पादन करना चाहिए, तो इसको अगर देश के स्तर पे बात करें तो इसका कैसे बढ़ाया जा सके?
3: देखिए, जब तक आप संगठित और व्यवसाय के रूप में नहीं लेंगे और सरकार इसको प्रमोट नहीं करेगी तब तक आएगा नहीं। मैं सरकार के प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ, तो सरकार पे बहुत ज्ञान है, बहुत तकनीकियाँ हैं, संस्थान हैं, योजनाएँ हैं प्रादेशिक लेवल की और देश के स्तर की, लेकिन उनको जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इस पशुपालन में आना चाहते हैं उन तक पहुंचा करके उनमें एक उत्साह पैदा करना होगा जिससे कि वो लगन लगा के काम करें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5-6 साल अगर 10 साल हम लोग मतलब देश के स्तर पे बच्चों को बेरोजगार लोगों को शिक्षा दें कि भेड़ बकरी पालन करके आप लाभ कमा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे जितने भी देश में हैं, और देश के भेड़ बकरी ऐसी है कि हर क्षेत्र में पाई जाती, राजस्थान की गर्मी से लेकर के और आप देखें कि
2: उत्तराखंड
3: लद्दाख ले में भी पाई जाती है, तो हर मौसम के लिए अनुकूल है। तो हमें जो है गांव के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, देश के लेवल पे किसानों को प्रोत्साहन दे करके उनका ज्ञान वर्धन करना चाहिए, उनकी क्षमता विकास की बात हम कर रहे हैं, तो उनको कुछ इतना लोन मिल जाए, इतना संसाधन मिल जाए जिससे कि 100-200-400 बकरियां या भेड़े वो पाल सके। तब क्या होगा कि अगर आपके एक गांव में 2-4 लोग भी ऐसे आते हैं जो कि बकरियां या भेड़े पाल करके लाभ कमाने लग गए, तो अपने आप एक प्रदर्शन फॉर्म की तरह काम करेगा और गांव के युवा लोग जो है आकर्षित होंगे, काम
2: भी करेंगे, उनके साथ भी जुड़ेंगे।
3: जी
2: ये तो रही देश स्तर की बात।
3: जी
2: जब हम किसान की बात करते हैं, क्योंकि किसान हमेशा देखो मेहनती तो होता है,
3: जी,
2: लेकिन हर व्यक्ति की एक धारणा रहती है कि जिधर थोड़ा आसान होता है उसी की तरफ वो लालायित होता है, और किसी भी कार्य करने के लिए उसमें जरूरत पड़ती है कि कठिन कार्य करने की, तो वो कैसे किसान इसको करे जिससे इसमें जितना वो पारंपरिक तरीके से करता है जो उसे लाभ मिलता है वो उसका एक साधारण लाभ होता है, लेकिन जब उसे वो व्यवसाय के स्तर पे करना चाहता है तब उसका लाभ अच्छा होता है।
3: एक जो है नेचुरल जिसे कहते हैं प्राकृतिक नियम है
2: जी,
3: कि जीव का जितना बड़ा आकार होगा उतना सक्षम होगा
2: जी,
3: और बीमारियां कम लगेंगे, मृत्यु कम है, जितना छोटा होगा कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी मरेंगे, ज्यादा संख्या में मरते हैं, तो वो एक नैसर्गिक नियम है ये। तो अगर आप पशुपालन में देखिए तो गाय भैंस की अपेक्षा भेड़ बकरी ज्यादा थोड़ा ससेप्टेबल है, मृत्यु दर ज्यादा होती है, बीमारियां ज्यादा लगती
2: जी।
3: तो यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि देश लेवल पे और यहाँ सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, समय पे वैक्सीन मिल जाए उनको, समय पे परजीवियों की रोकथाम के लिए, परजीवी बहुत लगते हैं, बाल है ना इनका भेड़ में बाल बकरी इसमें परजीवी किलने हैं जुए हैं बहुत लगते हैं, तो अब मैं बताऊं कि 2 चीजों का रोकथाम कर ले हम देश में तो आप पाएंगे 3 या 4 साल में संख्या भी दूनी होगी, उत्पादन भी दूना होगा।
2: तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे जो वैक्सीनेशन है उस पर ध्यान दिया जाए, उसके अलावा जो हमारी नस्लें हैं
3: जी,
2: क्योंकि बहुत सी जो हमारी पुरानी पारंपरिक नस्लें हैं तो उनमें उतना विकास नहीं हुआ है और नई नस्लें भी लाई गई हैं, तो उनको सुधार के भी कार्यक्रम चलाए जाएं, अगर नई नस्लों को किसान भाई पालें तो उससे ज्यादा उन्हें फायदा हो।
3: मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगा कि हमारे पास भेड़ की भी बकरियों की भी 40 से ज्यादा नस्लें हैं
2: जी,
3: नस्लों की कमी नहीं है, कमी क्या है, हमारे पास ऐसा संगठन नहीं है, ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें कि उन नस्लों के बढ़िया अच्छी अनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं की पहचान की जाए। लेकिन हमें आपको या किसी संगठन को यह नहीं पता है कि वो जानवर कहाँ है, जिस दिन ये ज्ञान हमें आ जाएगा उस दिन उनकी क्षमता भी हम उपयोग कर लेंगे, क्षमता अनुसार उनका उत्पादन होने। तो नस्ल सुधार में सबसे पहली चीज देश के स्तर पे और नस्ल के स्तर पे हमें ये कहनी चाहिए किसानों के पास एक से एक अच्छे जानवर है, बस क्या है कि हमारे पास एक ढांचागत संरचना नस्ल विकास का नहीं है, पूरे देश में नहीं है। तो किसी भी नस्ल का ढांचा या संगठन या सोसाइटी नहीं है जो उस नस्ल को देखे, तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें हर नस्ल का एक ऐसी सरकारी अधिकृत सोसाइटी बनानी होगी जो उस नस्ल की देखभाल करे।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे कि कोई भी युवा अगर अपने रोजगार के लिए भेड़ और बकरी पालन करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत?
3: बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि पहले तो आपको भेंट का भी संस्थान है भारत सरकार का, बकरी का भी है, एक जयपुर के पास है एक मथुरा में है। अगर शुरुआत करना चाहें तो वहां जाइए, देखिए, वैज्ञानिकों से बात

0: जहां तक नस्ल का चुनाव करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए पोल्ट्री में क्या है कि हैचरीज हैं, आप उनको कहिए कि भैया इस नस्ल की मुर्गी का 10,000 जो है बच्चे चूजे चाहिए, मिल जाएगा। बकरी में आप 10 मांगे कोई देने को तैयार नहीं, कोई संसाधन
1: मुश्किल है।
0: इसमें केवल कठिनाई कहां होगी, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करके किसानों के पास जाना होगा और जो ज्ञान जो उनको मिला है या अपने ज्ञान से अच्छे जानवरों का चयन करना होगा और वो जानवरों का चयन करके अपने पास लाएंगे। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक इनका जनरेशन इंटरवल जो है 2-2.5 साल का है, 2.5 साल के आसपास एक नस्ल बदल जाती है, तो आप पाएंगे कि 2-3 पीढ़ी है, मतलब 6 साल में आपके पास इतने बढ़िया नस्ल के जानवर होंगे, दुनिया आके देखेगी कि भैया ये जानवर। तो केवल दो चीजें किसानों को क्या करना है कि आपको एक नस्ल के लक्षण चाहिए, जैसे बर्बरी, बीटल, जमुनापारी, झकराना, ब्लैक बंगाल, जो भी है उसके आप देख लीजिए कि उसका स्टैंडर्ड्स क्या है, उस अनुसार जानवर लाइए। जहां तक मैं जानता हूं दोनों संस्थान 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, तो मैं जितने भी लोग इस व्यवसाय में घुसना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, निवेदन यह है कि आप उनकी वेबसाइट जाइए, बकरी अनुसंधान संस्थान की या भेड़ अनुसंधान संस्थान की, वहां पे उनके प्रोग्राम आते हैं प्रशिक्षण के, आप 10 दिन का या जितना भी हफ्ते भर का होता है उसमें भाग लीजिए। बहुत सक्षम वैज्ञानिक आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप जाएंगे तो थोड़ा सशंकित जाएंगे कि क्या मिलेगा, लेकिन जब आएंगे तो आप एक पूर्ण पशुपालक बन के आएंगे। तो किसान भाइयों, जिसको भी पालना है आप प्रशिक्षण लीजिए, और अगर संभव हो, क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज फार्म नहीं है, बहुत कम है, तो कुछ दिन आप जो है जो पारंपरिक किसान है, पुस्तैनी जिनका है, जनरेशन दर जनरेशन, उनसे उनके सानिध्य में रहिए, बात करिए, सीखिए, और ज्ञान कभी जाया नहीं जाता।
1: और अगर कोई शुरू करना ही चाहता है तो उसका सही समय क्या हो सकता है?
0: देखिए भेड़ और बकरियां बाल वाले जानवर हैं, साल में एक बार बच्चे देते हैं, 60% जानवर 2 बार देते हैं
1: जी।
0: तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, भेड़ हो या बकरी हो, जैसे ही प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होती है, उत्पादन वाली अवस्था को, कभी जाया नहीं जाती, वो या तो गाभिन होगी या बच्चे पिला रही होगी, कभी सूखी 1-2 महीने के लिए होती है
1: जी।
0: तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा उत्पादन में होती है, तो उनकी देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पहली बार, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास उसका ज्ञान हो।
1: और आजकल तो जैसे बात होती है कि मार्केटिंग की, जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट तो लगाया है, उसमें मेहनत मजदूरी और जो भी है लेबर कार सब कुछ लगा है, लेकिन उसकी भरपाई जब ही होगी जब आउटपुट निकलेगा
0: जी।
1: तो मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और क्या इसका सही तरीका है?
0: पहली बात यह है कि मार्केटिंग का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें
1: जी।
0: तो मार्केटिंग से पहले एक चीज है कि लागत कम से कम रखने की कोशिश करिए, वो आप तकनीकी ज्ञान आपके पास हो। अब मार्केटिंग की बात आती है तो ये दोनों मानसेतु हैं। तो क्या है कि भारत देश में लगभग 6 या 7 ऐसे त्योहार हैं
1: जी
0: जिसमें कि बकरी और भेड़ के मांस की मांग जिसे कहते हैं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1.5 गुना, मतलब आपको 30-40% दाम बढ़ जाता है। अच्छा जानवर है आपको मुंह मांगा कीमत मिलेगी, लेकिन सभी जानवर उनका मूल्य है ऐसे समय में उससे 1.5-2 गुना कीमत पे बिकते हैं बाजार में। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपको उस योग्य उस गुणवत्ता वाले जानवरों का उत्पादन करना पड़ेगा जो कि लोगों को आकर्षित करे। तो एक तो यह है कि स्थानीय मांग है, दूसरी बात यह है कि इन मांस के प्रति प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है देश की बढ़ती जा रही, तो वो आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो यह है कि प्रतिदिन आपको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाजार में आपके पास जानवर हो और न बिके, कुछ तो ऐसा है कि माल नहीं बिक रहा, लेकिन भेड़ वगैरह ऐसा है कि कभी हो ही नहीं सकता कि आपके न बिके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा बड़े किसान बनना चाहते हैं, संगठित होकर के आप देश का और पूरे विश्व के मार्केट को देखिए, एक्सपोर्ट करने वाले बहुत ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, हर जगह बैठे हैं
1: जी,
0: और वो इस ताक में रहते हैं, खुश रहते हैं कि अच्छा जानवर कब कितना मिलेगा। अगर आप 2-3 ट्रक अच्छे जानवर, एक उम्र के स्वस्थ जिसमें कि रोग नहीं हो, रोगी होगा जानवर बहुत था, हड्डी निकलेगी, मांस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, स्वस्थ जानवर हो, आप जो मांग मांगेंगे वो मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आज के दिन जो बकरी पालन दूध के लिए भी किया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध की भी मांग बहुत ज्यादा है और उसकी कीमत भी

0: बाजार में अच्छी
1: बहुत है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। दूध का बकरी का एक मैं जहां तक देख पाता हूँ, हमारे पास जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है बीटल है, जमुनापारी है, जखराना है, बर्बरी भी अच्छा दूध दे देती है, कुछ नस्लें हैं। मेरा अनुभव यह है कि केवल दूध के लिए व्यावसायिक तौर पे पालना थोड़ा सा लाभदायी नहीं होगा। आप दूध और मांस
0: दोनों के लिए
1: पालिए तो अच्छा हो जाता है। तो दूध के लिए यह है कि आप अगर एक दिन में 400-500 लीटर दूध उत्पादन कर लेते हैं तो फिर तो आप देश में मशहूर हो जाएंगे। बकरी का दूध जो है छोटे बच्चों में 2-3 महीने, माँ भी सर्विस पे जाते हैं, पिताजी भी सर्विस जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है, पाच्य माना जाता है। और लोग, मैं बताऊं, अच्छे अच्छे व्यवसायी खोजते हैं कि उनको जो है मुंह मांगे कीमत पे शुद्ध बकरी का दूध मिल जाए। आप वो मार्केट पकड़िए, आपको फायदा होगा। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है कि आपके पास कम से कम 200-250 लीटर बकरी का दूध आपके पास हो। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूध कलेक्शन, जैसे PCDF है, NDDB है, इस तरीके से बकरी के दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके प्रोसेसिंग करके बेचने के एक व्यवसाय वो भी हो सकता है आपका। आप बकरी मत पालिए लेकिन बकरी पालकों से दूध इकट्ठा करिए, उनको प्रोसेस करिए और सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए कि शुद्ध बकरी का हो
0: जी।
1: और आप देखिए कि आप फेमस हो जाएंगे, स्पेशली विशेषकर जब आप दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता के आसपास हो,
0: मेट्रो साइड,
1: हाँ मेट्रो साइड में हो, वहां पे बहुत इसकी मांग है।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत विस्तार से भेड़ और बकरी पालन के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाई पाल करके रोजगार के तौर पे इसे देख सकते हैं और अपना ही विकास नहीं, इसमें देश के विकास में भी भागीदार बन सकते
1: जी।
0: हैं। डॉक्टर एसके सिंह जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बकरी पालन छोटे किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय। डॉक्टर एसके सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक ICAR नई दिल्ली से शिवनंदन लाल की बातचीत।
3: बिल्कुल, देखिए बात बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमारे सभी किसान भाइयों को कि देखिए बकरी के पालन में और पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन के साथ साथ जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं
2: बिल्कुल,
3: तो दोहरा लाभ भी लेते हैं और दोहरा लाभ जब मिलता है जब हमारी मिट्टी अच्छा उत्पादन देती है।
2: बिल्कुल, और जो योजनाएं बताई गई हैं किसान भाई बहनों के लिए उसका लाभ लेते हैं।
3: बिल्कुल,
2: मुझे पता है अतुल भाई आप बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। ये एक योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि योजना है। इसमें किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की वैज्ञानिक जांच के आधार पर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है अतुल भाई, जिसमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है। इससे खेती की लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।
3: बिल्कुल, देखिए इससे क्या होता है कुसुम बहन, जब हमारे किसान भाई अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं या अपनी मिट्टी की जब जांच कराते हैं तो जांच कराने में उन्हें ये मालूम हो जाता है कि उनकी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो क्या होता है कि जब ये जांच के लिए उनकी मिट्टी लैब के अंदर जाती है तो जब वहाँ जांच होती है तो उसमें पता पड़ जाता है हमारे किसान भाई को कि मेरे जमीन के अंदर पोटाश की कमी हो गई या सल्फर की कमी हो गई या और किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है, तो उसी की मात्रा जो है हमारे किसान भाई फिर अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उनका उत्पादन जो है वो बढ़ता है।
2: बिल्कुल अतुल भाई, जैसे आपने बताया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, इन सब की जरूरत होती है और इसके अलावा अम्लीय क्षारीयता भी जो होती है उसमें एक अनुपात में होता है इन सब चीज़ों का, और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि और ऑर्गेनिक कार्बन है या नहीं है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरन, इतनी सारी जो 12 प्रमुख मानकों की जांच रिपोर्ट एक तैयार होती है।
3: बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते
2: बिल्कुल
3: हैं।
2: और ये तो हम अपने आप अंदाजा नहीं लगा सकते,
3: अंदाजा कहाँ, जांच के द्वारा ही हमें पता पड़ती है हमारे किसान भाइयों को सबको हमें भी। और देखिए हम तो यही कहेंगे कि अपने खेत की जब मिट्टी की जब आप जाँच कराएं तो कोशिश करें कुसुम बहन की भाई कम से कम जब आपका खेत पर जाएं तो कम से कम 8-10 गड्ढे आप अपने खेत के अंदर करें, कम से कम 6-7-8 इंच तक घेरे करें कम से कम, और अलग अलग गड्ढों की मिट्टी आप इकट्ठा करें और तब उसको इकट्ठे करके और उसको मिला करके तब एक सैंपल आप लेकर के अपने लैब के अंदर जाएं और अपनी मिट्टी की जो है आप अच्छी तरह से जाँच कराएं।
2: बिल्कुल अतुल भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करती है। योजना स्वस्थ धरा खेत हरा के लक्ष्य के साकार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका

0: निभा रही है, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा को मजबूत भी बना रही है।
1: बिल्कुल। और देखिए, एक जानकारी और देना चाहते हैं भाई, कल हमारे सभी किसान भाई फल, सब्जी और मिलेट्स लोक संगीत के साथ सुन सकेंगे। और कल देखिए, बातचीत के माध्यम से चारा फसलों जैसे चरी, बाजरा, ग्वार की बुआई और मानसून में हरे चारे का भंडारण किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी कल डॉक्टर समरपाल सिंह देंगे हमारे सभी किसान बहन भाइयों को। तो कल भाई आप अपना कार्यक्रम हमारा किसी जगह जरूर सुनें। और अब चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं उदल सिंह की आवाज़ में ये उपदेश।

0: तो कुसुम बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे उदल सिंह की आवाज़ में ये उपदेश, और इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम
0: राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में फिल्म मुगले आजम की एक कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जगजीत सिंह की इस कव्वाली की तरफ।

इसी गीत के साथ गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने

0: निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्त स्थिति की जांच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस समिति का गठन दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के अंतर्गत किया गया है। श्री सूद ने कहा कि ये समिति शिक्षा सत्र 2026-27 से 2028-29 तक की फीस तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावकों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे फीस तय करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अभिभावक हितैषी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
1: अब दिल्ली का कोई भी स्कूल बिना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस के लिए, बिना फी रेगुलेशन कमेटी बनाए कोई स्कूल फीस के बारे में निर्णय नहीं कर पाए।
0: दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के कामकाज और उनकी वित्त स्थिति की अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा गहन जांच की जाएगी। इस आदेश को महत्वपूर्ण बताते हुए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये दिल्ली के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय प्रत्येक बिजली उपभोक्ता और करदाता की जीत है। श्री सूद ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्त निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारियां की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।
2: बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रहीं और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है, इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने सीएजी ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई, हमने बहुत मजबूती से केस लड़ा और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। बहुत जल्द सीएजी का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा।
0: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। दिल्ली में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना प्रपत्र प्राप्त किया। दिल्ली कैंट के उपमंडल मजिस्ट्रेट और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी से भी गणना प्रपत्र प्राप्त किया। बूथ स्तर अधिकारियों ने आज एरिठाला, आरकेपुरम, मेहरौली और मंगोलपुरी सहित राजधानी के अन्य स्थानों पर घर घर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य किया। दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन के लिए वर्तमान मतदाताओं को पहले से छपे दो दो प्रपत्र वितरित करेंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भी भर सकते हैं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2026 आम नागरिकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई जनहितकारी नीति है। उन्होंने आज कहा कि नीति के अंतर्गत संबंधी लाभों के अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये, ई ऑटो पर 75,000 रुपये और कमर्शियल गुड्स कैरियर पर 1,50,000 रुपये की बचत संभव होगी। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति के अंतर्गत रोड टैक्स से मिलने वाली छूट केवल नीति की अवधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि

0: के पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। साथ ही वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग सभी पात्र मॉडलों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा। वाहन बुक करने से पहले नागरिक इस सूची की जांच अवश्य करें। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने हर नागरिक से हरित, स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लिए इस जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नागरिक greendrive.delhivanmahotsav.in पर पौधारोपण के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
2: इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का हर एक निवासी जो चाहता है ग्रीन दिल्ली वॉरियर बनना, उसमें जुड़ सकता है। इस पोर्टल पे वो अपने लिए स्लॉट बुक कर सकता है, जगह चुन सकता है कि किस समय वो पेड़ लगाना चाहता है, और हम सब लोग अपने लिए स्पेस बुक करा सकते हैं। और 11 तारीख से हमारे लिए वो बुकिंग ओपन होगी। हम जहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं वहाँ पेड़ लगा पाएंगे।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नेक्स्ट कोड क्रिएट एंड चेंज कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवोन्मेषकों को एक साझा मंच पर लाकर नागरिकों और शहरी चुनौतियों के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है।
2: 1 करोड़ इंजीनियरिंग माइंड जब इकट्ठे आए और 2.5 लाख लोग उसमें से रजिस्ट्रेशन करें और उसमें लगभग 5,000 इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा जाए और आज उसमें से 60 लोग सेलेक्ट करके इस फाइनल राउंड में यहाँ भेजा जाए, तो मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी इनोवेशन सच में काबिले तारीफ है। और यदि देश को आगे बढ़ना है तो उसकी ये जो युवा है, इसको आगे ला करके उनकी वेवलेंथ पे आकर के उनके माइंडसेट को पढ़ के उनके आइडियाज पे काम करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के सबसे पुराने जल शोधन केंद्र को अब आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1935 में स्थापित चंद्रावल जल शोधन केंद्र अब 10 करोड़ 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाला जल शोधन केंद्र बन रहा है, जिसमें ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन, ओजोनेशन और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। लगभग 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही इस परियोजना का 82% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 22 लाख नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित पेयजल का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को इस वर्ष सितंबर तक प्रारंभ करने का लक्ष्य तय किया गया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज आदर्श नगर वार्ड का निरीक्षण कर मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री खिरवार ने आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास नालों की गाद सफाई के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
3: डॉक्टरों को स्टाफ की कमी उन्होंने अपनी बात रखी है और यहाँ पे हल्की सी लापरवाहियां भी हैं। लापरवाही के लिए हम लोगों ने राउंड लेके जोर करने को कहा है डॉक्टरों को कि आगे से भविष्य में दिल्ली की जनता और यहाँ के लोकल पब्लिक के इलाजों में कोई कमी नहीं होनी। दवाई की मात्रा यहाँ पे पूरी पाई गई, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन काम की गति को और अच्छा करने के लिए जो डॉक्टर्स के सुझाव थे, जो माननीय विधायक जी के सुझाव थे, सुझाव के साथ स्वास्थ्य को और अच्छा करने की जो बात थी हम उसी माध्यम से यहाँ पे आए हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर

0: शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस दौरान 2 विदेशी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
1: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के जरिए रिसीव किया करते थे। 1 अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेज, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशन, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा गतिविधि को अंजाम देने के लिए। अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान के फरूखाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब के गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब केवल सिखों की नहीं बल्कि मानवता की सांझी धरोहर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह विरासत को नुकसान पहुंचाया जाना अत्यंत निंदनीय है।
2: गुरुद्वारा साहब की ये जो विरासत है ये केवल खाली सिखों की नहीं है, ये मानवता की विरासत है क्योंकि गुरुद्वारे में मानवता के भले की बात होती है, किसी धर्म की नहीं। मुझे बड़ा खेद है, पाकिस्तान में लाखों सिख पार्टीशन के बाद जो थे आज उनमें से केवल 8,000 सिख बचे हैं, बाकियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया और करते करते आज वो गुरुद्वारों पे भी हमले कर रहे हैं। जहां मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, वहां कहना चाहता हूं दुनिया भर को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
0: दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता और ट्रांस यमुनक क्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ है वो यूनेस्को के नियम का भी उल्लंघन है।
3: ये न केवल सिखों की भावनाओं को आहत और वहाँ की माइनोरिटीज चाहे सिखों हिंदुओं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो यूनेस्को है वो भी ये कहती है कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं और खास करके प्लेस ऑफ वर्शिप है, टेंपल है, जो 100 साल से अधिक समय की बिल्डिंग्स हैं उनको सुरक्षित रखना वहाँ की सरकार का जो है कार्य है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन है। तो निश्चित रूप से हम इसकी घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज ओमान से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि इन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, खोज की भावना और सीखने के प्रति उत्साह देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वालों को भी दिया जाता है। नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर किए जा सकते हैं। कोई भी नागरिक, विद्यालय, संस्था या संगठन अपने द्वारा योग्य समझे जाने वाले उम्मीदवारों को नामांकित कर सकता है। बच्चे भी स्वयं।
0: दिल्ली में आज कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने निजी विद्यालयों में स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति के गठन का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज और वित्तीय स्थिति की जाँच अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत के कुछ सदाबहार और दिल को छू लेने वाले नगमों के साथ कार्यक्रम गीत मालिका में मैं विजेता चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों कहते हैं संगीत सीधा दिल तक पहुंचता है, और हमें उम्मीद है कि ये गीत आपके दिल तक जरूर पहुंचा होगा, जिसे गाया मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम सिंदूर।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को भी आपने सुना। क्या खूबसूरत गीत था। ऐसे गीत समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर एक नई ताजगी का एहसास कराते हैं। क्या आपको भी ये नई ताजगी का एहसास हुआ या नहीं?

दोस्तों, फिल्मी गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। कोई गीत हमें बचपन की याद दिलाता है तो कोई किसी खास इंसान की।

अगर आप कभी किसी गीत को सुनकर हंसी पर एक मुस्कान आ जाती है तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया। अगर आप किसी पुरानी याद में खो जाते हैं तो समझिए कि संगीत ने अपना जादू चला दिया।

त्रिदेव फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, संगीत की ये खासियत है कि बिना किसी भाषा या सीमा के वो सीधे दिल में उतर जाता है। एक अच्छा गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और पुरानी यादों को ताज़ा भी कर सकता है।

श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि तनाव को कम करने का, मन को शांत करने का और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरने का भी काम करता है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत हो या दिन का अंत हो, एक अच्छा गीत हमेशा मन को सुकून देता है।

श्रोताओं, आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम कितनी बार भी सुन लें, मन कभी नहीं भरता। उनकी धुन, उनके बोल और उनसे जुड़ी हमारी जो यादें होती हैं वो हमेशा ही ताज़ा रहती हैं।

इसी खूबसूरत गीत के साथ आप मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत।

0: इसी के साथ गीत मालिका का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा

0: लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news indeed.

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकतदारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफुज, मसनूई जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकतदारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि ताउन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और ताउन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफ्फुज़, अदविया और मसनूई जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हमनसब सनाई तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस वाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ वाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफ्फुज और इक्तिसादी तहफ्फुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अख्तदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हमनसब सनाई तकाइची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए

0: जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उनसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं, जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निपटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैनल अक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलाक्वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलाक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादिल नहीं रह गई है, बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज सहपहर जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांदरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाबता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,000

0: 1510 यात्री पहलगाम जबकि 2312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुंचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के एहसन इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकामात पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की।

0: गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद हर्ष जी।
0: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में

0: आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, 1 दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है। क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती हैं और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के, उनको
1: जी
0: सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि 1 दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया, पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉक मोर प्रो, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है? वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा।
0: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जैसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, जो तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में है। लेकिन जो कैनाल इरिगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरिगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है कि वो जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि हुआ काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं दी हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं,

0: कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है ये। वहां पर जो पॉन्ड से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ एक इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एआईबी भी जिसको बोलते हैं।
1: जी
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए, और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ, और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेक डैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ। साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि जब मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है,
1: जी
0: जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स हैं जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके की इरिगेशन की जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं, उससे बहुत कम पानी में कई जगह एक चौथाई पानी इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम होता है, लेकिन जो उपज है वो बेहतर होती है, उत्पादकता बेहतर होती है। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है।
1: जी
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक्स थे जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और जो जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं, वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार हुई है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसिशन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृहद स्कीम बनाई और
1: जी
0: उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहाँ किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके

0: तरीके से सरकार ने पूरा किया है, इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
1: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होती है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो और इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
0: जी
1: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89% के बीच में चले गए हैं। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर से कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उसमें बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है, कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।
0: जी, और हरवीर जी यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: यह आकाशवाणी है। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and party.
0: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Kerala ki prachin sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavata ki maukhik evam amurt सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय

0: पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: श्री मार्गी मथु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूड़ियाटम, द एंशियंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moorikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeet Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam. Rajanakar मेलपतूर नारायण भट्टदिरी। कथा संदर्भ, दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Madhu. Kiratam, author Melputur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kutha presented by Shri Margi Madhu and party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: कंटिन्यूइंग विद द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक, वी नाउ ब्रिंग यू मलयालम लाइट वोकल सॉन्ग्स प्रेजेंटेड बाय श्री अमल एंटनी। श्री अमल एंटनी इज अ प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani, a gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions. Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. In charyom geetom ke bol, Malayalam ke prasidh film geetkar evam kavi Shri Rafiq Ahmed ne likhe hai. इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: टुनाइट श्री अमल एंटनी प्रेजेंट्स फोर लाइट वोकल सॉन्ग्स। द लिरिक्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय श्री रफीक अहमद, द रेनाउंड मलयालम फिल्म लिरिसिस्ट एंड पोएट। The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matr laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye, sabse pehle Radha Madhav ke prem ka sundar chitran karne wala ek geet सुनते हैं।
1: The relationship between Shri Krishna and Radha is not merely a worldly romance. It symbolizes the divine union between the individual soul and the supreme being. Let us begin by listening to a song that beautifully portrays the love of Radha and Madhav.

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू वेर लिसनिंग टू अ प्रेजेंटेशन ऑफ मलयालम लाइट सॉन्ग्स बाय श्री अमल एंटनी। The songs have been written by Shri Rafiq Ahmed and composed by Shri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Shri Wilson K. X. on keyboard, Shri Babu Varghese on rhythm pad, Shri C. N. K. Murthy on flute, and Shri C. Shri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Bhavtarini. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त

0: रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, "India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless."
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's 4th vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy

0: तेरी एक पुकार पर चले आना, ये कोई मजबूरी नहीं, मोहब्बत है दोस्त, वरना यूं हर किसी के लिए दिल बेकरार नहीं हुआ करता। किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म अमर अकबर एंथोनी से इस गीत की फरमाइश की थी। एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अनम, सुहेल हसन रसीद ने, और साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी तरु, प्रियाशी, नवी, एसपी सिंह, नीलम, वरेंद्र सिंह, तनिष्का और मास्टर रणवीर ने।
1: Hmm.

जी हाँ दोस्तों, इश्क का दरिया बड़ा गहरा होता है। जो इसमें उतरता है वही इसका राज समझता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत। फिल्म प्रेम कहानी से इस गीत की फरमाइश की थी जसपुर उत्तराखंड से नाजमा बेगम, रियासत हुसैन, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, और गाज़ियाबाद से शीशपाल अकेला ने।

कहते हैं दोस्तों, एक नज़र काफ़ी होती है दिल की दुनिया बदलने के लिए। कुछ लोग यूं ही नहीं बस जाते हैं, किस्मत भी साथ देती है मिलने के लिए। शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म खेल खेल में से। इस गीत की फरमाइश की थी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू ने।

दोस्तों, मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना मौसम, ना इसे कोई दीवार रोक पाती है, ना दिल से दिल जब किसी के मिल जाते हैं ना, तो वही प्यार अपनी कहानी लिख जाती है। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़सेल से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल ने।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत की फरमाइश की थी शांतिनगर सोनीपत से सिमरन मुखी, अनीता मुखी और सूरदर्शन ने। साथ ही दिल्ली से उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका और भानु प्रकाश ने।

प्यार अगर अच्छा हो ना तो दोस्तों हर दिन खास लगता है। एक मुस्कान भी पूरे दिन की सबसे प्यारी सौगात लगती है। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मोहब्बत से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, आजाद अली अनवर, रिजवान परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत की फरमाइश की थी गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह ने।

0: कविता कृष्णा मूर्ति और कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत 1942 और लव स्टोरी से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 12 बजने को है लाइव न्यूज 24/7 पर। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

0: नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान और समुदाय की भागीदारी से लेकर हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतरीन कोचिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शामिल है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। फीफा विश्व कप में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच अमरीका के इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits." He said, "Both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound." The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, "Among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas." Ms. Takaichi said, "Through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action." On the occasion, both the Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministers.

0: universities, state governments, urban local bodies, scientific institutions, and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater, and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, "Democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights." The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly, and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra yesterday reached the twin base camps at Nunwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Ganderbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Cave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. In the FIFA World Cup, Spain will take on Austria in a round of 32 match at the Los Angeles Stadium in Inglewood, US at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, Canada today at 4:30 a.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के इस विशेष संगीत कार्यक्रम में, जी हाँ, सुरों का सफरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और आज हम सबको ले चलेंगे भारतीय सिनेमा के उन स्वर्णिम दौर में जहाँ सुरों की सादगी ही सबसे बड़ी पहचान थी, जहाँ आवाज़ों में बनावट नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई गूंजती थी। आज की हमारी महफिल समर्पित है उस बुलंद, अनोखी और पहचान बन चुकी आवाज़ को, जिसने लाखों दिलों की धड़कनों में अपनी जगह बनाई, महान पार्श्व गायिका शमशाद बेगम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शमशाद बेगम की। वह स्वर जिसने लोक धुनों को भी मिट्टी की खुशबू को फिल्मी संगीत की शान बना दिया, और वह आज भी आवाज जिसमें पंजाब की रौनक और भारत की संस्कृति और संगीत की मासूमियत एक साथ बसती थी। सबसे पहले एक गीत से शुरुआत कर रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध लाजवाब गीत है जो हमेशा हमारे जितने भी श्रोता साथी हैं उनकी पहली पसंद होती है इस खूबसूरत गीत में। तो आइए सुनवाते हैं, आज की शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीत के साथ। जी हाँ, कजरा मोहब्बत वाला तो आपने सुना ही होगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कजरा मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसा डाला, शमशाद बेगम की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। आइए सुनते हैं, आगाज़ कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। नमस्कार।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, आगाज़ हमने इसी गीत के साथ किया है ताकि सभी साथियों को पता चल जाए कि जी हाँ, आज का जो कार्यक्रम होने वाला है बहुत ही शानदार और बेहद खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, एक ऐसी गायिका जिन्हें सिरों की मल्लिका कहा जाता है, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब शमशाद बेगम। हम बात कर रहे हैं शमशाद बेगम की। वाकई अच्छा लग रहा है मुझे आज, क्योंकि ऐसी एक ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए कार्यक्रम चल रहा है। वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि गायिका है ही कुछ ऐसी, है ना साथियों। उनके बारे में क्या कहें, उनकी गायकी में ना कोई कृत्रिमता थी ना दिखावा, बस था केवल सुरों का उजाला, भावनाओं की मिठास और दिल को छू लेने वाली सादगी। आज के इस 50 मिनट के कार्यक्रम में ले चलेंगे हम एक ऐसे सफर में, जानेंगे उनके जीवन की अनकही दास्तान, संघर्ष की कहानी, सफलताओं की ऊंचाइयां, उनके अमर गीत, कुछ सुने तो कुछ अनसुने किस्से और वे यादें जिन्होंने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास का अमिट अध्याय बना दिया। तो आइए, दिल की धड़कनों को सुरों की लय से जोड़ते हैं, यादों के दीप जलाते हैं और स्वागत करते हैं उस आवाज का जो समय बीत जाने के बाद भी उतनी ही ताजा, उतनी ही प्यारी और उतनी ही अमर है। आइए एक और गीत सुनवा रहे हैं

बहुत सुंदर, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं, जी हाँ, आज आपको सुनने को मिलेंगी। साथियों, सुर कभी बूढ़े नहीं होते, सुर कभी बूढ़े नहीं होते, आवाज कभी मरती नहीं, जो दिलों में उतर जाए वह हमेशा अमर रहती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह विशेष संगीत सफर। सबसे पहले शमशाद बेगम जी, जी हाँ, शमशाद बेगम, उनका परिचय हम बताए देते हैं। जीवन परिचय है उनका। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को तत्कालीन अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ। बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था। उस समय लड़कियों का सार्वजनिक रूप से गाना सामाजिक रूप से सहज नहीं माना जाता था, इसलिए परिवार की ओर से भी कई संकोच थे। फिर भी उनकी विलक्षण प्रतिभा ने रास्ता बनाया। उनकी बुलंद, खुली और स्वाभाविक आवाज ने जल्दी ही संगीतकारों का ध्यान आकर्षित किया। रेडियो पर प्रारंभिक गायन में उन्हें पहचान दिलाई और उसके बाद फिल्मी दुनिया के द्वार खुल गए।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। गीत एक से एक बढ़कर शानदार, बेहतरीन रचनाएं, वाकई लाजवाब। साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1940 के दशक में उन्होंने अनेक गीत गाए और शीघ्र ही वे हिंदी फिल्म संगीत की सबसे लोकप्रिय आवाज़ों में शामिल हो गईं। यदि हम उनके संघर्ष की बात कहें या उनकी कहानी कहें, तो आज जिस नाम को हम सम्मान से लेते हैं, उसके पीछे कठिन संघर्ष भी था। समाज की परंपराएं, परिवार की आशंकाएं और फिल्मी दुनिया की चुनौतियां, इन सब के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कभी अपनी गायकी में कृत्रिमता नहीं आने दी और उनकी आवाज की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्पष्टता और ऊंचा स्वर और लोक संगीत की सहज मिठास थी। संगीतकार उनकी एक ही टेक में गीत पूरा कर देने की क्षमता की प्रशंसा करते थे। अनुशासन, समय की पाबंदी और

मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत उनकी पहचान थी। तो एक और गीत सुनवाते हैं, एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म आग से। जी हाँ दोस्तों, शमशाद बेगम की आवाज़, ओब्वियसली 1948 की फिल्म है आग। तो इसी फिल्म का एक गीत सुनवा रहे हैं, आशा करते हैं आप सभी साथियों को ज़रूर पसंद आएगा। सुनवाते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और इस कार्यक्रम को, जी हाँ, सुरों का सफरनामा को आप इंद्रप्रस्थ चैनल में भी सुन सकते हैं। इंद्रप्रस्थ और AIR लाइव न्यूज एक ही स्टूडियो में दोनों फ्रिक्वेंसी होती हैं और सभी साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो प्रोग्राम होते हैं हमारे सुरों का सफरनामा, एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन कार्यक्रम होता है जिसमें आप अपने संदेश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद, उससे पहले हम बताए देंगे आपको कि भाई संदेश कब करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारे पर्सनल पे भी आप संदेश कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सराहें, है ना, अच्छा लगता है। तो साथियों, संगीत यात्रा की ओर चलते हैं। उनकी आवाज़ को अनेक महान संगीतकारों ने अपनाया। उन्होंने उस दौर के कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम किया और अनेक कालजयी गीत दिए। उनके गीतों में प्रेम था, उल्लास था, लोक संस्कृति की झलक थी, भक्ति थी और जीवन का उत्सव भी था। बाद के वर्षों में नई पीढ़ी की गायिकाओं के आने से उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत मार्मिक गीत अभी आप सुन रहे थे, दिल टूट गया, फिल्म आग से, शमशाद बेगम की आवाज़। आग फिल्म सन 1948 में प्रदर्शित हुई थी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को राम गांगुली ने। साथियों, अब हम चलते हैं संगीत यात्रा पर। उससे पहले ये

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों क्या कहें, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन 50 मिनट के कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारियों के साथ हमें बोलना होता है। जी हाँ दोस्तों, वो क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम और 50 मिनट में समाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हाँ, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों के साथ आपकी सुंदर खूबसूरत रचनाएं भी शामिल की जाएं। साथियों आज भी उनके गीत रेडियो संगीत मंचों और पुराने गीतों के कार्यक्रम की अमूल्य धरोहर है। पहला भावपूर्ण सेतु, जी हाँ, गीत से पहले कुछ आवाजें समय के पन्नों पर नहीं दिल की धड़कनों में लिखी जाती है, जिन्हें सुनकर बरसों पुरानी यादें भी मुस्कुराने लगती हैं। अब समय है शमशाद बेगम की उसी अमर आवाज को सुनने का, जिसने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। तो आइए सुनते हैं उनका खूबसूरत लाजवाब गीत उनकी आवाज में, यानी कि शमशाद बेगम की आवाज में।

जी हाँ साथियों, समय तीव्र गति से आगे दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन जानकारियाँ इतनी उपलब्ध हैं जिसकी हद नहीं है। वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। क्या खूबसूरत आवाज़! ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, सिर्फ सच्चे सुरों की चमक। यही कारण है कि दशकों बाद भी शमशाद बेगम का नाम भारतीय संगीत इतिहास में पूरे सम्मान से लिया जाता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो रोचक और अनसुने किस्से हैं, 1940 से लेकर 1960 तक के प्रमुख गीतों की वर्षवार अगर हम सूची की बात करें तो फिल्मों की जानकारियां और प्रत्येक गीत के बीच प्रसारण योग्य वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाएं हैं, एक से एक खूबसूरत रचनाएं हैं। और साथियों, समय हमें इजाज़त तो नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ जानकारियां और हम बता देते हैं, क्योंकि इतने सारे हमारे पास जितनी सारी रोचक जो बातें हैं, एक रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार ने मुस्कुराकर कहा, इस लड़की की आवाज में बनावट नहीं, बरकतें हैं। यही बात आगे चलकर सच साबित भी हुई। उनकी आवाज भारत के करोड़ों श्रोताओं की पहचान बन गई। अगर 1941 की हम बात करें, जो प्रमुख प्रारंभिक जो गीत था खजांची, संगीत गुलाम हैदर का था, इसी फिल्म के गीतों ने शमशाद बेगम को पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। 1942 में खानदान फिल्म और जमींदार फिल्म, वाकई इन फिल्मों के गीत ने उनकी अलग पहचान बनाई और निर्माता निर्देशकों का विश्वास जीता। और जो सुर दिल से निकलते हैं वे सदियों तक गूंजते हैं। नाम भले समय की धूल में छिप जाएं, लेकिन सच्ची आवाज कभी नहीं मिटती।

कितनी सहज, कितनी स्वाभाविक और कितनी बुलंद आवाज। आज के समय में ऐसी खुली आवाज बहुत ही कम सुनने को मिलती है। यही कारण है कि शमशाद बेगम का गायन आज भी संगीत विद्यालयों में अध्ययन का विषय माना जाता है। 1943 और 45 की बढ़ती लोकप्रियता में इन वर्षों में शमशाद बेगम लगातार नई फिल्मों के लिए गाने लगी और संगीतकारों को उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह लगती थी कि वे बिना किसी कृत्रिमता के भावों को सीधे श्रोताओं तक पहुंचा देती थीं। उनके गीतों में गांव की सादगी भी थी और शहर की नजाकत भी थी। रिकॉर्डिंग के समय वे अपनी अनावश्यक रिहर्सल की मांग नहीं करती थीं। वे पूरी तैयारी के साथ स्टूडियो पहुंचती थीं और अक्सर एक या दो टेक में ही रिकॉर्ड हो जाता था। इस अनुशासन ने उन्हें संगीतकारों की पहली पसंद बना दिया। 1946 और 47 की बात करें कि उनकी जो प्रमुख फिल्में रहीं, शाहजहां, मेला और दर्द, अनमोल घड़ी, इस दौर के संगीत परिवेश में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष में उनकी लोकप्रियता पूरे उत्तर भारत से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी थी और संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समय का दस्तावेज भी होता है। कुछ आवाजें दस्तावेज ऐसे हस्ताक्षर कर जाती हैं जिन्हें कोई युग मिटा नहीं सकता। शमशाद बेगम की आवाज भी उन्हीं अमर हस्ताक्षरों में एक है। तो आइए अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत।

साथियों, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारी और मौजूद हैं। इसमें विशेष रूप से नौशाद सी रामचंद्र, ओपी नैयर, एस डी बर्मन और हुस्नलाल, भगत राम और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज शामिल थे। उनकी बुलंद और खुली आवाज ने फिल्मी जगत के लिए एक ऐसी नई पहचान दी जिसे जो भी श्रोता सुनता तो वो कायल हो जाता था। उनकी फिल्म 1948 धरती को आकाश पुकारे लोकप्रिय रचनाओं में से शामिल है। इस वर्ष उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। 1949 की बात करें तो यह वर्ष ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। फिल्म पतंगा का गीत मेरे पिया गए रंगून, जी हाँ दोस्तों, मेरे पिया गए रंगून एक बहुत ही फेमस गीत है। चूंकि हम सुनवा नहीं सकते क्योंकि कार्यक्रम का जो अवधि है वो बहुत कम है, आज भी हिंदी फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय हास्य युगल गीतों में गिना जाता है। इस गीत में उनकी चुलबुली अदायगी, स्पष्ट उच्चारण और श्रोताओं का दिल जीत लिया है। साथियों, समय इजाजत नहीं दे रहा है और छोड़े जा रहे हैं उसी गीत के साथ, शानदार बेहतरीन रचना के साथ। मुझे शुरू का सफरनामा से दीजिए अनुमति, अपने दोस्त अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को नमस्कार। छोड़े जा रहे हैं इसी गीत के साथ।

0: साथियों, आज का सिरों का सफर सफरनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। एक बजने को है, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था

को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ साथियों, एक और खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत है, और ये काहे करता देर बराती। जी हाँ, ये फिल्म का नाम हम बता देते हैं, ये किस फिल्म का गीत है। तो ये गीत है औरत। जी हाँ, औरत फिल्म से गीत है, और सिंगर हैं, जो गायक हैं, अनिल बिस्वास हैं। ये फिल्म औरत 1940 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीत से सजाया है अनिल बिस्वास ने ही। तो ऐसे सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, वो दिन याद करो, बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब रचना। एक और गीत आ रहा है साथियों, एक बहुत ही प्यारा गीत है, ख्यालों में किसी से। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत गीत है और ये गीत वाकई लाजवाब है। तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत रचना, ख्यालों में किसी से, फिल्म बावरे नैन से, मुकेश और गीता रॉय की आवाज़ में सुंदर रचना। बावरे नैन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, गीत केदार शर्मा के हैं और संगीत से सजाया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये तस्की है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत तभी आप सुन रहे थे। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है जिसमें गोल्डन एरा यानी कि बिल्कुल खरे सोने की तरह एक से एक बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गीतों का समावेश बनता है एक ऐसे अनमोल खूबसूरत गीत संगीत के खजाने से लेकर आते हैं हमारे साथी। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लेकर आते हैं ऐसे ही हमारे जो श्रोता साथी हैं ऐसे गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि गीत संगीत का आनंद लेना हो तो सच में जो सुनहरे दौर की जो एक अलग पहचान होती है, आज भी जो सीनियर श्रोता साथी हैं उन्हीं गानों को ही सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कुछ बात ही अलग है ना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। इसी कड़ी में एक और खूबसूरत गीत आ रहा है जो ऑल टाइम फेवरेट गीत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है ये। गीत दिल की उमंगे हैं, फिल्म मुनीम जी से, हेमंत कुमार और गीता

दत्त और ठाकुर की आवाज में शानदार रचना है। ये फिल्म मुनीम जी 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है। इस गीत को सजाया है संगीत से एस जी बर्मन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

पे गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: गाइए ना। दिल की उमंग है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए।
1: दिल की उमंग है जवान।

0: एक बार और
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, दिल की उमंगे हैं जवां, वाकई बिल्कुल अलग मजाकिया काइंड ऑफ सॉन्ग, बहुत ही अलग एक्टिंग, लाजवाब खूबसूरत रचना। एक और गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है, तो सुनवाते हैं ये शानदार रचना। इस रचना के बारे में कुछ जानकारी हम बता देते हैं। लेके पहला पहला प्यार CID फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ में शानदार रचना है। ये फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है OP नैयर ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

अति सुंदर बेहद खूबसूरत गीत लेके पहला पहला प्यार ऑल टाइम फेवरेट लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। यह दोस्तों वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। मैंने चांद और फिल्म चंद्रकांता से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना। यह फिल्म चंद्रकांता 1956 प्रदर्शित

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ये रातें नई पुरानी, वाकई बहुत ही प्यारा गीत, लाजवाब रचना। साथियों, समय 2 बजने को है, केवल 2 या 3 मिनट बाकी हैं, तो इसी दौरान एक गीत सुनहरे कार्यक्रम की अंतिम बेहद खूबसूरत रचना सुनवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत रचना, भीगी हुई इस रात का। जी हाँ, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, ये फिल्म ही वो 1966 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत मूवी मोन्यूमेंट के हैं और संगीत से सजाए हैं मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार रचना, आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जाँच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी ओगदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

0: shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. The Yatra will officially begin today and is scheduled to culminate on August 28th. The southwest monsoon has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain over the next 24 hours. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 और 10 सेकंड। तो साथियों, ये कार्यक्रम होता है बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। जी हाँ, कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप। जी हाँ, बिना किसी रुकावट के आप सुन पाएंगे, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी रुकावट के, बस आप लगातार बारंबार खूबसूरत गीतों की रचना आपके साथ। मैं, जी हाँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो हो जाइए तैयार, बिना सोचे बिना समझे बस गीत संगीत का आनंद लेते रहें मेरे साथ। तो आइए, शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत गीतों का जो समावेश बन रहा है, एक से एक लाजवाब खूबसूरत गीत। एक और गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा, सुंदर, खूबसूरत रचना है, और ये रचना वाकई बहुत ही सुंदर है, बेमिसाल है, खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत वाकई अपने आप में बेहद खूबसूरत है। बीती ना बिताई रैना, बहुत ही सुंदर लाजवाब रचना है। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, बीते ना बिताए रहना, फिल्म परिचय से, जो 1972 प्रदर्शित फिल्म रही, लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में शानदार रचना, गीत गुलजार के और संगीत राहुल देव बर्मन का था। सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत, अनमोल रचना। जी हाँ, रात का समय है, 3:10 बाकी हैं। हम हैं आपके साथ अभी भी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, आकाशवाणी में एक ही स्टूडियो में दो फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। एक है इंद्रप्रस्थ चैनल, जिसमें आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, और दूसरा AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आप दोनों ही फ्रीक्वेंसी में कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। साथियों, अभी जो गीत आपने सुना इस रात के सन्नाटे में, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रहा और बहुत ही प्यारा। फिल्म दो चेहरे से, आशा भोसले की आवाज़ में सुंदर गीत। फिल्म दो चेहरे 1975 रिलीज फिल्म रही है, और गीत रतन प्रोडक्शन द्वारा है, और गीत संगीत को सजाया है सोनिक ओमी ने। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। जब दीप जले आना, जब दीप जब शाम ढले जाना, बहुत ही सुंदर, ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत है। तो आइए सुनवाते हैं ये शानदार रचना। साथियों, जब दीप जले आना फिल्म चितचूर से है, यशुदास और हेमलता की आवाज में शानदार खूबसूरत रचना है। फिल्म चितचूर 1976 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत राजश्री प्रोडक्शन द्वारा है, और संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर गीतों का समावेश आप सभी साथियों ने मिलकर बांधा है। वाकई हमें भी अच्छा लग रहा है और वाकई रात का समा बिल्कुल अलग ही होता है। बिल्कुल एकांत में सुंदर बेहतरीन रचनाओं का सुनने का आनंद एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, ना जाने कितने गुना बढ़ जाता है, है ना। वाकई बहुत ही शानदार साथियों। और इतने सारे गीतों के साथ साथ, हालांकि 3 घंटे हो चुके हैं हमें और बस 5 मिनट ही बाकी है, बल्कि 4 मिनट बाकी है, और एक गीत सुनाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि क्योंकि आजकल बहुत सारे शादियों का माहौल भी चल रहा है और ऐसे में बर्थडे भी किसी का मनाया जा रहा है, ऐसे में वेडिंग एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है, तो हम सभी के लिए एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही शानदार है। तो अर्चना जोशी और अनिल जोशी, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए तो उनके लिए एक गीत समर्पित कर रहे हैं हम, यानी कि मैं आपका दोस्त ललित कुमार। और सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी साथी खुश होंगे और मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो सुनवाते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम गीत बहार की अंतिम रचना, आइए सुनते हैं।

0: समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़बाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़बाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला जापान की इरिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती हैं, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both PMs jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. India and Japan agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi yesterday. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on energy resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri yesterday said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil yesterday reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local communities. The minister said this while chairing the 19th meeting of the Empowered Task Force on River Ganga. He emphasized that strengthening sewage infrastructure, promoting reuse of treated wastewater and conserving wetlands and biodiversity will collectively accelerate the vision of an Aviral and Nirmal Ganga. He added that these acts will also ensure long-term water security and ecological resilience across the Ganga basin. Vice President C.P. Radhakrishnan interacted with 40 participants of MP Lead Fellows at Uprashtrapati Bhavan yesterday. In his address, highlighting the importance of constitutional values, Mr. Radhakrishnan said, democracy flourishes when citizens uphold their duties along with their rights. The Vice President urged the fellows to learn with curiosity, innovate fearlessly and remain committed to the larger national interest, expressing confidence that the MP Lead Fellowship would nurture future nation builders committed to a developed and self-reliant India. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra yesterday reached the twin base camps at Nanwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Gandharbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Cave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. The Yatra will officially begin today and is scheduled to culminate on August 28. In the FIFA World Cup, Spain defeated Austria 3-0 in their round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood, California to advance to the round of 16. Mikel Oyarzabal beg your pardon, Mikel Oyarzabal put Spain ahead in the 36th minute before Pedro Porro doubled the lead in the 66th. Oyarzabal completed his brace with an 89th minute goal to seal the victory. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत और गजलों का। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ के गीत के साथ।

आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतों और गजलों का। अभी आपने सुनी राधिका चोपड़ा की आवाज में ये बेहतरीन सी गजल। आइए सुनते हैं अगली पेशकश चित्रा सिंह की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम, और इसमें अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में यह खूबसूरत सा गीत। आइए सुनते हैं धीरा गोशा की आवाज में

अभी आपने सुनी धीरा घोष की आवाज में ये खूबसूरत सी पेशकश। लीजिए सुनते हैं अगली नज्म जगजीत सिंह जी की आवाज में।

अभी आपने सुनी ये खूबसूरत सी पेशकश मीलू शर्मा की आवाज़ में। श्रोताओं, गीत गज़लों का कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है और हम आपको छोड़े जा रहे हैं जगजीत सिंह जी की इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजने को है। ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप पारशाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।

लीजिए, आप सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे यल्ला वेंकटेश्वरा राव का तालमादि में तालवाद्य कचहरी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई 2026। सुबह के 4:53:55 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में। प्रातः 5:20 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। प्रातः 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रातः 6:10। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन में आप सुनेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। प्रातः 6:45 पर श्री रामचरितमानस से पाठ। आज इसमें आप सुनेंगे बालकांड का भाग 105। प्रातः 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका। 7:30 का वक्त रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग इस कार्यक्रम का। प्रातः 8:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर गांधी चर्चा। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के बारे में गांधी जी के विचार। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा प्रातः 9:30। फिल्म संगीत आपकी पसंद, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 10:10 पर। सबरस का वक्त रहेगा 11:10 और सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रातः 11:30 पर। तो ये थी आज प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:00 को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का

0: उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गनीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Ashish P. Abraham. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic

झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी

0: को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्यासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येंद्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येंद्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्धमत्स्येंद्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्धमत्स्येंद्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं, तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:20 होने को है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:30 होने को है। ये वक्त होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मनीष शर्मा द्वारा राग भैरवी में जल तरंग।